गीत मेरे होठों को दे गया कोई, कभी अजनबी थे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है तेरी कसम फिल्म से, आवाज अमित कुमार की।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि यानी 3 जुलाई 2026। सुबह के इस समय 5:53 हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। आइए अब आपको विवरण देते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर हम आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण। श्री रामचरितमानस के तहत बालकांड का भाग 110 प्रसारित किया जाएगा, जिसका प्रसारण समय रहेगा 6:44। गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर और आज सवेरे कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30।

म्यूजिकल दिल्लगी प्रोग्राम हम आपके लिए लाएंगे सुबह 8:45 पर। विश्व दर्पण कार्यक्रम होगा सुबह 10:10 पर। दिल का मेल बॉक्स, आपकी पसंद पर आधारित इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह 10:30 पर। 11:10 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा मेरा वजूद का भाग 3।

तस्वीर कार्यक्रम में सुबह 11:25 पर आप जानेंगे हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के बारे में। एक कदम बुजुर्गों की ओर सीनियर सिटीजन पर आधारित इस कार्यक्रम को हमारे श्रोता सुन सकते हैं दोपहर 12:10 पर। अभिनेता राजकुमार पर आधारित होगा हमारा आज का कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। प्रसारण समय रहेगा 1:10 और उन्नत किसान कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर।

कार्यक्रम होगा 3:10 पर और फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे शाम 4:10 पर। 4:30 पर परिक्रमा कार्यक्रम होगा। शाम 5:10 पर हम आपके लिए लाएंगे पानी पर लिखी कहानी वापसी। विश्लेषण कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर और मार्केट मंत्रा 6:30 पर। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:10 पर। सांझ ढले कार्यक्रम होगा 7:25 पर और मधुरिमा कार्यक्रम का आनंद लीजिए रात 8:10 पर। ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर समय मोहतरम 6:15 समेत पेश खिदमत जो प्रोग्राम सुबह है।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम सुबोगाही हेच तुहंदिस खिदमत अंदर हाजिर। सामिन मोहतरम कुरान करीमस अंदर अल्लाह ताला सुंद इरशाद जी ये तुहि ब्रोह कुरान करीम तिलावत यी कर तुह रूजो खामोश वलि बोजो कान दिथ ताकि अस पे सपद अल्लाह ताला सुंद रहम।

ألف لام ميم أحسب

0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु

0: अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां सम्बद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः, सुरक्षा, आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इण्डो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एस पी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 सहस्र मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ

0: ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान की सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said, the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interest and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions Mahasagar initiative provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Both sides will strengthen bilateral cooperation in 5 key sectors: semiconductor, critical minerals, information and communication technology, clean energy and pharmaceuticals. Election Commission of India, ECI, has sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress, AITC, regarding competing claims about the party's organizational elections and authorized signatories. In a statement, the Commission said it has written separate letters to Mamata Banerjee and party leader Rituvrata Banerjee regarding the claims and counterclaims by both factions with respect to organizational elections and authorized signatories of

0: The first batch of pilgrims reached the twin base camps at Nunwan in Anantnag district and Balthal in Gandharbal district yesterday under tight security. Governor of Bihar, Lieutenant General retired Syed Atta Hasnan and Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita will visit Iran today to attend the funeral ceremony of the late Supreme Leader of Iran, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. In Ukraine, 27 people have been killed and 90 others were injured in a massive drone and missile strikes by Russia on the capital Kyiv. Damage was recorded in 30 locations across Kyiv, mainly residential buildings and civilian infrastructure. In Syria, an explosive device detonated in a Damascus cafe yesterday, killing at least 9 people. Interior Ministry reported the device was planted inside the cafe, located 100 meters from the Palace of Justice in the capital's Hijaz district. In the FIFA World Cup, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. Mikel Oyarzabal scored twice in the 36th and 89th minute, while Pedro Porro added the second goal in the 66th minute. Meanwhile, Portugal also advanced to the round of 16 after defeating Croatia 2-1 in the round of 32 match in Toronto, Canada. In the ICC Women's T20 World Cup, host England defeated South Africa by 40 runs in the second semi-final at the Cannington Oval in London to set up a title clash with Australia. Put into bat first, England posted 169 for 5 in the 20 overs, riding on net Shivar Brand 75 runs off 47 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन सुबह के साथ बजकर 10 मिनट हुए हैं। एक वक्फे के बाद समाप्त करें पयाम सुबह।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करे कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे? अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है। नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
4: ओह
3: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
4: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
3: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
4: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर। क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गूंजता बम बम भोले का जयकारा हर भक्त के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल से स्वागत करता है।
10: इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी निर्देशों का पालन अवश्य करें। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यात्रा रूट में प्रवेश करने के लिए वैलिड RFID कार्ड अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड किसी भी यात्री को यात्रा क्षेत्र में प्रवेश

0: करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए इसे हर समय अपने पास रखें। सफर हमेशा ग्रुप में शुरू करें और पहाड़ी रास्तों को ध्यान में रखते हुए ट्रैकिंग शूज और आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करें।
1: यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें, रास्ते में कचरा ना फेंकें और निर्धारित डस्टबिन का उपयोग करें। चढ़ाई करते समय अपनी रफ्तार संतुलित रखें, जल्दबाजी से बचें और बीच बीच में छोटे विश्राम जरूर लें। खाली पेट यात्रा शुरू ना करें, पानी और हल्का भोजन साथ रखें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में तकलीफ या तबीयत खराब महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में संपर्क करें।
0: सभी निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय बनाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है और हमसे मेरी मुराद, मैं नाजिमा और मेरे साथ जो है अब्दुल मजीद साहब, माइक्रोफोन के जरिए हम आप तक पहुंचते हैं, आपके घरों तक, आपके दिलों तक, पायाम सुबह की नशरियात में। जी फुरकान
1: जी। नाजिमा, जैसे कि हम सामीन से बात कर रहे थे कि आज जो है एक ख़ास दिन भी मनाया जा रहा है माहौल के हवाले से। आज 3 जुलाई को दुनिया भर में बैन अलाक्वामी प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है और इस दिन का जो मकसद है वो यह है कि लोगों में प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल को कम से कम और माहौल दोस्त मतबादल अपनाने के बारे में शोर बेदार करना है।
0: बिल्कुल सही। और कितने वक्त से बात कर रहे हैं या फिर बात हो रही है कि कोशिश की जाए कि हम इस दुनिया को या अपने इलाके को, अपने जहाँ पे हम रह रहे हैं, कम से कम उसको हम प्लास्टिक फ्री जोन बनाया जाए, लेकिन अभी तक की कोशिशें जारी हैं और अभी तक खास कोई फर्क नजर तो नहीं आया। अब आगाज में फुरकान साहब ने एक बात की थी कि ये जो अखलाकियात की कमी है, ये शायद हमारे किरदार में एक अच्छा खासा फर्क जो है नुमाया होता है इससे। तो जाहिर सी बात है, हम अक्सर जब भी कहते थे कि हमें अल्लाह ताला ने बहुत सी नियामतें अता की हैं, जब भी हम इन चीज़ों को, इन नियामतों को देखते हैं, शुक्र अदा करने के बजाय जो है बहुत चीज़ें ख़राब कर देते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम मकाफात अमल कहते हैं या तस्कर्मा तिशमाना, तो नतीजा ऐसा है कि औतन तामत से सिमन चीज़न मस त्रावान, झील हो, नदियाँ हो हमारी, हम ख़राब कर देते थे। लेकिन अब ऐसी बात है कि वो वक्त भी आ चुका है कि हमें आप वापस दे रहे हैं और ये जो रिटर्न में हमें मिल रहा है बहुत खराब मिल रहा है।
1: देखिए, प्लास्टिक हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा तो जरूर बन चुका है, इसमें कोई अब दो राय तो है नहीं
0: जी।
1: लेकिन यही सूरत अगर हम देखें तो आज माहौलियात के लिए एक संगीन खतरा भी बन गई है
0: जी।
1: अगर हम देखें तो ये जो इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक सदियों तक जमीन में मौजूद रहता है, मिट्टी और पानी को आलूदा कर देता है।
0: बिल्कुल सही।
1: अब इसमें क्या है, देखिए, सिर्फ मिट्टी और पानी की बात नहीं है बल्कि जानवरों, परिंदों और समंदरी हयात के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान दह साबित हुआ है।
0: बिल्कुल। और सामाइन को बताते चलें कि माहिरीन जो है उनके अंदाजों के मुताबिक अगर हम मौजूदा सूरत हाल देखें और अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो सन 2025 तक दुनिया में तकरीबन 12,000 मिलियन टन का जो प्लास्टिक का फजला है, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जमा हो जाएगा, जो हम देख रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है, माहौलियात है, उसको किस तरह से ख़राब कर रहा है और किस तरह से ख़राब साबित हो सकता है। बिलखसूस इस वक्त पे आप बता रहे थे कि हमारी सेहत पे खासा असर पड़ता है और प्लास्टिक का ये जो फजला है न सिर्फ माहौल को मुतासर करता है बल्कि इंसानी सेहत पर भी एक मनफी जो है असर डालता है और मनफी असरात मुरतब होते हैं। इनमें से हम देखें कि फ़जाई आलूदगी और पोल्यूशन हम जिसको कहते हैं उसमें इजाफा हो जाता है और सांस की जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, वो जन्म ले सकती हैं।
1: अब देखिए, जो अभी जब आप सामीन से ये डेटा शेयर कर रही थी, 2050 तक देखिए कि एक जो ये जो अंदाज़ा है कोई छोटा अंदाज़ा नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: कि 12,000 मिलियन टन का जो है बताया जाता है कि माहरीन के मुताबिक कि ये जो 2050 तक दुनिया में तकरीबन 12,000 मिलियन टन जो हैं वो प्लास्टिक वेस्ट जमा होगा। अब देखिए, इसमें खुशाइंदा बात यह है कि दुनिया के कई ममालिक जो हैं वो इस प्लास्टिक की रोकथाम के लिए, इस्तेमाल में कमी लाने के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं।
0: हमें
1: ख़ास तौर पर नुमाया कुछ नाम हैं कुछ कंट्रीज़ की, कुछ ममालिक जैसे कि इंडोनेशिया है, जापान है, मलेशिया या चीन की बात करते हैं, न्यूज़ीलैंड की बात करते हैं, आयरलैंड की बात करते हैं, तो इन ममालिक में प्लास्टिक के थैलियों का इस्तेमाल नुमाया तौर

0: कम हुआ है। देखो
1: जी
0: जैसे तरीके जो है वो अपनाए जा रहे हैं, जिससे ये होता है कि प्लास्टिक का जो रोज़मर्रा का जो इस्तेमाल है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, और हमारे मुल्क में भी इस हवाले से बहुत कुछ किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। तो उससे पहले ये सभी तक बताना चाहेंगे, पहुँचाना चाहते हैं कि अक़वामे मुत्तहिदा के जो माहौलियाती प्रोग्राम्स हैं,
1: जी
0: जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, और ख़ास तौर पर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2018 तक दुनिया के कम से कम 127 ममालिक प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल को महदूद या ख़त्म करने के लिए कानून साजी कर चुके थे।
1: बहुत खूब बहुत खूब। और रिपोर्ट के मुताबिक जो है 91 ममालिक ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी या इसके इस्तेमाल को महदूद करने के इकदाम जो है वो किए हैं। इनमें से हम देख सकते हैं कि 25 ममालिक ने बाज़ हालात में रियायतें भी दी हैं। सिर्फ 16 ममालिक जो है के पास इस वक्त पे दोबारा इस्तेमाल होने वाली थैलियों, रीयूजबल बैग्स या इसका जो मुतबादल है, जो मुतबादल मसनूआत है, उनके इस्तेमाल से मुतल्लिक वाज़ह कवानीन भी मौजूद है। फ्रांस का हम देखें तो अपने हमारे अपने मुल्क भारत की बात की, भारत में देखें, इटली में देखें और कई दीगर ममालिक में बाज़ अकसाम के प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी या टैक्स नाफिज किया गया है। खसूसन थैलियों पर जो हम देखते हैं कि 50 माइक्रोन से कम या मखसूस मयार के मुताबिक नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल सही। देखिए इतना ही नहीं है, बल्कि आप देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर दौरा तो हर जगह है, और हर मुल्क में ये कोशिश की जाती है कि जो टेक्नोलॉजी है उससे जो है मॉडर्न चैलेंजेस जो है उनसे निपटा जाए।
1: टैकल किया
0: और
1: जाए।
0: इसी तरह अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे ममालिक जो है रिसाइकिलिंग को अब फ़र्वग दे रहे हैं,
1: बहुत खूब।
0: ताकि इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को ज़मीन में दफनाने के बजाय दोबारा इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके, ताकि हमारा जो माहौल है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो बुरे असरात हैं उनको कम किया जाए। और ये एक खुशाइंदा कदम है कि रिसाइकलिंग के ज़रिए से हम अब प्लास्टिक को, या जो यूं कहे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, ऐसे तरीक़ों से अब हम उसको दोबारा रीयूज़ कर रहे हैं, दोबारा इस्तेमाल में ला रहे हैं, ताकि हमारे ज़मीन पर उसके जो असरात हैं वो कम हों।
1: कम हो। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह पे अगर हम कपड़े के थैले को लें, हमने देखा तो है, पहले तो ऐसा हुआ करता था, हमारे
0: बिल्कुल
1: बड़े जो है थैले लेके घूम रहे होते थे और अच्छा भी लगता था, लेकिन आज जो हम देखते हैं कि वो चीज़ें ज़रा कम हो गई है। खैर, अगर हम इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह पे कपड़े के थैले लें या फिर कागज़ी थैले, पेपर बैग्स जो कह सकते हैं हम उन्हें, या बहुत से ऐसे मुतबादल है वो अगर हम इख्तियार करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वक्त के इस वक्त पर वो अहम ज़रूरत है। तो आज बैनुल अक्वामी सतह पे हम खास दिन मना रहे हैं। कोशिश करें, अहद करें कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हमसे प्लास्टिक की जो थैलियों का है वो इस्तेमाल हम ज़रा तर्क कर दें, ख़त्म कर दें। दोबारा इस्तेमाल होने वाले थैले अपने साथ रखें और आने वाली नस्लों को हम एक साफ, सरसब्ज और महफूज माहौल फराहम करने में अपना किरदार अदा करें।
0: देखिए अगर हम पेपर बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, इस वक्त काफ़ी ट्रेंडिंग में है यूँ कह सकते हैं,
1: जी
0: या हमारे यहाँ भी एक ट्रेडिशन है कि सुबह जब सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं तो लोग घर से जो है एक थैली लेकर चले जाते हैं।
1: जी जी
0: देखिए कितनी अच्छी रिवायत है। तो हमें चाहिए कि इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पेपर बैग्स हैं या आप देखें कपड़े की थैली लेकर आप बाज़ार जाएँ। और इखलाकी दर्स भी ये है कि अगर आप देखें कपड़े की थैली लेकर आप बाज़ार जा रहे हैं और आप उसमें सामान लेकर आ रहे हैं, एक तो वो महफूज भी है,
1: जी
0: और दूसरा ये है कि वो थैली इतनी मज़बूत भी होती है कि अगर आप उसमें कोई भी सामान डाल देते हैं तो आपको गिरने का ख़तरा नहीं रहता है। तो अक्सर हमने देखा है कि कई बार आपने भी देखा होगा और हम सामीन ने भी देखा होगा कि कोई शख्स कोई भी चीज़, आटा या कोई नमक या कोई ऐसी चीज़ खंड वगैरह लेकर जा रहा हो और अचानक से कागज़ की वो जो थैली है वो फट गई, तो
1: जी
0: उसमें से क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमने
1: गिर
0: ऐसे
1: जाते थे।
0: गिर गया, सब कुछ बिखर जाता है।
1: जी
0: तो कहने का मकसद ये है कि देखिए हमारे माहौल के लिए ये चीज़ें अगर ज़रूरी नहीं हैं, देखिए इस्तेमाल तो बढ़ गया है, अगर आप इस वक्त दुकान पर जाएं और कोई भी चीज़ ख़रीदें, चाहे आप किसी भी ऐसी चीज़ को देखें जो पैक्ड होता है, चाहे फूड का आइटम हो या कोई और चीज़ हो, उसमें प्लास्टिक कहने कहें तो शामिल होता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन उसका कतन ये मतलब नहीं है कि उस प्लास्टिक का जो हमने वहाँ से वो जो रैपर लाया या जिस जो जब वो जो बोतल लाई उसको हम घर में या माहौल में किसी ऐसे जगह पर ज़मीन में फेंक दें, जैसे बाज़ औक़ात वही ज़मीन जो आज तक हमारे लिए फूल पैदा कर रही थी या पैदावार वहाँ से हमें हासिल होती थी, और आइंदा आने वाली नस्ल के लिए
1: आपने बहुत अच्छी बात की।
0: या आइंदा आने वाले जो हमारे

0: नौनिहाल हैं जो हमारी जनरेशन से वो
1: हम्म
0: पछताएं, और इस वजह से कि हमारे जो प्रेडिसेसर्स हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, उन्होंने हमारे लिए ज़मीन में कुछ रखा नहीं है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए इस ज़मीन को बचाएं, सिर्फ अपना ना सोचें।
1: जी,
0: तो
1: हम ये
0: जी
1: सोच के चले कि हमारे पास अमानत है।
0: हाँ
1: एक तो उनकी अमानत जो हमारे बाद आने वाले हैं, जो
0: बिल्कुल
1: हमारी आगे आने वाली नस्लें हैं, उनकी अमानत है, और अल्लाह ताला की तरफ से भी हमारे पास एक अमानत है। और अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि आप मेरी दुनिया को देखें, इस खूबसूरत कायनात को देखें कि मैंने कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। लेकिन आप देखें, हम ऊपर जाते हैं, हाइकिंग पे जाते हैं, ट्रैकर्स जाते हैं, तो जितना भी आपका सारा कूड़ा कचरा बच जाता है, प्लास्टिक

0: अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: जापान वजीर अजमन वन पन्नस खिताबस मजे अथ वास किन वारियान शोबन मज तवानई रसरित थावनुक शोब सठा अहम तिमो वोन जे हाल ही सपदेमच जी सेवन चोटी कॉन्फ्रेंस दौरान आस तिमो तवानई रसरावनस मुतलिक त्रे तजवीज पेश करमच युजन पैदावरी तो सारिफ मुल्कन दरमियान आजाद तो शफाफ तवानई हंज तिजारत करिन तवानई हिंदन जामे जखीरन हुंद एलान करुन तो अथ वास पोचर दिन यकीनी बने तिमो वोन जे पावर एशिया इनिशिएटिव छु अथ नजरियाज ठोस कार्रवाई मज बदलन बापत काम करान अथ मौकस पर तुल दोशवी वजीर अजमो हरियाणा किस खरखोड़ास मज मारवती सुजुकी गाड़ी तैयार करने चे चूरम फैक्ट्री इकवट दस कामर्स तो सन्नतन हिंद मरकजी वजीर पीयूष गोयलन वोनमुत जापान सहित भारत जामे शराकत दैरी मज सरमाकारी अके कलीदी उनसर रंग वतलाम तो तवक्का छो जे पानवन तालुकातन मेले अम सत बेहन पोचर अके निजी टेलीविजन चैनल दस मुनद शेपिंग दी एशियन सेंचुरी इस मुतलिक भारत जापान मुजाकरातन खिताब करान वन पीयूष गोयलन जे भारत के हुनरमंद अफरादी कुवत बापत चे जापानस मज सठा मौक दस्तियाब सपदान जम्मू कश्मीर में सपज आज सालान श्री अमरनाथ जी यात्रा बाजाब्त पाठ शुरू आज सुबह सपुद जसास त्रहत बहन यात्रन पर मुश्तमिल यात्रन हुंद गोड़न कैफल बालतल वैते अमरनाथ गुफाई कुन रवान अथ मौकस पर ओस इमन यात्रन अंदर जबरदस्त चिकचाव लबन इवान पेश अथ सिलसिलस मज आकाशवाणी श्रीनगर किस गांदरबल किस नामनिगार सुंद ये रिपोर्ट।
2: सालाना अमरनाथ यात्रा गयस बाकायद पे शुरू आज सुबह यानी 3 जुलाई गई सास बदस तदाद मज मुल्क ब्यून ब्यून हिस्सों पे यन वे यात्री बालतल के वत पवित्र गुफाई कुर रवाना युद्ध मौसम उबर आलूद उस तो न्यूक न्यूक रूद उस पेवान अमा पोज यात्रियन हुंद जोश जज्ब तो मजहबी अकीद उस आ नो वलवल पेश करान इंतजामियान यात्रियन हिंद सहूलियत खातर यात्रा किस प्रत पड़ाव पे खातर खा इंतजाम करम कि सिक्योरिटी हिंद तख्त तो बेहतरीन इंतजाम आम कर चतस पाव लायक जो रात बालतल बेस कैंपस पे सास बद यात्री गोड़े वतमित आज निकी निकी गाश पवित्र गुफाई कुन रवाना आई कर बालतल वति यात्रियन खातर प्रत पड़ाव पे यानी दुमेल रेल पथरी ब्राडी मर्ग संगम तो पवित्र गुफाई पे लंगरन हुंद बेहतरीन इंतजाम आमुत कर रवायती वति पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पे यात्री पवित्र गुफाई कुन पेश कदमी करान खबरों खतर भालतल बड़ साबिर
1: यपर सपुत जसास पांच सत दहन यात्रन पे मुश्तमिल ब्याखा कैफल पहलगाम वति श्री अमरनाथ जी गुफाई मज दर्शन करने बापत आज सुबह रवाना यह कथ भावन लायक जी रात सुबह उस जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान यात्रियन हुंद गोड़न कैफल जम कि भगवती नगर बेस कैंप पे वादी कुन रवाना कोरमुत इंतजामियान यात्रा कामयाबी सान मुनक्कद करने बापत हिफाजतिक तो बाकी तमाम इंतजाम पुख्त पाठ करमित पहलगाम तो बालतल चन दोशवन वतन पे पुलिस नीम फौजी फोर्स तो बाकी एजेंसियन एहलकार तैनात कर आमित इन सिविल इंतजामिया तो यात्रियन प्रेथ मुमकिन सहूलत याब थाने बापत दन पन काम करान छे दौरान सपुद जम के भगवती नगर बेस कैंप पे यात्रियन हुंद ब्याखा कैफला सुबह वादी कुन रवाना यथ मज 3865 यात्री शामिल छे तो यम यात्री छे 115 गाड़ियन मज सवार पेट्रोलियम तो कुदरती गैसिक मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरियन वोनमुत जे भारत छु तील साफ करने किस पन्ने सलाहियत अंदर तेजी सान तवसी करान नई दिल्ली में वोन तिमो किस प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करान जे इन वाले शेई पे बहन रेतन तम वाति मुल्क रिफाइनरी हिं सलाहियत सालान 300 मिलियन मीट्रिक टन तम तिमो वोन जे दही वरी पत छे गोडनिच ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम करना मगरबी एशिया किस बहरान दौरान सूरत हाल कापि रटने बापत भारती कार्रवाई हिंदिस बारस मज वोन हरदीप पुरियन जे हुकूमतन थे वारियास कालस पेट्रोल तो डीजल कीमत डंज तो अत दौरान आई इन मसनूआतन पे आई टैक्स तम कर तमो वोन जे हुकूमत चे लूकन हिंद मफादन हमेशा गोड़ अनवर दिवान तो तिमन पे तवजो मरकूज थवान वजीरन वोन जे پتمن۔

0: سامعین، یہ تھی تفصیل ہمارے یہاں سے آج نشر ہونے والے باقی پروگراموں کی۔ یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔
1: پیام صبح،
2: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
1: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
2: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے۔
1: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح،
2: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک،
1: آکاش وانی سری نگر سے پیام صبح۔
0: یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ سمین چند ہی لمحوں میں آپ کو لیے چلتے ہیں آکاش وانی دلی کے اسٹوڈیوز سماچار پربھات کے لیے۔ رنے کا بس ذرا سا انتظار کیجیے۔
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत

0: व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया।

0: आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
1: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार।

0: आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी श्रीनगर है।
3: सालों का तजुर्बा, मियारी नशरियात की रवायत
4: और आपके एतमाद का नाम आकाशवाणी श्रीनगर,
3: अब एक नए अंदाज में।
5: आग लगे इस आंगन को,
4: हर सुबह मालूमात, रहनुमाई और बेहतरीन पेशकश के साथ सुनते रहिए
3: पयामे सुबह। मॉर्निंग लाइव शो
4: आकाशवाणी श्रीनगर से हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
3: पयामे सुबह।
2: जय समीन, पयामे सुबह की नशिया देकर हम फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोबारा आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान फुरकान मजीद और मेरे साथ हैं
6: नाज़िमा रशीद।
2: इस खसूसी नशरियात को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं कंट्रोल रूम से मंजूर अहमद नजार और जावेद अहमद दोन साहब, और इस प्रोग्राम की मावलत कर रहे हैं सरफराज खान। इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं समीना शाह साहिबा। समीन, प्रोग्राम जारी है। नाज़िमा, हम बात कर रहे थे आज के एक ख़ास दिन पर जो प्लास्टिक के हवाले से मनाया जाता है, और पूरी दुनिया में ये दिन एक ऐसे शोर को बेदार करने की कोशिश इसमें की जा रही है ताकि लोग इस प्लास्टिक के जो मुज़िर असरात हैं उन मुज़िर असरात से बचें। लोगों में अवेयरनेस या शोर पैदा करने का वाहिद मकसद ये होता है कि हमारी जो ज़मीन है ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए वैसे ही फ़ायदा बख्श रहें जैसी आज तक रही है।
6: बिल्कुल।
2: और इस यानी ज़मीन की सेहत को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए मुख्तलिफ दिन मनाए जाते हैं। और हम जब

0: इस्तेमाल की बात करते हैं, प्लास्टिक के इस्तेमाल की जब हम बात करते हैं, 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग जो पूरी दुनिया में आज मना ये इस्तेमाल होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5 खरब प्लास्टिक बैग्स का मतलब दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन प्लास्टिक बैग्स हर मिनट इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 1 मिनट में पूरी दुनिया में 10 मिलियन प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनसे जो नुकसान हमारी ज़मीन को हो रहा है, हमारे माहौल को हो रहा है, वो किस कदर शदीद होगा।
1: बिल्कुल, और ये जो नुकसान है शायद इसकी भरपाई कभी हो नहीं सकती। जो आपने डेटा हम तक पहुंचाया, अगर उन तमाम प्लास्टिक बैग्स को आपस में हम बांध दिया जाए तो हर घंटे में ज़मीन का तकरीबन 7 मरतबा चक्कर लगाया जा सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है।
0: बिल्कुल, और ये कोई छोटी बात नहीं है। और इतना ही नहीं है, कहा जाता है कि अगर ये पूरा जो पॉलिथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, अगर देखा जाए तो एक मुल्क जैसे फ्रांस कहते हैं
1: जी,
0: पूरा फ्रांस जो है इनसे ढका जा सकता है, कि इतना जो है कवर जो है वो बन सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने जितना मुमकिन हो सके इस इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी में, अगरचे हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसने हमने जो है इस इस्तेमाल को इतना कम कर देना है कि ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत ही महसूस ना हो। और उसके अल्टरनेटिव्स बिल्कुल हैं, कवानीन मौजूद हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि हमने उन पर अमल करना है।
1: बिल्कुल, सन 2050 तक दुनिया में तकरीबन जो है 12,000 मिलियन टन प्लास्टिक का फजला पैदा होगा। और आयरलैंड की हम बात करें तो उसमें दरख्तों की जो शाखों में हवा से उड़कर फंस जाने वाले प्लास्टिक बैग्स के लिए एक दिलचस्प इस्तला विच्स निकर्स जो है इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, हम दूर नहीं जाएंगे, हम कश्मीर की तरफ ही आएंगे। हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, अगर हम टोटल सीवेज की बात करें तो शहर श्रीनगर का जो डेटा है 193 मिलियन लीटर जो सीवेज है सिर्फ श्रीनगर में ही बनता है। और इसका हम देखें कि 140 मिलियन लीटर बिना किसी ट्रीटमेंट के जो है डल लेक में चला जाता है। आप ही यहाँ दूर ना हम जाएं, कश्मीर की ही बात करें तो हालात ऐसे बने हुए हैं।
0: बिल्कुल, देखिए कहा जाता है कि जो दुनिया में खाम तेल की जो जैसे क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, तकरीबन 8 से 10% हिस्सा जो है वो प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर आप देख लीजिए, ये जो 8 से 10% जो खाम तेल है, क्रूड ऑयल है, इससे जो प्लास्टिक बनती है, अब देखिए 8 से 10% से ही कितना नुकसान जो है हमारे यहाँ होता है। अक्सर जब हम अपने यहाँ, चूंकि कश्मीर में जो है आबी ज़खायर काफ़ी हैं, और हम यहाँ वाटर बॉडीज़ की तरफ जब जाते हैं, और आप कहीं भी अगर आप जाएंगे, और अक्सर हमने देखा है कि ये प्लास्टिक जो पॉलीथीन ये जो बैग्स हैं या जो सिंगल यूज़ प्लास्ट है, इसको हमने क्या कर दिया है, इन झीलों में, इन नदियों में डंप कर दिया है। और आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज़ भी वायरल होते हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि आप देखिए कि किस तरह से ये जो हमारे आबी ज़खायर हैं, ये डंपिंग साइट्स बन चुके हैं। इसमें चूंकि अब देखिए हर जगह हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, एक इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी जो हमारी है वो ये है कि अगर हमारे गांव में, हमारे मोहल्लों में, या हमारी किसी भी जगह पे जहां हम रहते हों, वहां अगर फजला निकलता है प्लास्टिक का, तो हमने प्रॉपरली उसे वेस्ट जो मैनेजमेंट हमारे यहाँ सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इससे इस वेस्ट को यहाँ डंप करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। हमें, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो माहौल दोस्त हों, और उसका एक बेहतरीन जो नुस्खा है वो हम ये कि हम क्लोथिंग बैग्स इस्तेमाल करें, जूट की थैलियाँ इस्तेमाल करें, यूं कहें कि रियूजेबल बैग्स जो हैं उनके इस्तेमाल पर हम
1: बिल्कुल ध्यान दें। जी हकीकत, यहां
0: कुछ और भी बात करेंगे हम
1: जरूर,
0: पहले रुकते हैं इस नगमे के लिए।

जी दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पयाम सुबह में। आज हम प्लास्टिक फ्री डे मना रहे हैं बैनुल अक्वामी सतह पे, और आज हम सुबह से ही इस हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम कोशिश कम से कम कर सकते हैं कि अपने इलाके से, अपने घरों से, और बिल खसूस धीरे धीरे करके एक एक छोटा छोटा कदम लेके इंशाल्लाह ताला हम

0: पूरी दुनिया से इस प्लास्टिक की वबा को खत्म कर सकते हैं। हमने जेलों की भी बात की, हमने अमानत की भी बात की, और अमानत यही थी कि हमारे पास अभी तक ये जो जेलें हैं महफूज रही हैं, लेकिन अब जो हम जिस तरह से खराबी कर रहे हैं शायद ही आगे जाके महफूज रहे। जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम क्या कुछ छोड़ के जा रहे हैं, इसके हम जवाबदेह हैं। और हमने आगाज में भी बात की कि जेलों में जो अभी हम प्लास्टिक का जहर अब हमने डाल दिया है वो अब हमारी थाली तक भी पहुंच गया है। और रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है सामने, और साइंटिफिक रिपोर्ट के मुताबिक जो है कुछ हैवी मेटल्स पाए गए हैं हमारे यहाँ की जो झीलें हैं, बिलखसूस हम अगर चार मेजर वाटर बॉडीज की बात करें, फुरकान, जम्मू कश्मीर की जो है होकरसल, मानसबल, डल लेक और वुलर लेक का जायजा हुआ, और रिसर्चर्स ने बताया कि जो हमारे यहाँ के सिंगाड़े हैं उनकी ही बात करेंगे, या फिर नादिर खेवान तिमन हिज कथ अगर इस करो, इस वो अगर यमन गरन हिज कथ करो, अत मच आमित लबन ऐठ हैवी मेटल्स जो कि सेहत के लिए कहीं ना कहीं ख़राब है। और रिजल्ट जो है तशवीशनाक हैं। काडमियम जो है वो पाया गया है जो कि WHO की रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेड लिमिट जो है उससे 5 से 5.5% जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा जिंक की भी खासी क्वान्टिटी पाई गई है, बताया जा रहा है कि 30% ज़्यादा पाया गया है, वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना है। जिली डल की बात करें, जो हमारे यहाँ पर डल लेक है वो सबसे इस मामले में ख़राब माना जा रहा है पोल्यूशन के हवाले से, उसमें ज़्यादा ख़राबी हुई है, उसके बाद होकर सर, मानसबल और उसके बाद वुलर लेक। और आपको याद दिलाना चाहेंगे यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे जो है होकर सर और मानसबल में ही ज़्यादा चेस्ट नट्स पाए जाते हैं, डल लेक से तो हम ज़्यादा नदरू निकालते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो हम खाते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप देखें कि ये हमारे जो आमाल है हम तक ही वापस पहुंच रहे हैं, और इसके बाद हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेहत के मामलात हमारे यहाँ पे कितने ख़राब है। और हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हम ख़राब खाते हैं तो सेहत तो ख़राब होगी ही, लेकिन हम इस बात पे भी हमने ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम ख़राब खा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है।
1: बिल्कुल सही आपने कहा, और मुख्तलिफ इसमें काम भी किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव दिए जाते हैं जिनमें इस तरह की जो चीज़ें उनसे रोकथाम करने की जो है वो मुतलकिन को जो है वो अक्सर सलाह दी जाती है। हम देखते हैं कि वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और जो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर आता है, और लोगों को इसमें बावर कराया जाता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को किस तरह से अपनी जिंदगी से ख़त्म हम करें। समीन यहाँ 8:30 हो रहे हैं, आइए आकाशवाणी दिल्ली से खबरनामा सुनते हैं।
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाइची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, और BCCI ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाइची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक़वाम-ए-मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है, जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तस्करा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले के भी सख्त अल्फाज में

0: में खेला गया। स्पेन की तरफ से 36वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने पहला गोल किया, जबकि मैच के 66वें मिनट में पेद्रो ने दूसरा और 79वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने एक और गोल करके स्पेन की जीत में अहम रोल अदा किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। ये मैच आइंदा माह की 15 से 27 तारीख तक खेले जाएंगे। इफ्तिताही टेस्ट मैच आइंदा माह की 15 तारीख से गाल बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच आइंदा माह की 23 तारीख से कोलंबो के सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। ये सीरीज आईसीसी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का एक हिस्सा है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम

0: इसका एक हिस्सा है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भारत जापान मुश्तरका इक्तसादी फोरम से खिताब करने को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि भारत और जापान ने इक्तसादी तहफ़ मसनू जहानत AI दिफा और सेहत से मुतालिक शोबों में दस्तखत किए हैं। भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तोसी कर रहा है। अगले साल भारत में रिफाइनरी की सलाहियत 300 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ने का इम्कान है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के इस बयान को आज के अखबार ने नुमाया किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने मुल्क भर के बैन अलावा हवाई अड्डों पर एबोला वायरस की जांच के लिए AIR सुविधा पोर्टल 2.0 का किया आगाज। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। और स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी श्रीनगर समय मोहतरम 8:55 सफेद पेश खदमत स्पॉन्सर प्रोग्राम हम सफर
3: समीन पेश खदमत प्रोग्राम हम सफर ये प्रोग्राम चु तहताम वातनावान हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका दारुल उलूम रोड बागे सुंदरबाला छत्सबल श्रीनगर ब्रांच ऑफिस शेखुल आलम रोड करन नगर श्रीनगर।

0: जम्मू कश्मीर को वजीर आजम फंड के तहत 275 एक्सरे मशीनों 9 एमआरआई और 4 मेमोग्राफी यूनिट्स की मंजूरी।
1: 20 जुलाई के आसपास उम्र काबीना में पहली बड़ी तौसी और रद्द बदल का इम्कान। 3 खाली वजारतों पर नए चेहरों की शमूलियत मुतवक्का। कलमदान भी तब्दील किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा 9 वज़रा की गुंजाइश। कांग्रेस को नुमाइंदगी मिलने पर भी कयास आ रही है।
0: शहर की खस्ता सड़कें मुसाफिरों के लिए जानलेवा, शहरियों का फौरी मरम्मत का मुतालबा।
1: 88 साल सफर में तारीखी कामयाबी। जेके बैंक ने 3 ट्रिलियन रुपए का कारोबारी संग मील अबूर किया।
0: सोपोर में आवारा कुत्तों की दहशत, 2 रोज में 4 बच्चे जख्मी, शहरियों का फौरी कार्रवाई का मुतालबा।
1: जम्मू कश्मीर में बादल फटने, सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से मामलात मुतासिर। मानसून और मगरबी हवाओं का मिलाप, 6 जुलाई तक मजीद मौसदार बारिशों की पेशनगोई। शदीद गर्मी की लहर का खात्मा। महकमे मौसमियात का फ्लैश फ्लड्स, चट्टाने खिसकने, पत्थर गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया।
0: हिंद जापान के दरमियान दफा समेत कई शोबों में मुआहिदे, 100 खरब येन की सरमायाकारी, खसूसी स्ट्रेटजिक और आलमी शराकतदारी के नए बाब का आगाज।
1: बाड़ीपुरा में ट्रैक्टर नहर में जाकर जा गिरा और नौजवान की मौत हुई।
0: मुलाजमत के लिए कई लोगों ने दी रिश्वत, राम मंदिर नजराना चोरी मामले पर पूछताछ में इंकशाफ।
1: अमरनाथ यात्रा 2026 शादीपुरा और गांधरबल में यात्रियों का वालेहाना इस्तकबाल, भाईचारे की अलामत एक रिपोर्ट।
0: फिर नफरत और तशद्दुद की आग में 20 गर्राख। मणिपुर में ताजा कशीदगी पर राहुल गांधी का इजहार तशवीश।
1: वजीर आला का जम्मू कश्मीर को दरपेश माली मुश्किलात का एतराफ, मनसूबों की निगरानी नागुजर।
0: खामनाई की आखिरी रसूमात में आता हसनैन और मार्गरीटा शिरकत करेंगे। गरके और नितिन नबीन को दावतनामा मौसूल, सलमान खुर्शीद ईरान जाएंगे।
1: जाली डिग्री और नौकरियों का घोटाला, 4 मुलजमान के खिलाफ चार्जशीट दायर।
0: जी, मेरे पास और एक अंग्रेजी रोजनामा, इससे सुर्खी लेते हैं। लिखते हैं, डीसी श्रीनगर रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ फेज 3 हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स।
1: सभी सुर्खियां भी और भी हैं, पहले ये वक्फा।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आरिफ हुसैन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाई तकाईची ने पाकिस्तान की सरहद पर दहशत पसंदी समेत हर किस्म की इंतहा पसंदी की जोरदार मजम्मत की है। भारत जापान सरबरा इजलास के बाद एक मुश्तरक बयान में दोनों लीडरों ने गुज़श्ता साल अप्रैल में पहलगाम हमले और नवंबर में दिल्ली हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इन हमलों के सभी कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। दोनों वज़राए आज़म ने एक खुशहाल भारत बहरिल काहिल के लिए हम ख्याल ममालिक के माबैन इश्तराक मजबूत करने के अज़्म का भी इजहार किया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का बाज़ाबिता आगाज़ हो गया है। यात्रियों को आज सुबह सवेरे पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से सीनियर हुकाम की मौजूदगी में पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया। अबर आलूद मौसम के बीच इस वक्त यात्री पूरे जोश और जज्बे के साथ बाबा बर्फानी की गुफा की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। दोनों रास्तों के मुख्तलिफ पड़ावों पर इंतजामिया की जानिब से सलामती और लंगरों के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। तफसीली रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे।
1: पहलगाम में नुनवन बेस कैंप से तकरीबन सुबह 4:30 बजे जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने SSP अनंतनाग, श्री अमूद अशोक नागपुरी और दूसरे पैरामिलिट्री के अफसरान के हमरा यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर चंदनवाड़ी के लिए रवाना किया, जबकि बालतल से भी यहां के जिला के तरक्याती कमिश्नर ने अपने दूसरे आला अफसरान के हमरा यात्रियों को अगले पड़ाव के लिए रवाना किया। पहलगाम और बालतल से पवित्र गुफा तक के किसी किसी पड़ाव पर अभी मौसम अबर आलूदा है। याद रहे, श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्तलिफ महकमों ने यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा फराहम की है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए साबिर अयूब के साथ पहलगाम नुनवन बेस कैंप से मैं तसद्दुक रशीद।
0: गौरतलब है कि कल 4523 यात्रियों का पहला काफिला वादी पहुंच गया था, जिनका काजीगुंड में नवयुग टनल के पास मकामी लोगों की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। दरियासना जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से आज 3865 यात्रियों के दूसरे जत्थे को वादी की तरफ रवाना किया गया है। इस दौरान खेलकूद और उमूरी सार्फीन के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि सरकार सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आसन इनेकाद बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रही है। बालतल पहुंचने वाले यात्रियों के पहले काफिले का इस्तकबाल करते हुए उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने यात्रा के नुनवन कैंप का दौरा करके वहां श्रद्धालुओं के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम नीज दीगर सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा के रास्ते पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अहलकारों की ड्यूटी के तय लगा

0: के लिए उनकी सराहना की। इस दौरान सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की पैरवी में रोजाना यात्रियों की एक हद मुकर्रर की गई है, जो कि यात्री की सलामती और रूहानी सफर के अहसन इनेकाद के लिए लाजमी है। ख्वाहिशमंद यात्रियों से कहा गया है कि वो अपना इंदराज जरूर कराएं और मुकर्रर की गई तारीख पर ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि बाइख्तियार उस्ताद एक तालिबे इल्म को पुरएतमाद बना सकता है और मजबूत तालीमी इदारे खुशहाल समाज की तश्कील में अहम रोल अदा करते हैं। महकमे स्कूली तालीम, SCERT और भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के मुश्तरक अहतमाम से जम्मू में मुनक्किदा एक रोज़ा सलाहियत साजी के प्रोग्राम से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि तालीम का मकसद इरतकाई अमल को फ़रोग देना है।
1: यदि टीचर्स इम्पावर्ड होंगे तो स्टूडेंट्स आत्मविश्वासी बनेंगे। यदि शिक्षा सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर एक उज्ज्वल, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा। यह एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के व्यापक उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है।
0: वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर ज़िले की यकसां तरक्की के लिए पुरअज़्म है। जनूबी कश्मीर के शोपियां के दौरे के दौरान ज़िले के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने 76 करोड़ रुपये मालियत के कई प्रोजेक्टों को आवाम के नाम वक्फ किया। उन्होंने ज़िले के बाग मालिकान और किसानों को दरपेश मसाइल का भी जायज़ा लिया। रुकले पार्लियामान मियाँ अल्ताफ अहमद ने कुलगाम का दौरा करके वहां ज़िला तरक्याती कोऑर्डिनेशन और निगरानी कमेटी की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने सभी सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी बढ़ाने की ज़रूरत उजागर करते हुए कई स्कीमों के बाज मुस्तकीन में सैंक्शन लेटर्स तकसीम किए। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.3 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।
2: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। समीन सुबह के 9:30 हुए हैं और पैम सुबह की नशरियात जारी है। मैं हूँ आपका मेज़बान फुरकान मजीद और आज की नशरियात में मेरे साथ हैं
3: नाजिमा।
2: आज जुमतुल मुबारक भी है और समीन को इंतज़ार होगा नातिया कलाम, हम उनके लिए पेश करते हैं
3: जी।
2: लेकिन चूंकि पैम सुबह की नशरियात में हर लम्हे हम कोशिश करते हैं कि समीन तक ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसे वाक़यात पहुँचाए जाएँ जिसमें उनके इल्म में इजाफा हो, और आज चूँकि 13 जुलाई है और इसकी तारीख का अभी तक हमने हवाला नहीं दिया, और तारीख का हवाला देना भी बहुत ज़रूरी है कि आज पूरी दुनिया में तारीख में क्या कुछ ख़ास हुआ है
3: जी।
2: और आज की तारीखी वाक़यात जो है वो आप तक हम समीन ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस नातिया कलाम से।

0: कामयाब हुए। इसी तरह 1760 में मराठा फौज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। समीन, आपको यह भी बताते चलें कि 1778 ईस्वी में फारस ने अर्जेंटाइन के खिलाफ ऐलान जंग किया था। वहीं अगर हम बात करते हैं 1819 की, तो अमेरिका का पहला स्विंग बैंक, बैंक ऑफ स्विंग इन न्यूयॉर्क का आगाज हुआ। इसी तरह बात करते हैं 1884 की, स्टॉक एक्सचेंज डाउ जूनियर ने अपना पहला स्टॉक इंडेक्स शाया किया। 1886 में न्यूयॉर्क ट्रिब्यून टाइपराइटर इस्तेमाल करने वाला पहला अखबार बन गया।
1: जी, 1890 में एडा को अमेरिका की जो है 43वीं रियासत बन गई। 1897 में अतालवी साइंसदान मार्कोनी ने लंदन में रेडियो को पेटेंट कराया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को बरतानवी हुकूमत ने गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। 1928 में लंदन में पहली बार कलर टीवी प्रोग्राम नशर किया गया। 1938 में रियासताई मुतहदा ने सदर जो है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने इटर्नल लाइट पीस मेमोरियल को वक्फ किया। 1944 दूसरी जंग अजीम ऑपरेशन बागान के दौरान स्वेत फौजियों के जरिए नाजियों के कंट्रोल से जो है मनसिक को आज़ाद करा दिया। और 1952 में पोटियोको के आइन की रियासती मुतहदा की कांग्रेस ने तौसीक की। और इसके अलावा जो है 1962 में फ्रांसी सदर ने अल्जीरिया की आज़ादी का ऐलान किया। 1962 में जैकी रॉबिन्सन नेशनल बेसबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले अफ्रीकी बन गए। 1948 में जो है कोलकाता में दूसरे हाउड एप्पल के नाम से मशहूर जो है मशहूर विद्या सागर सेतु की तामीर शुरू हुई।

1851 में चार्ल्स बिनरमैन ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 1883 में फ्रांस काफ्का नॉवल निगार, 1939 के ऊषा भारतीय खातून जज, 1966 जॉनी ली अमरीकी गुलोकार, 1951 रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड क्रिकेट खिलाड़ी, 1952 अमित कुमार भारतीय अदाकार गुलोकार हिदायतकार, 1959 जो है डेविड शोर कैनेडियन मुनसिफ है, 1962 में टॉम क्रूज अमरीकी अदाकार मुनसिफ हदायतकार और फिल्म साज, 1980 हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। अब उन अशखास की बात जिनकी आज जो है योम वफात है, 1918 मोहम्मद खामिस सुल्तान सल्तनत उस्मानिया, 1979 को आलम लोहार पाकिस्तान गुलोकार जो है, 1996 में राजकुमार भारतीय अदाकार, 2011 में अली बहर बहरीनी गुलोकार मौसीकार और 2004 में पाकिस्तानी ड्रामा अदाकार हसाम काजी, 2019 में निसार नासिक उर्दू शायर और 2020 में सरोज खान मशहूर भारतीय कोरियोग्राफर।

0: बात ये कर कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के जो असरात हैं वो चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं।
1: जी
0: ज़रूरत इस बात की है कि हम होश के ना खुलने और हम ये इंश्योर करें, हम ये हमेशा कोशिश करें कि हमारी वजह से जो माहौल है इस पर कोई बुरा असर ना पड़े।
1: अभी भी वक्त है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बाहर तो चार मौसम है लेकिन यहाँ पे छह मौसम हम देखते हैं, और छह मौसम जो है, हालांकि हम अक्सर बात करते हैं और मौसम तो प्रेडिक्टेबल होता नहीं, लेकिन फिर भी किसी हद तक हमें अंदाजा होता था कि मौसम कौन सी करवट ले सकते हैं और किस मौसम में। लेकिन इस वक्त पे सुबह एक मौसम, शाम में एक मौसम, और रात को जो है तीसरा भी देखने को कभी कभार मिल ही जाता है। तो बात ऐसी है कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात हमें दिख रहे हैं, बहुत चीजें करनी चाहिए। वेंकैया जी, बाहर आ चला और बाहर अच्छा इस अक्सर वाना के पानी से हाथों के सवारियाँ ज्यादा ख्याल था, वो कॉटन के कपड़े पहनने की कोशिश किया करें। इसके अलावा खुद को हाइड्रेटेड रखें, और हीट वेव जो होती है, जो दोपहर का वक्त रहता है, उसका भी जरा ख्याल करें। बच्चे और बुजुर्गों को बाहर आप उस वक्त पे कम से कम अलाउ ना करें। इसके अलावा पानी पिया करें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, और जो फ्रूट्स है जिसमें वाटर कॉन्टेंट काफी रहता है वो आप अगर लें तो बहुत बेहतर होगा। वाटरमेलन आता है, मस्क मेलन आता है, क्यूकम्बर या क्लोअर चेसमाना सुचीवा, टमाटर आप खा सकते हैं, ऑरेंज्स विटामिन सी आपको फराहम करते हैं। इसके अलावा एप्पल्स भी आप इस वक्त पे ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल, बहुत मुफीद मशवरा आपने अपने सामीन को दिया, और हमें उम्मीद है कि हमारी जो सामीन हैं जो ट्रांसमिशन अक्सर सुनते हैं, बल्कि हमेशा सुनते हैं, और हमें उम्मीद है कि वो इन बातों पर अमल करेंगे और अपने सेहत का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। लाजमी सुबह के 10 बज रहे हैं
1: हाँ जी,
0: और मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ,
1: हमें इशारा समझ आ गया।
0: बहुत शुक्रिया आपका जी सामीन। मैं यहाँ आपसे इजाज़त लेता हूँ, लेकिन पयाम सुबह की जो नशरियात है वो जारी रहेगी। पयाम सुबह की नशरियात में एक मेहमान भी आपको 10:30 पर शामिल होगा। यहाँ नाजमा और समीन, आप सबको मैं इजाज़त देता हूँ,
1: बिल्कुल
0: ऐसा
1: अल्लाह
0: आप
1: के हवाले।
0: प्रोग्राम कंटिन्यू कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। समीन, आप सुनिए सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम छु प्रे दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजन ताम नश्र शब्द।

0: लेक्चरर ज्वाइन करने से पहले मैंने बैंक में काम किया
1: जी
0: दो ढाई साल, तो महसूस हुआ कि बैंक शायद मेरे मिजाज के हम आहंग नहीं है।
1: हाँ
0: और फिर उसी दौरान मेरा पीएससी से ये सिलेक्शन हुई, तो मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया।
1: अच्छा
0: मैं लेक्चरर रहा, तो फिर प्रिंसिपल हो गया, फिर डायरेक्टर एकेडमिक्स, अल्टीमेटली इख्तिताम तक पहुंचे।
1: नहीं अभी इख्तिताम तो नहीं, अभी
0: तो
1: इंशाल्लाह बहुत सफर
0: अभी अभी
1: बाकी है।
0: मैं अभी मैं सेकेंड इनिंग्स खेल रहा हूँ,
1: माशाल्लाह
0: और
1: माशाल्लाह
0: मेरा जाती अकीदा है कि रिटायरमेंट डज नॉट मीन रिटायरमेंट, इट मीन्स री अटायरमेंट।
1: ओह गुड
0: आप
1: ग्रेट,
0: गवर्नमेंट के कपड़े उतारते हैं और फिर अपने कपड़े में दूसरी इनिंग शुरू करते हैं।
1: बहुत खूब बहुत खूब जी। बहसती डायरेक्टर एकेडमिक्स, क्या कुछ फराइज आपके रहे हैं या क्या कुछ
0: मेरा
1: रोल रहा है आपका?
0: मेरा ये डोमेन था कि जो कुछ भी स्कूल निसाब में पढ़ाना था
1: जी
0: उसको मैंने तरतीब देना था। उसको ये देखना था, परखना था कि क्या ये जो वक्त है, क्या ये हम असर है, क्या ये हम आंगत रखता है
1: बहुत हूँ
0: हमारी सोसाइटी के साथ।
1: जी
0: ये कहीं ऐसा नहीं है कि कब हम कुछ और पढ़ाते हैं और समाज को किसी और चीज की जरूरत।
1: जरूरत है
0: तो इस सिलसिले में मैंने एक कोशिश की, तो जो बहुत सारा पुरानी टेक्स्ट बुक्स थी, निसाब था, मैंने चेंज करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो
1: कोशिश
0: स्कूल
1: जा
0: में
1: रही
0: पढ़ाया
1: है।
0: जा रहा है। तो मैंने आपको ये बताते चलूं, अपने नाजरीन को,
1: सामीन को जी
0: सामाइन को मैं बताते चलूं कि मैंने हमारे जो असलाफ है
1: जी
0: उनका कलाम भी इसमें निसाब में डाला।
1: बहुत खूब
0: मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि मजहूर साहब के एक बहुत ही मशहूर, शायद हर जगह सुबह स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, साहिबो सच्छम में चैनी
1: वक्त
0: वक्त
1: में
0: में
1: असली
0: असल छावतम,
1: छावतम।
0: उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने किताब में डाला।
1: ग्रेट
0: लॉर्ड यू ओ माय होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, हाउ लॉन्ग शैल आई लिव अनअवेयर्स, पोर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज,
1: बहुत
0: लेंड द एयर टू माय फीलिंग्स एंड डू क्योर माय इल्स एंड पेन्स, डू नॉट Let me not ever suffer in want. Save me from sloth, infirmity, and chaos. Bless my heart with passion, zest and hope. This is I tried to, मैंने ये कोशिश की कि देखो जब आप अपने जो आपका समाज है, जो आपकी परंपरा है, जो आपका लिटरेचर है,
1: जी
0: जब तक आप उसमें अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है, शायद और किसी लिटरेचर और किसी तमद्दुन को आप नहीं समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल ठीक।
0: तो एक
1: मैं जो
0: कोशिश रही कि मैं उसको, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंटेक्चुअलाइज, मतलब जिस माहौल में बच्चा रहता है उसी माहौल से के
1: मुनासिबत
0: मुताबिक
1: से
0: उसको
1: बिल्कुल
0: कंटेंट दिया जाए और पढ़ाया जाए।
1: बहुत खूब। महजूर साहब का जो ये आपने कलाम अभी हम तक पहुंचाया, इसी कलाम में और एक जगह पे ये भी आया है कि शक्ल शुस इंसान मगर इंसानियत निज बेखबर है, उतमत इम्तिहा यम शक्ल मत मंद छाप। इस विंकेनस वुछान के अक्सर छ विंकेन एक लोग शिकायत करा कि विंकेनस,
0: पहले इसका मैं अंग्रेजी,
1: प्लीज प्लीज डू
0: इनफॉर्म आई एम अ मैन बट इन रियलिटी फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी।
1: ह्यूमैनिटी से बहुत दूर शायद आ चुके हैं, जो अभी तक बड़ों की शिकायत रही है। तो आपकी आपकी नजर में आप इस शिकायत को कहाँ तक हकीकत पाते हैं और इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती
0: मैं
1: है?
0: बताता हूं कि ये इखलाकियात का फुकदान आजकल है, और चूंकि हर एक मादियत के पीछे पड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। दो मेरा जाती ख्याल है
1: जी
0: कि मादियत के पीछे पड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी भी हद होनी चाहिए। कशिर परचेस वनान, एंड आई एम श्योर दैट वेल मोस्ट ऑफ जो अक्सर हम नहीं जानते हैं, दपान येड खोच्चे अच्छबड़,
1: येड खोच्चे अच्छबड़, ओके
0: येड खोच्चे अच्छबड़ में क्यों वाजवान
1: बिल्कुल
0: कहने इमीजिएट।

0: go for the second one?
1: नहीं
0: मगर आँख कहती है नहीं और लाओ और लाओ और लाओ They say that in English we say my tummy is bigger than my eye. Sorry, my eye is bigger than my tummy. मेरी आँख मेरी पेट से ज़्यादा बड़ा है और ये जो मादियत के एक एक एक दौर चला है अंधाधुंध तरीके से लोग पैसों के पीछे पड़े हैं मैं कहता हूँ गलत नहीं है लेकिन इसमें भी एक हद होनी चाहिए इसमें भी ये होना चाहिए कि हलाल और हराम क्या है और अगर ये तमीज नहीं है तो फिर हैवान और इंसान में कोई फर्क नहीं है
1: हलाल और हराम की तमीज कैसे आएगी जैसे इस वक्त पे अगर हम बात करें आप चूंकि सिलेबस वगैरह जो है आप देख रहे थे इतने वक्त से हमने देखा कि पहले के बच्चों में अगर हम उससे भी पहले बात करें तालीम जब इतनी आम नहीं थी लेकिन इंसानियत थी तमीज थी सही और गलत में एक तफरीक इंसान को समझ आता था उसके बाद एक और जनरेशन आई जहां पे हमें एटलीस्ट कम से कम अगर स्कूल्स में इतना इल्म वैसे स्कूल्स में तो होता था टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने वो चीजें बहुत विटनेस की अपने उस्ताद से अपने टीचर से असातिज़ा के राम से लेकिन उसके बाद फिर हमें घर में भी वो तरबियत मिल जाती थी लेकिन आज अगर हम देखें हमने शायद स्कूल्स में भी वो निसाब में इतना उस पर ध्यान दिया नहीं जाता उसके बाद वालिदैन का भी जो है फोकस शिफ्ट हो गया है उस पर ध्यान हट गया है तो बच्चे से हम शिकायत कैसे करें कि है नहीं इस हवाले से आपका क्या
0: ख्याल है बताता हूँ
1: ये तमीज आएगी कहाँ से फिर
0: जहाँ तक इखलाकियात का ताल्लुक है
1: जी
0: स्कूल में हमने ये महदूद करके रखा है स्कूल असेंबली तक हम सुबह प्रेयर करते हैं सुबह सरमन देते हैं
1: जी
0: और इसके बाद ड्यूरिंग डे टाइम दिन के दौरान हम बच्चे को कभी भी इखलाकियात नहीं सिखाते हैं और बतौर सब्जेक्ट के
1: जी जी
0: लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि जो एक काबिल टीचर होगा वो किसी न किसी तरीके से अपना जो जो पढ़ाता है जो वो सिखाता है उसमें से वो मॉरल लेसन ड्रा कर सकता है और बच्चों तक वो इखलाकियात पहुंचा सकता है आपको एक और बात बताऊं और अजीब बात है देखिए माशाल्लाह आप इस वक्त यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में आपको अभी आज केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेसन या सोशल साइंस के लेसन याद है जो आपने पढ़े ऑन द कंट्रेरी जो इखलाकी बात आपने अपने असातिज़ा से या अपने मोहतरम उस्तादों से सुनी है अभी तक वो कुंद है आपके जहन में
1: बिल्कुल
0: फिजिक्स केमिस्ट्री याद नहीं होगी सोशल साइंस याद नहीं होगा और बाकी जो आपने क्लास में पढ़ा है बतौर रेगुलर सब्जेक्ट के वो याद नहीं है आपको लेकिन अगर कभी किसी उस्ताद ने अच्छी बात कही है वो जहनशीन हो गई है और पत्थर की लकीर पर आपके जहन में वो बन गई है मैं आपको बताता हूं अपनी एक मिसाल मैं पढ़ाता था क्लास में एक बार पढ़ाते पढ़ाते कोई मिसाल आ गई मैंने कहा देखो इंसान की ह्यूमिलिटी क्या है उसका जो क्या उस ह्यूमिलिटी को कहते हैं नरमी नदामत इंसान बासावनो एमिक मुझे कसम आगो मुझे नदामत ठीक मुझे पानी जाए ठीक है बुझस नदीम नदामत छम बुझस वाते पकान बुझस कहीं नहीं बुझाम बर्ड कहीं या केल दिया तो सोचा वाते पकान मुझे जो ऑप्शन खोरस्तन तो तुम तुलम तो दितुम दाकत होम साड़ के कारनस पर साड़ के एक्साइड पर ताकि युथन कहाँ बे पाके इम्पैक्ट तो तमिसले दैम ऑप्शन छमे बुझुक बतुल अत सतन तो बतराव तथ जाए ये कैसे बेये या आज खदशे के अमिस वाते नुकसान
1: ठीक
0: मे वन याद बह कर तन शेयर मोन अक् स्टूडेंट उस मे उस मॉडरेट कर दूरदर्शन पर प्रोग्राम तो लाइव चला प्रोग्राम दुपन है मे याद पन्नस उस्ताद सज क पर्नावान उस इथ पे कल दल ये चीजें जो इखलाकी लेसन इखलाकियात है ये आपके जहन में कुंद होती जा रही है तो इसके बाद ये टीचर का मैं रोल कहता हूं अब टीचर एक अकेला काम नहीं कर सकता अंग्रेजी में कहते हैं ना सिंगल स्पैरो विल नॉट मेक समर जब तक फैमिली मेंबर्स नॉट पेरेंट्स ओनली ऑल फैमिली मेंबर्स जब तक इसमें सॉरी शुवरी तौर न जुड़ जाए ये ख्वाब अधूरा ही रहेगा

0: शर्मिंदे ताबीर नहीं होगा मुझे सेंस गाच बुझ्स गरीब बुझ्स वन कुछ आम है मे ये फार्मस एटेस्टेशन कर हाय खुद मैंने वह मे गो सर मे पलव कर चेज कर मे ऑलरेडी लेट गुम निका दुन ये कहें और मेरा बेटा जाता है पापा कहता है वो यहाँ नहीं है
1: वो यहाँ नहीं
0: देखो उसका मासूमियत देखो कितनी है और उसको देखो कि मैं क्या सिखाता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक हम इसमें सारे जुड़ नहीं जाएंगे ये काम नहीं होगा बासा करे बे आख कोट मिसाल लेटेस्ट मैं आई मौज आख ये आई जबरदस्त शिकायत है गोड़ तो उसने मेन पियान त्रा मेनस कमरस मन वह तम बड़ बड़ कत कर तो बहुत कुर्सी पे मे दस क्या दलील दुपन मे सर कत कर यह त्रावानी मे दस वल सो तो सो मे गुल

वही जिलेनी तो सेहतनी दी आवाज मजबूत होते ये खूबसूरत नाते कलाम उम्मीद करा कि पसंद आते जरूर आम और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पयाम सुख की नशरियात में। हमारे साथ आज माहिर तालीम मौजूद हैं महराजुद्दीन जरगर साहब जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं एकेडमिक्स के। बातचीत का सिलसिला इनसे जारी है और बात हम कर रहे हैं आज अखलाकियात की। इस ये कथ करान

0: अक्सर बेशतर आज गोस उस कॉन्सेप्ट मकलो अक्सर इस वना वालदेन के है अवलाद गो बुजुर्ग दखलूर
1: आनस
0: तुम्हें उस ही पता कि अस्कर इमन तरबियत यम छे असर तो अशी हिद आजकल छ वना ने नेचर सो साइड गो स्लो करा देते है गस यू वर टोर करत ये छ के हन के मतलब है एमिस मच एमिस से छ एमिस मच इज इनवेरी के एमिस मच के हुकूक न छ में हुकूक पता न छ में एमिस से रिस्पांसिबिलिटीज पता ये सो इस से पास
1: अब चुन शायद पानिंग पाई तो इसके हुकूक
0: मतलब है
1: ना तो
0: बे माने में आख चीज गवर्नमेंट ये चाहन तोन से जरिए ब जी इज्जत वालदान ता बात ना उन छ कम से कम करे आख कोशिश के बचस मस करे ये सलाहियत पद कि सो है कि नो वनत है तन तमिस नो वनन छ ऐसे सर से है ना तमिस ओ ओ ओ सो छ ओ ओ ओ करान मगर यतन तमिस न छ वनन ता तन सो वनन सो आक सो न हज करे हिच न रुन बाचे के जे सब ये कथ वनन जे कसी दिसहन आसन के सलामन ना ये करन बके न इश गलत ये नो हिच न नो नाइस बचवन
1: आपने बहुत अच्छी बात की आपने आगाज मन कि पनस पानस साम हूं कि क्या कोर पे मैं पे वस्ताद याद और ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बुजुर्ग से थे तो कह कथ खुद सवाल तमो तम अक्सर पारनान पे वनान कि शाम से शोंगान शोंग ब्रो जहन मावान कि मे क्या कोर असल आज दोहस मे क्या कोर आज दोहस खराब अम सो तुम एक तो यादाश्त आपकी तेज होगी तुम रोज याद कि क्या क्या कोर बनो तुम पनस पानस अकाउंटेबल मे मा कोर गलत ये गलत कोर कोशिश करो सुम दोह रही इस तुम आज ठीक और वस्ताद तम वस्ताद मे बस आज ब्रो दह वरी बह वरी पंदह वरी ब्रो या फिर जो हमारी जिंदगी से अब पंद्रह साल पहले निकल चुके हैं मगर वनकन तिहज कथ याद
0: वस्ताद फिजिक्स केमिस्ट्री वट एवर थियरीज लर्न यू लर्न यू डोंट रिटेन देम इन योर लाइफ यू फॉरगेट देम बट वट एवर गुड थिंग्स यू लर्न कह तुम असल कथ रिज कथ बोजक सो कुंद आसान जहनस मज
1: बिल्कुल ठीक बिल्कुल
0: हकीक अगर मैं वन विकस ते मे वन सा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर शायद आज ना पता क्या इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जिंदगी
1: में
0: निकल जरूरत मगर ये उस्ताद मोहतरम ये कथ शाम कहसाब इट्स स्टिल देयर इन योर माइंड रिज कथ रोजान जहनस मज यह कुंद ग जहनस मज न्यूक्लियर फैमिली बने डिसइंटेग्रेशन गई अम सो ज्यादा इरविन नानि बड़ब आवन वालदन तम माजा आ रच माजा आ तम पज पे सो तिज कथ दिल पे वो दिल सो बहान
1: बिल्कुल
0: आजकल सो खराबी है कहीं पे द्राव नीट रिजल्ट तुझे पता कतो कर खुदकशी कतो कर खुदकशी पांच त्रह बचो कर खुदकशी अच्छा बच्चन जहां तेचन कि कुत बर्दाश्त क्या गो अच्छा जहन तचन हेचमत कि नीट इज नॉट द अल्टीमेट ऑफ लाइफ सक्सेस इज नॉट ओनली द अल्टीमेट ऑफ लाइफ इवन फेलियर सर्व स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस
1: या फेलियर की अब आदत नहीं है और नो सुनने की आदत नहीं है जिसे नो न बोजुन छ आज शुरन कि हम नो नहीं सुनते हमें किसी चीज की
0: बच्चे तो होने होना चाहिए
1: वो चीज है
0: यम चीज़ ही, यम चीज़ पाद का।
1: और इस लक्षार पेटे ये नकार बोझन आदत रूद न बचस सुच कुन चीजस वादुन लागा मैं गसी ते मुझे हजर गस तो शायद वो भी एक वजह है और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा
0: और हम पैम्पर्ड चिल्ड्रन बनाते हैं बदमाश क्यों से बार कार बोर्ड गस बदमाश क्यों से ना बने ते मुझे सो आख मेंटल मेंटल
1: नकारुक यन आव यह कॉन्सेप्ट हको नीत और हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं तिमन मा कहन अगर कह बच

0: वाले दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यूस एजुक प्रोग्राम मुजैसे पाया में सुबह की आखिरी कड़ी हमने आप तक पहुंचाई। इंशाल्लाह ताला हमारे पास कुछ अभी वक्त है, लेकिन न्यारा न्यारा वातनों व खूबसूरत नातिया कलाम तो अहतामत इसी के साथ आप मुझे इजाजत देंगे। और हमारी साथी जो है फातिमा सूफी स्टूडियोज में आ चुकी हैं इस प्यारे से नाते कलाम के बाद आप हमारी साथी के साथ जो है बाकी के प्रोग्राम्स सुन पाएंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में शामिल रखें।
1: शुक्रिया।
0: फी अमानिल्लाह।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मेरे लिए 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। ठीक है, 11:30 हुए हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। ये छह आकाशवाणी श्रीनगर मीडिया में जहत अरहट शरिया उठक मीटर ते FM 103.5 MHz पेट समीन वंश पे छकर दुरो फनकार छे अब्दुल गनी चौपान ते हमनवाई मनीष बुजुते कलाई नियाम सब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ

0: England will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:10 हुए हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम 268.1 मीटर तो एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय आज जुमातुल मुबारक पेश के कशीर नाज शरीफ دستلو محمد عبداللہ دیو ندیم صوبنی کلام سے پیش کرن شنیما دیو دست سے تھی

0: है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्यायिक के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य

0: से सिलिका या रेत को देखता आया है,
1: जी
0: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगी,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ।
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका, जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
6: मामा जी, मामा जी।
2: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है
6: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
2: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
6: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
2: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे

0: भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भूर्ज वृक्ष।
0: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
0: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
0: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम

0: जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
1: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
0: जी।
1: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
0: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
2: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती, शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है,
1: पर क्या करूं,
0: तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
2: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
2: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछे तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
2: अखा अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं, इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
2: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
2: अच्छा वाह, अरे
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
2: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।

0: मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
1: चल बेटा मोती।
0: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दल प्रचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
3: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
3: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
5: अलख निरंजन।
6: साधु बाबा।
5: अब अच्छा,
6: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
5: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
6: क्या?
5: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
6: है?
5: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
6: अच्छा।
5: हाँ।

0: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
0: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
0: रानी माँ ने रसद पानी हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: है? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
0: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
0: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
0: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
0: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
0: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं। बदन सिंह रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में सील लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
5: आशुताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: जी दोस्तों, आप समाप्त कर रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT उमंग।
9: ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
10: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन

0: स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
1: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहाँ प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
0: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
1: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: इन 9 मुंतखब अरकान के लिए एक 2 रोज़ा तारुफी प्रोग्राम शुरू किया गया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जलजले से मुतासरा वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा किया है। यहाँ तकरीबन 2600 अफराद हलाक हो गए और हज़ारों अब भी लापता हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के इलाकों में कल तक के लिए शदीद और बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा आलमी कप में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुँच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। अकीदतमंदों के नाम एक खत में जनाब मोदी ने श्री अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के मुबारक दर्शन लाखों अकीदतमंदों की जिंदगी में एक नाकाबिले फरामोश और नेक लम्हा होता है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भी सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज़ पर सभी अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और कदीम यात्राओं में शामिल है। इससे मुल्क की लाफानी रूहानी विरासत और अकीदे और भक्ति की जारी और सारी रिवायत की अक्कासी होती है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल दोनों रियासतों से शुरू हुई। उम्मीद है कि पूरे भारत से लाखों अकीदतमंद इस 57 रोज़ा यात्रा के दौरान श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगी, जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। यात्रा का पहला जत्था श्री अमरनाथ गुफा के लिए ननवान और बालतल के दोनों बुनियादी कैंपों से आज सुबह रवाना हुआ। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के साथ हजारों यात्रियों ने आज सुबह अपनी यात्रा शुरू की, जिसके दौरान ये लोग 3,880 मीटर ऊंची गुफा के लिए मुश्किल गुजार रास्तों से होकर जाएंगे। अनंतनाग जिले में ननवान पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता है और गांदरबल जिले में बालतल से 14 किलोमीटर का रास्ता है। दोनों ही रास्तों पर हुक्काम ने भरपूर सहूलियात मुहैया की हैं, जिनमें मेडिकल कैंप, कयाम की जगहें, लंगर, पीने के पानी और मौसम पर बरवक्त नजर रखने के इंतजाम शामिल हैं। हिफाजती इंतजाम भी भरपूर तरीके से किए गए ताकि यात्रा को महफूज बनाया जा सके। इसी दौरान यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। उम्मीद है कि यह आज बाद दोपहर वादी पहुंच जाएगा। श्रीनगर से अशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वज़ीर-ए-आज़म जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इस इमारत में सालाना 20 लाख मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। जनाब मोदी जोधपुर में नजरसानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इस स्कीम का मकसद हवाबाजी के शोबे की क़यादत में तरक्की के अगले मरहले को तेज़ करना है। ये प्रोजेक्ट जामे और पायदार फजाई रबते को यकीनी बनाने के लिए कई अहम इकदाम पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म राजस्थान के बलोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स पेट्रोकेमिकल, शहरी नकल व हमल, रेलवे, सड़कों, काबिले तजदीद तवानाई और बिजली की तरसील समेत कई शोबों से वाबस्ता है। बाद में शाम को वज़ीर आज़म गुजरात जाएंगे, जहां वो सनंद में बाहर से मंगाए गए CG सेमीकंडक्टर्स के कलपुर्जों की तरतीब और तजर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई 4 प्रोजेक्टों में शामिल हैं, जिस पर 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी पायदार, मजबूत और इख्तिरा पर मबनी तरक्की के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। पेरिस में भारत फ्रांस कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आलमी मईशत तेजी से बदल रही है, जिसकी अहम वजूहत तकनीकी तरक्की, सप्लाई चेन में तनवो, तवानाई की मुंतकली और जोग्राफियाई और सियासी तब्दीलियां हैं। वजीर खजाना ने फ्रांस के सनतकारों और सरमायाकारों को विकसित भारत 2047 के सफर में भारत का शराकत दार बनने के लिए मदु किया। उन्होंने मुश्तरका खुशहाली के हुसूल के लिए भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत और

जी समीन आप सुन रहे थे नातिया कवाली, पेश कर रहे थे मोहम्मद खान कवाल और साथी कलाम था दानिश अली गिरी का। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीरे में 206.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर 1:50 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन आपसे थोड़ी देर के बाद रिले होगा।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद को एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। उन्होंने भारत फ्रांस दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने के लिए कहा। मगरबी बंगाल में कानून साज असेंबली

जी दोस्तों, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्मी नगमे आप डीटीएस और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। समाप्त कीजिए फिल्म माई नेम इज हाँ से ये गीत श्रेया घोषाल और शंकर महादेवन की आवाजों में। उसकी तरतीब दी है शंकर महादेवन ने।

जी दोस्तों, आप समाप्त कर रहे थे चंद फिल्मी नगमे। दिन के अढ़ाई बज चुके हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम सहत 68.8 मीटर ते एफएम 3.5 मेगाहर्ट्ज़ सन पेट समीन वंश पेश छकर तरो फनकार अब्दुल गनी चौपान तो सी मनीष भूज कल मुबारक अहमद डार।

जय हिंद। फौजबाई फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेके मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सूफी फातिमा आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम का पहला नजराना आपकी नजर फिल्म साया से। ये खूबसूरत गीत के और श्रेया घोषल की आवाजों में, सईद कादरी के बोल और मलिक का संगीत।

जी दोस्तों, अगला नगमा हमने चुना है फिल्म पाठशाला से। ये खूबसूरत गीत सलीम मर्चेंट के संगीत में, सलीम मर्चेंट की आवाज ही में, बोल हनीफ शेख।

जी दोस्तों, समाप्त कीजिए फिल्म तुम ही तो हो से ये प्यारा सा गीत कुणाल गांजावाला और गायत्री की आवाजें रवि चोपड़ा के बोल आनंद मिलन का संगीत।

घर घर की आवाज ऑल इंडिया रेडियो की आवाज मीडिया 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर फिल्म संगीत के प्रोग्राम आप डीटीएस सर्विस और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपकी नजर फिल्म सावरिया से प्यारा सा गीत कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल की आवाजों में समीर के बोल मोंटी का संगीत।

नमस्ते लंदन, अब पेश है इस फिल्म से ये गीत राहत फतेह अली खान साहब और कृष्णा की आवाजों में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार हिमेश रेशमिया।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: जय बाबा बरसानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
2: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
1: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हों और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
2: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूडिंग पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
3: जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपका स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के प्रोग्राम में। आइए सुनते हैं उस्ताद राशिद खान की आवाज में ये गीत, फिल्म जब वी मेट से अर्शद कामिल के बोल प्रीतम का संगीत।

सुनत कीजिए फिल्म कच्चे धागे से प्यारा सा गीत सुखविंदर सिंह की आवाज में, अमन बख्शी के बोल, नुसरत फतेह अली खान साहब के संगीत में।

जी दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी नजराना आपके नजर फिल्म गुलामी मुस्तफा से ये गीत कविता कृष्णमूर्ति हरिहरन और साथियों की आवाजों में है।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सफर के 3:50 हो रहे हैं। अब यहाँ से उर्दू खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का बाजाबता आगाज। 6,000 से जायद यात्रियों ने अब तक पवित्र गुफा में किए शिवलिंगम के दर्शन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को मुल्क की रूहानी रवायत और सकाफती इतिहाद का लाफानी बाब दिया करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तलबा की शख्सियत को उभारने में उस्ताद के रोल को किया उजागर। और भारत और जापान ने की पाकिस्तान की सरहद पार दहशत पसंदी समेत हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। अब पेश है खबरों की तफसील। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज यात्रा के दोनों रास्तों पहलगाम और बालतल से बाजाबता तौर आगाज हो गया और आज पहले दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इंतजामिया और दीगर महकमों और एजेंसियों ने यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए हर तरह के इंतजाम मुकम्मल किए हैं और यात्री इन इंतजाम से काफी मुतमइन हैं। यात्रा के ताल्लुक से पेश है अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
2: नुनवन बेस कैंप से जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिदीन ने SSP अनंतनाग अमूद अशोक नागपुरी और पैरामिलिट्री के सीनियर अफसरान के हमरा यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि बालतल गांदरबल से भी यहां के जिला के तरक्याती कमिश्नर ने यात्रियों के पहले जत्थे को अगले पड़ाव की ओर रवाना किया। सुहाने मौसम के बीच बम बम बोले की गूंज में यात्रियों का कहना था ये उनकी जिंदगी का अनोखा सफर है। जिला इंतजामिया ने पहलगाम और बालतल के मुख्तलिफ पड़ावों पे यात्रियों के लिए जदीद सहूलियात दस्तियाब रखी है। तिबी सहूलियात में भी काफी बेहतरी लाई जा रही है, जबकि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम

0: रखे गए हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि इस बार मुख्तलिफ राज्यों से यात्रियों की बड़ी तादाद पवित्र गुफा में शिवलिंगम का दर्शन करने के लिए आएंगे। बालतल से साथी साबिर अयूब के साथ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए नुनवर बेस कैंप से मैं तसद्दुक रशीद।
1: दरियासना 3,865 यात्रियों पर मुश्तमिल दूसरा जत्था आज भगवती नगर यात्री निवास जम्मू से वादी पहुंच गया। इनमें से 1,735 यात्री बालतल जबकि 2,130 यात्री पहलगाम के रास्ते गुफा की तरफ रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज पर श्रद्धालुओं को मुबारकबाद दी है। श्रद्धालुओं के नाम एक खत में नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रवायत और सकाफती इतिहाद में एक लाफानी बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के मुबारक दर्शन लाखों अकीदतमंदों की जिंदगी में एक नाकाबिले फरामोश और नेक लम्हा होता है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भी सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर सभी श्रद्धालुओं को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और कदीम यात्राओं में से मैं शामिल है। इससे मुल्क की लाफानी रूहानी विरासत और अकीदे और भक्ति की जारी वसारी रिवायत की अक्कासी होती है। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। श्रद्धालुओं की सलामती और यात्रा के ऐसे इनकाद के लिए इस पर अमल करना लाजमी करार दिया गया है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तीफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाए। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। इस दौरान खेलकूद और उमूरी सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि सरकार सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का ऐसा इनकाद बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रही है। बालतल पहुंचने वाले यात्रियों के पहले काफिले का इस्तकबाल करते हुए उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने यात्रा के नूनवन कैंप का दौरा करके वहां श्रद्धालुओं के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम नीज दीगर सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा के रास्ते पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारों की ड्यूटी के तय लगन के लिए उनकी सराहना की। शुमाली रेलवेज ने बड़गाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान चलने वाली खसूसी विस्टाडोम रेल सर्विस में तौसी का ऐलान किया है। ये रेलगाड़ी अब 2 नवंबर 2026 तक एतवार के बगैर हफ्ते में 6 दिन चला करेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नजर ये रेलगाड़ी 31 अगस्त 2026 तक बानिहाल रेलवे स्टेशन पर मुख्तसर वक्त के लिए रुका करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि बाइख्तियार उस्ताद एक तालिब इल्म को पूरा एतमाद बना सकता है और मजबूत तालीमी इदारे खुशहाल समाज की तश्कील में अहम रोल अदा करते हैं। जुनू में मुनाक़िदा एक रोजा सलाहियत साजी के प्रोग्राम से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि तालीम का मकसद इरतिकाई अमल को फरोग देना है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाई तकाईची ने पाकिस्तान की सरहद पर दहशत पसंदी समेत हर किस्म की इंतहा पसंदी की जोरदार मजम्मत की है। भारत जापान सरबराह इजलास के बाद एक मुश्तरक बयान में दोनों लीडरों ने गुज़श्ता साल अप्रैल में पहलगाम हमले और नवंबर में दिल्ली हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इन हमलों के सभी कसूरवारों को कैफर किरदा तक पहुंचाया जाना चाहिए। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने एक खुशहाल भारत बहरे उलकाहल के लिए हम ख्याल ममालिक के माबैन इश्तराक मजबूत करने के आज़म का भी इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल राजस्थान का दौरा करेंगे जहां वो 480 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर हवाई अड्डे की तामीर की गई नई टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 1,00,000 करोड़ रुपए लागत वाले कई तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और दीगर कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर जिले की यकसां तरक्की के लिए पुरअज़म है। جنوبی کشمیر کے شوپیاں کے دورے کے دوران ضلع کے مجموعی ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلی نے 76 کروڑ روپے مالیت کے کئی پروجیکٹوں کو عوام کے نام وقف کیا۔ انہوں نے ضلع کے باغ

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडिया 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सफर के 4 बज चुके हैं। अपना श्रोता है आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

0: आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर तू अजदा पाड़ी प्रोग्राम के इनका में हाँ तुस्ती मेजबान गजाला मुमताज सामीन तुसा सारे को प्रोग्राम भी जी आया को आखती हर कदे आओ ते प्रोग्राम दी शान बदाओ सामीन अज जुमा मुबारक ते प्रोग्राम दी शुरुआत कर दें इस नात शरीफ नाल ते अस्ते नात खाएं अजगर अली कुरैशी
1: मोहम्मद दी जलवा नुमाई ना होंदी

जी सामीन, मास्टर करतार चंद दे गाए सैफुल मलूक नाल अज दे पाड़ी प्रोग्राम दा वेला भी मुक्ता ते दियो अपनी मेज़बान गजाला मुमताज़ दे नाले प्रोग्राम दी प्रोड्यूसर मारूफ उन्निसा को इजाज़त। अल्लाह बेली।

समय ना पहाड़ी प्रोग्राम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मिडवे 288 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय 4:20 हो रहे हैं। अब पहाड़ी खबरों का बुलेटिन नाश्र होगा।

0: आदाब, ए आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन है। 4:20 हो गए। पहाड़ी खबरनामा केन कैमे जावेद मुगल। सब थी पहला पेशन खास खास खबरां दियां सुर्खियां। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दा बाजाबता आगाज। 6,000 थी ज्यादा यात्रियों सुन उन्हें तोनी पवित्र गुफा बिच कीता शिवलिंगम दा दर्शन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन श्री अमरनाथ जी यात्रा को मुल्क दी रूहानी रवायत और सकाफती इतिहाद दा लाफानी बाब दिता करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन तलबा दी शख्सियात को उबारने बिच उस्ताद दे रोल को कीता उजागर। और भारत और जापान सुन कीती पाकिस्तान दी सरहद पार दहशत पसंदी समेत हर किस्म दी दहशतगर्दी दी मजम्मत। हुण पेश है इन्हां ते दुनिया खबरां दी तफसील। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दा अज यात्रा दे दुआं पहलगाम और बादल दे रावां थी बाज़ाबता आगाज हो गया। ते अज पहले ध्याड़े हजारां दी तादाद बिच शरधालुआं सुन पवित्र गुफा बिच शिवलिंगम दे दर्शन कीते। इंतजामिया और दुए महकमिया और एजेंसियां सुन यात्रा दे सोहणे इनकाद वास्ते हर तरह दे इंतजाम मुकम्मल कीते हैं। ते यात्री इंतजामां थी काफ़ी मुतमैन हैं। यात्रा दे हवाले थी पेश है अनंतनाग दे अस्ते नुमाइंदे दी ए रिपोर्ट।
1: नुनवन बेस कैंप से जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिदीन ने एसएसपी अनंतनाग अमूद अशोक नागपुरी और पैरामिलिट्री के सीनियर अफसरान के हमरा यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जबकि बालतल गांदरबल से भी यहां के जिला के तरक्याती कमिश्नर ने यात्रियों के पहले जत्थे को अगले पड़ाव की ओर रवाना किया। सुहाने मौसम के बीच बम बम बोले की गूंज में यात्रियों का कहना था ये उनकी जिंदगी का अनोखा सफर है। जिला इंतजामिया ने पहलगाम और बालतल के मुख्तलिफ पड़ावों पे यात्रियों के लिए जदीद सहूलियात दस्तियाब रखी है। तिबी सहूलियात में भी काफी बेहतरी लाई जा रही है, जबकि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम रखे गए हैं। उम्मीद यही

0: जा सकती है कि इस बार मुख्तलिफ राज्यों से यात्रियों की बड़ी तादाद पवित्र गुफा में शिवलिंगम का दर्शन करने के लिए आएंगे। बालतल से साथी साबिर अयूब के साथ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए नुनवर बेस कैंप से मैं तसद्दुक रशीद।
1: इसी सिलसिले बिच 3,865 यात्रियों का दुआ काफिला अज भगवती नगर यात्री निवास जम्मू थी वादी पहुंच गया। इन्हां बिच 1,735 यात्री बालतल ते 2,130 यात्री पहलगाम दे राह दी तरफ गुफा दी तरफ बिदे होए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन जम्मू कश्मीर बिच सालाना अमरनाथ यात्रा दे आगाज उते श्रद्धालुओं को मुबारकबाद दिती। श्रद्धालुओं के नाम एक चिट्ठी बिच नरेंद्र मोदी सुन श्री अमरनाथ यात्रा को मुल्क दी रूहानी रवायत और सकाफती एतिहाद बिच लाफानी बाब करार दिता। उन्हें सुन आखे जे बाबा बर्फानी दे मुबारक दर्शन लखां अकीदतमंदां दी जिंदगी बिच एक ना बिसरने वाला और नेक वेला आंदा है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन सुन भी सालाना अमरनाथ यात्रा दे आगाज उते सभा श्रद्धालुओं को मुबारकबाद दिती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट बिच उन्हें सुन आखिया जे अमरनाथ यात्रा भारत की सब थी ज्यादा काबिल एहतराम और पुरानी यात्रा बिच शामिल है। इस थी मुल्क दी लाफानी रूहानी विरासत और अकीदे दे भगती दी जारी रवायत दी अकासी होंदी है। इस दौरान खेड कूद और अमूर सार्फीन दे वजीर सतीश शर्मा सुन आखिया जे सरकार सालाना श्री अमरनाथ यात्रा दे सोने इनकाद वास्ते तमाम जरूरी कदम चेसी। बालतल पहुंचने वाले यात्रियों दे पहले काफले दा इस्तकबाल करदे होया उन्हें सुन इंतजामा दा जायजा कैदा ते मुख्तलिफ महकमें दे बचकार तालमेल उते जोर दिता। जम्मू व कश्मीर पुलिस दे सरबरा नलीन प्रभात सुन यात्रा दे नुनवन कैंप दा दौरा करके उते श्रद्धालुओं वास्ते कीते गए सिक्योरिटी इंतजामा दे अलावा दुई सहूलतां दा जायजा कैदा। उन्हें सुन यात्रा दे राह उते तैनात जम्मू व कश्मीर पुलिस ते दुई सिक्योरिटी एजेंसियां दे एहलकारां दी ड्यूटी दे हवाले थी उनकी तारीफ की। शुमाली रेलवे सुन बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा दे बचकार चलने वाली खसूसी वेस्ताडूम रेल सर्विस को बदेने दा ऐलान किया है। ये रेलगड्डी 2 नवंबर 2026 तोड़ी अतारा आले त्याड़े थी बगैर 6 त्याड़े चलसी। श्री अमरनाथ जी यात्रा दे पेश नज़र ये रेलगड्डी 31 अगस्त 2026 तोड़ी बानाल रेलवे स्टेशन उते थोड़े वेले वास्ते रुकसी। एक खबरां तुसी आकाशवाणी दे श्रीनगर स्टेशन ते सुन रहे हो। खबरां तुसी आकाशवाणी दी मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच उता भी सुन सकते हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आखे है जे बा इख्तियार उस्ताद एक तालब इलम को पुर एतमाद बढ़ा सकता है और मजबूत तालीमी इदारे खुशहाल समाज को बनाना बिच अहम रोल अदा कर दें। जम्मू बिच मनकता एक त्याड़ा सलाहित साजी दे प्रोग्राम थी खिताब करदे होया मनोज सिन्हा सुन आखे जे तालीम दा मकसद इरतकाई अमल को बढ़ावा देना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान दी उन्दी हम मनसब सनाई तकाईची सुन पाकिस्तान दी सरहद पार दहशत पसंदी समेत आर किस्म दी दहशतगर्दी दी मजम्मत कीती है। भारत जापान सरबरा इजलास दे बाद एक सांझे बयान बिच दुआ लीडर सुन गए साल अप्रैल बिच पहलगाम हमले और नवंबर बिच दिल्ली हमले दी सख्त मजम्मत करदे होया आखिया जे इन्हां हमलों दे सबा कसूरवारां को कैफरे करदार तोड़ी पहुंचाना जुलना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान दा दौरा करसन जिथे ओ 480 करोड़ रुपए की लागत थी जोधपुर हवाई अड्डे की तामीर कीते गई नवी टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह कर सन। वजीर आजम 1,00,000 करोड़ रुपए लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह कर सन ते दोए कई प्रोजेक्टों का बटा रख सन। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन आखिया जे उनकी हुकूमत जम्मू व कश्मीर के हर जिले की एक जी तरक्की वास्ते पुरअजम है। जनूबी कश्मीर के शुपियान के दौरे के दौरान जिले के मजमू तरक्याती मंजरनामे का जायजा किंदे होया वजीर आला सुन 76 करोड़ रुपए मालियत के कई प्रोजेक्टों को लोगों के नाम वकफ किया। उन्होंने सुन जिले के बाग मालकान और किसानों को दरपेश मसलों का भी जायजा कहदा। रुकने पार्लीमान मियां अल्ताफ अहमद सुन कुलगाम का दौरा करके उत जिला तरक्याती कोआर्डीनेशन और निगरानी कमेटी की मीटिंग की सदारत की। उन्हें सुन सारे सरकारी स्कीमों के बारे भी जानकारी

0: समीन, आप पंजाबी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं समीना शाह। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। समीन समाप्त करें आज का कोचिंग प्रोग्राम इस वक्फे के बाद।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।

0: हयात खान और साथियों की आवाज़ में तुमने कवाली सुनी। अगे हमारा कुल जिस रमनवाद उकियो थो कि एक हुसैनी मुशायर हुआ जिन शोरा हजरात ने इस में अपनो कलाम पेश कियो, उनको बिल तरतीब बिना इस रंग है सईद सिकंदर वफा, साबर जानी बिजरान, मोहम्मद रफीक जख्मी, अब्दुल मजीद हसरत, मोहम्मद इदरीस शाद, मोहम्मद मुनशा हाकी। इस मुशायरा की सदारत जड़ी है वह अब्दुल मजीद हसरत और ने की है। तो कुछ बड़ा प्यारा शेर इसमें निकल के आए हैं। एक तराना हुसैन है, दुनिया हुसैन की है जमानो हुसैन को, सच्चा दीन की डाई बण्यो, रहबर बण्यो, राई बण्यो, सब कुछ आप लुटा के अपनो, मेरा दीन की डाई बण्यो।
1: आज हम इतने एक मुशायरे को इनकाद कर रहे हैं और इस मुशायरा में जो शायर हजरात इसो ले रहे हैं उनका इसमें ग्रामी है मोहम्मद रफीक जख्मी, मुश्ताक खालिद, इकबाल नदीम, सराज सानी, फरीद अहमद परवास, चौधरी ताजदीन ताज, बंदो खाकसार मोहम्मद इदरीस शाद। सब तो पहला हूँ मोहम्मद रफीक जख्मी साहब ना अर्ज करूँ कि वे अपनी कलाम सुना में
2: नज़म का कुछ बन थारी खिदमत में अर्ज़ें।
1: इरशाद
2: अजब तमाशा डिठा तेरियां बारां मां,
1: वाह वाह
2: अजब तमाशा डिठा तेरियां बारां मां, फुलां की बस्ती है इन कंडियारां मां,
1: वाह वाह वाह वाह क्या बात।
2: शेरे की फेरित बरछी नाड़ का छंबर शूकेंगा,
1: वाह वाह
2: फेरित बरछी नाड़ का छंबर शूकेंगा, सोनी ठंडी वायत कठा फूकेगा, बुलबुल कुकू पौर भी आके कूकेगा, मेला लगेगा सुन मस्ती टारा मा, फुला की बस्ती है इन कंडियारा असें गावे खूब करें मनमानी इत, असें गावे खूब करें मनमानी इत, नस्ता पजता पहुंचे लोग सैलानी इत, नाज करे कश्मीर की मस्त जवानी इत, बुढ़ा नचे मस्ती देख कवारा मा, फुला की बस्ती है इन कंडियारा मा।
1: दोबारा पढ़िए जो बंद।
2: असें गावे खूब करें मनमानी इत, नस्ता पजता पहुंचे लोग सैलानी इत, नाज करे कश्मीर की मस्त जवानी इत, बुढ़ा नचे मस्ती देख कवारा मा, फुला की बस्ती है इन कंडियारा मा। ताज साहब पुछो दाछी गाम ते नागा बेरी ते,
1: वाह वाह
2: पुछो दाछी गाम ते नागा बेरी ते, हर एक नीला तला नीली टेरी ते, दुध का दरिया।

0: इश्क की मुशक लको ना सकूं,
1: वाह
0: तेरो एक बार हो क्या खालद, और किसे को ओ ना सकूं, नींद है
1: वाह
0: अखें सो ना सकूं, अख डबलावे रो ना सकूं।
2: वाह। ये था जनाब मुश्ताक खालिद। ते इन ते बाद हूँ अर्ज करूँ जनाब इकबाल नदीम साहब ना के वे अपनो कलाम सुना में। इकबाल नदीम साहब
0: या नज़्म है
2: इरशाद।
0: ना कोई रिश्तों ना कोई नातो, दिल की गल हूं के कह तो,
2: वाह वाह
0: केस रेठूं पानी चलतो, किसना दिसे हूं के कह तो,
2: वाह वाह वाह।
0: जियां लुकाई उआ खुदाई, मोटी गर्दन चंगो कसाई, जियां लुकाई उआ खुदाई, मोटी गर्दन चंगो कसाई, मुंह बड़ो ते गल भी मोटी, उसकी सुन गए हूं के कह तो,
2: वाह वाह।
0: थानेदार है उसको यार जिसका गो जामा में दियार,
2: वाह वाह वाह।
0: थानेदार है उसको यार जिसका गो जामा में दियार, मुछ मरोड़ गए ठीरना पाड़े, गरीब को मारो उनके कह तो,
2: वाह वाह।
0: लगे अदालत करे जलालत, उद जानो वह जहालत,
2: वाह।
0: लगे अदालत करे जलालत, उद जानो वह जहालत, घना फेरा सट्टा डेरा, तेनी मन्नी हूं के कह तो,
2: वाह वाह।
0: लाई वकील नी लमे दलील, उत भी गरीब है होयो जलील,
2: वाह।
0: लाई वकील नी लमे दलील, उत भी गरीब है होयो जलील, काला कोट को बड़ो गो जो पार नहीं सकतो हूं के कह तो,
2: वाह वाह।
0: छोड़ मकर करुण सखर, देख कित जानू आखर, छोड़ मकर करुण सखर, देख कित जानू आखर, दूजा वस्ते जख तो रियो तू आप है नंगो हूं के कह तो,
2: वाह।
0: कुछ तैड़ा नच तो रियो, राजी सब ना रख तो रियो,
2: वाह।
0: कुछ तैड़ा नच तो रियो, राजी सब ना रख तो रियो, असली साथी वो बिसरायो, आ जाए एकड़ो हूं के कह तो,
2: वाह।
0: लड़ाई झगड़ा छोड़ के चलियो, मुंह ना नदीम क्यों मोड़ के चलियो,
2: वाह वाह।
0: लड़ाई झगड़ा छोड़ के चलियो, मुंह नदीम क्यों मोड़ के चलियो, कान सुनी आंखें उगड़ी, जीब नी बोली हूं के कह तो, ना कोई रिश्तो ना कोई नातो, दिल की गल हूं के कह तो, केसर हेठू पानी चलतो, किसने दिसे हूं के कह तो, अरिश किसे नी देखो नी, फरिश ते सब नी देखो है, अरिश किसे नी देखो नी, फरिश ते सब नी देखो है, अरिश पर रहन आला गो नजारो, सब नी देखो है, मोहब्बत जिसका दिल माए, शफकत उस कुदरत की, मोहब्बत जिसका दिल माए, शफकत उस कुदरत की, कदे ठोकर वो खातो नी, करारो सब नी देखो है, करिया आजाद करी फरियाद, मोहम्मद ने उम्मत वस्ते, करिया आजाद करी फरियाद, मोहम्मद ने उम्मत वस्ते, बंडे रहमत सुबह व शाम उतारो, सब ने देखो है, मदीना की बधाई जे शान, मक्का की कराई पहचान, मदाई मदीना की बधाई जे शान, मक्का की कराई पहचान, सुने पुकार वो उम्मत की वो नजारो, सब ने देखो है, करो मोहब्बत उसकी शफकत, बुराया ते करो नफरत, करो मोहब्बत उसकी शफकत, बुराया ते करो नफरत, बुराया ते बचन गो वो किनारो, सब ने देखो है, यतीमांगो इत कम कोई नहीं है, मोहम्मद उन्ना गम कोई नहीं, यतीमांगो इत कम कोई नहीं है, मोहम्मद उन्ना गम कोई नहीं, बे बस नदीम गो वाली वे वो सहारो, सब ने देखो है, अरश किसे नहीं देखो नहीं, फरिश्त है सब नहीं देखो है, अरश पर रहन आड़ा गो नजारो, सब नहीं देखो है। एक गजल का थोड़ा एक दो शार, उड़ जा पतंगा कलिया माँ, लुतुफ चक लैन फुल खेलिया माँ, उड़ जा पतंगा कलिया माँ, लुतुफ चक लैन फुल खेलिया माँ, हूँ शोक के नाल जे मैस चारों, उस ढोक की डूंगी नलिया माँ, यू तत्तो पानी पेन हो तो हूँ लोड़ू दरिया की छलिया ना, यू तत्तो पानी पीन लियो तो हूं लोड़ू दरिया की छलिया ना, मड़ बुत बन गए ते शहर माए, मड़ बुत बन गए ते शहर माए, रू दौड़े अपनी गलिया मा, वे लोक मोहब्बती थैता नी, वे लोक मोहब्बती थैता नी, रे मिठास नी वा गुड़गी डलिया मा, लाऊ इल्जाम नदीम के किस्मत पर, लाऊ इल्जाम नदीम के किस्मत पर, लिखी रब निजात की कलिया मा, पतंगा कलिया मा, लुतुफ चक लेन फुल खिलिया मा।
2: ये था इकबाल नदीम साहब। मंशा खाकी साहब को एक शेर है, रुनो वक्त आखिर न रुनो, रुनो वक्त आखिर न रुनो, मथा की तारीर न रुनो,
1: वाह वाह।
2: आखिर गलते लानी पै गई, हूं उस पार्टी लीर न रुनो, ते हुण दावत सुखन दियो जनाब सराज सानी साहब।
3: एक नजम के थारी खिदमत में पेश,
2: इरशाद
3: उस तो पहला चंद कितात, सराज

0: बलता बलता सड़ बुझ गई है जिंदगी,
1: वाह
0: परवानो दे के आयो परवानो जिंदगी को।
1: वाह
2: वाह,
0: सिराज सड़ता बलता सड़ बुझ गई है जिंदगी, परवानो दे के आयो परवानो जिंदगी को। दिन
1: जिंदगी
0: चार जिंदगानी उम्रां का किला ठोके, दीवानो हो गयो है दीवानो जिंदगी को।
1: वाह
2: वाह, बहुत खूब
0: अगलो
2: बहुत
0: की तो अर्ज है कि मेरा अल्लाह ने बख्शी है मिना सब्र की एक दौलत, नी मेरा मुकद्दर माँ जे तेरो दीद कोई गल नहीं।
1: वाह
0: कड़ी देखे करे सजदा मिना ईश्वर नहीं पाचा तो, कड़ी
1: कड़ी
0: देखे
1: देखे
0: करे
1: करे
0: सजदा
1: सजदा
0: मिना
1: मिना
0: ईश्वर नहीं पाचा तो, सिराज उमरां को रोजेदार है थारी ईद कोई गल
1: वाह
0: नहीं।
1: वाह
2: वाह
1: वाह,
2: वाह बहुत
1: बहुत
2: खूब
1: खूब
2: बहुत
1: बहुत
2: खूब।
0: ते दे छुड़ सिराज की गुमी वी दौलत, दे छुड़ सिराज की गुमी वी
1: दौलत
0: दौलत, तेरे कोले खुदाया दूर कख नहीं। हूँ एक मफलूज हिस्सों बदन गो, मिना एहसास है पर शऊर कख नहीं।
1: वाह
2: वाह,
1: बहुत
2: बहुत
1: खूब।
0: ते मेरो मसलक जुदा है थारे तू, सिराज जिंदगी है गम दिलासो नहीं। सिणो हसनो पोए किसी का हसन, पर अपनो आसो भी अपनो आसो नहीं।
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: वाह,
2: वाह
1: बहुत
2: बहुत खूब।
1: खूब।
0: अगलो की तो अर्ज है कि सिराज असल होयो जे वो ना आयो, तड़फनो चंगो है हिजर झरनो थो, खुदा न खास्ता वो मिल जातो फिर दे खुशी में कूद के मरनो थो।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह वाह,
2: बहुत खूब।
0: ते आखिरी की तो अर्ज है उस तो बाद नज़म के सिर लरज जय सिराज हर एक मोतबर हिस्सास दिल,
1: वाह,
0: लरज
1: लर
0: जय
1: जय
0: सिराज
1: सिराज।
0: हर एक मोतबर हिस्सास दिल, कितनी इबरतनाक खलकत है ये हमारा देश माँ, कौन जाने कितना इत मोहम्मद बख्श में खुसरू में।
1: वाह वाह वाह
0: कौन
1: वाह,
0: जाने
1: जाने कितना इतना
0: कितना इत
1: मोहम्मद
0: मोहम्मद बख्श में
1: बख्शोए
0: खुसरू में,
1: सोए।
0: कितना असर फिरता वेंगा इत गदा का पेश में।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह, बहुत
0: बहुत
1: खूब
0: खूब।
1: बहुत खूब।
0: ते नज़म आर से नज़म गुनाए रंगीली दुनिया, ते के साइंसदान नारंगी है, कोई नजरियो कै बटंगी है, कदे मंदी है या चंगी है या दुनिया रंग बरंगी है।
1: वाह
0: वाह वाह,
1: वाह,
0: बहुत खूब।
1: बहुत
0: कोई
1: खूब।
0: मुल्की कोई फरंगी है या दुनिया रंग
1: रंग
0: बरंगी
1: बिरंगी
0: है,
1: है।
0: किदे चफड़ी खुली गैली है, किदे सुथरी साफ ते मैली है, किसे की संगण सहेली है, जे सच पूछे ता पहेली है, पैड़ी है नैसे चंगी है या दुनिया रंग बरंगी
1: रंगी
0: है।
1: है।
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह, बहुत खूब।
0: किदे जंड किदे एक लखती है, किदे ऐश किदे बदबख्ती है, फराख दिली किदे सख्ती है, किदे नर्म नाजक किदे पुख्ती है, खोली कई बार चिरंगी है या दुनिया रंग बरंगी
1: वाह
0: है।
1: वाह
0: बहुत खूब बहुत
1: वाह वाह,
0: खूब।
1: बहुत खूब।
0: किदे लोटी चोरी काफी है, इत अदल ते ना इंसाफी है, किदे जुर्म सजा किदे माफी है, समझोतो है इख्तलाफी है, किदे पकड़ गलाटी छंगी है या दुनिया रंग
1: रंग
0: बरंगी
1: रंगी है।
0: है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: अगलो बंदर्स है, या धरती नीली पीली है, या बाड़ी रंग रंगीली है, मिठी कोड़ी मरचेली है, हाय अजकल बेवसीली है, लख वार या लाई ते टंगी है या दुनिया रंग
1: रंग
0: बरंगी
1: रंगी
0: है।
1: है।
0: बहुत
1: वाह
0: खूब
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: खूब।
1: वाह,
0: हम दर्द कौमी लजपाल बसें, गनी कुछ खस्ता हाल बसें, कुछ गिरगट की मिसाल बसें, हीरा मोती जौहर लाल बसें, किदे असद बुगज ने डंगी है या दुनिया रंग
1: रंग
0: बरंगी।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह, बहुत
0: हिंदू मुस्लिम
1: खूब।
0: सिख ईसाई ये ऐद कदीम तू चारे भाई ये, सब अगली मेहर मुकाई ये, अज छेड़ी नवी लड़ाई ये, मुल्क की इज्जत नंगी है या दुनिया रंग
1: दुनिया रंग
0: बरंगी।
1: बरंगी
0: वाह
1: है। वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह,
0: क्या
1: बहुत
0: बात
1: खूब,
0: है।
1: बहुत खूब।
0: कुछ आबिद जायद कुछ जाहिल, हुनरमंद कासब कुछ काहिल, किदे छन छन छनके पायल, इत किस्म किस्म का स्टाइल, लख दुश्मन ते लख संगी है या दुनिया रंग
1: रंग
0: बरंगी
1: बरंगी
0: है।
1: है।
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह, क्या
0: वाह,
1: बात है।
0: त कुछ दिलों जबानों एक होवें, कुछ दुख दर्दांगी टेक होवें, कुछ हिजर फराक को सेक होवें, कुछ हर फन मौला नेक होवें, कई वार या निछी खंगी है या
1: वाह
0: दुनिया
1: वाह,
0: रंग
1: रंग
0: बरंगी
1: बरंगी।
0: है।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह,
1: फिर
0: वाह,
1: पढ़
0: वाह।
1: खूब, फिर पढ़ियो।
0: कुछ दिलों जबानों एक होवें,
1: वाह,
0: कुछ दुख दर्दां की टेक होवें, कुछ हिजर फराक को सेक होवें, कुछ हर फन मौला नेक होवें, कई वार या निछी खंगी है या दुनिया रंग
1: रंग रंग
0: बरंगी है।
1: बरंगी है।
0: बहुत
1: वाह
0: खूब।
1: वाह, बहुत
0: अगलो बंद अर्ज है कि
1: खूब।
0: कुछ साड़े ते कुछ सड़ता रे, कुछ चौके ते कुछ कड़ता रे,
1: वाह वाह वाह वाह
0: कुछ
1: वाह वाह,
0: उठे चावे कुछ झड़ता रे, कुछ बिल्ले ते कुछ छड़ता रे,
1: वाह,
0: हाय लख अदवार तू लंगी है या
1: या
0: दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग रंग
0: बरंगी।
1: बरंगी।
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह वाह,
1: बहुत खूब।
0: त कुछ मोमन कुछ काफर बसें, कुछ ओछा कुछ साबर बसें, कुछ लिसा कुछ जाबर बसें, निका ते इकाबर बसें, कोई नक्शबंद है कोई भंगी है या दुनिया रंग
1: रंग
0: बरंगी
1: बरंगी
0: है।
1: है।
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह,
1: बहुत खूब।
0: इत कई किस्म का आतम में, किदे जश्न ते किदे मातम में,
1: वाह वाह,
0: बानी मोजद ते खातम में, जेड़ा गया ते उनकी जाता में, हुन थारे हथ।

0: तरंगी है या दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग बिरंगी
0: बरंगी
1: है।
0: है।
1: वाह वाह।
0: किधे रोता देख के नसेगी, किधे हंसतांगे संग हसेगी, कुछ बख्शेगी कुछ खसेगी, बस अपने पैरों फसेगी, किधे सुरमो गेणो कंगी है या दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग
0: बरंगी
1: बिरंगी
0: है।
1: है। वाह।
0: ते कुछ नेक ते कुछ बदमाश बसें, इत जाहिल ते कदर शनास बसें, कुछ मुर्दा ते जिंदी लाश बसें, हलीम ते कुछ अयास बसें, किदे ऐश मजा किदे तंगी है या दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग
0: बरंगी
1: बिरंगी
0: है।
1: है। वाह।
0: चेला चमचा दे अमीर होवें, सोफी आगा फकीर होवें, कुछ उत्तम कुछ हकीर होवें, कहीं खुदा कहीं असीर होवें, कहीं तरंग इत दरंगी है या दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग बिरंगी
0: बरंगी
1: है।
0: है।
1: वाह वाह।
0: कई वार या छप्पी लुकी है, कई वार या डाली टुकी है, कई वार या हारी झुकी है, कई वार बिसाख में सुकी है, कई
1: दुनिया
0: वार या तजी मंगी है या दुनिया रंग
1: रंग
0: बिरंगी
1: बिरंगी है।
0: है।
1: वाह वाह।
0: गाफल दे शब बेदार बसें, कुछ मेहनती कुछ बेकार बसें, कई शरद कई बहार बसें, कई मरम कई तलवार बसें, पक्की गिरगिट सद टंगी है या
1: या
0: दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग बिरंगी
0: बिरंगी
1: है।
0: है।
1: वाह बहुत खूब बहुत
0: ते
1: खूब।
0: आपे कैदी आजाद करे, आपे चाड़े बर्बाद करे, किदे पक्की बुनियाद करे, किदे आड़ा ते फरियाद करे, किदे ताबिया किदे लफंगी है या
1: या
0: दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग
0: बिरंगी
1: बिरंगी
0: है।
1: है।
0: जद
1: वाह
0: वाए
1: वाह।
0: जवाज सुनावेगा, गल जोरें असल छुपावेगा, अमल मेरे बराबर चावेगा, मोटो गल दाढ़ी लड़कावेगा, सुथन गीटां पर टंगी है या
1: या
0: दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग बिरंगी।
0: बिरंगी
1: वाह
0: है।
1: वाह वाह।
0: आला अदना अखीर बसें, सोफी मुरीद दे पीर बसें, कई रांझा दे कई हीर बसें, इत आतश आब ते शीर बसें, किदे अमन फसाद ते जंगी है या दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग
0: बिरंगी
1: बिरंगी
0: है।
1: है।
0: अगलो बंदर जा के किदे ढोल नकारा बजता रहे, किदे शेर का ताड़ा गजता रहे, किदे बजम नयारा सजता रहे, किदे भुखा पाना रजता रहे, किदे शाख एहसास की अंगी है या दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग बिरंगी।
0: बिरंगी है।
1: वाह।
0: इत फितना ते फसाद उठें, इत नवा नवा नुकाद उठें, कुछ मसला बेबुनियाद उठें, लूला लंगड़ा फरहाद उठें, कार कार मा खाना जंगी है या दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग बिरंगी
0: बिरंगी
1: है।
0: है।
1: वाह वाह वाह।
0: कुछ मरता रहे कुछ दबता रहे, कुछ बढ़ता रहे कुछ चबता रहे, कुछ जमे गुमे कुछ लबता रहे, कुछ सूरज तके शबता रहे, कई वार नठी ते अड़ंगी है
1: या
0: या
1: दुनिया
0: दुनिया
1: रंग
0: रंग बिरंगी
1: बिरंगी है।
0: है।
1: वाह वाह।
0: पसवालित कच्चा पक्का है, कुछ रिश्ता मसबत सक्का है, इत किस्म किस्म का कड़क्का है, कुछ बेसबात का टक्का है, लजपाल किदे या तांगी है या दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग
0: बिरंगी
1: बिरंगी है।
0: है।
1: वाह वाह।
0: ते किदे ऊंचा ऊंचा पहाड़ दिसें, किदे डूंगा नड़ा दे नार दिसें, किदे सारा मैदान ते कार दिसें, किदे नीली सिल ते तार दिसें, सीधी मोतबर या कांगी है या दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग
0: बिरंगी
1: बिरंगी है।
0: है।
1: वाह वाह।
0: ते शाद साहब गौर फरमाई
1: इरशाद।
0: के तन अकल ते सोच गहराई गए, तन मौला तेरी खुदाई गए।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तन अकल ते होश गहराई गए, तन मौला तेरी खुदाई गए, हर जा हर लम्हा रसाई गए, मरहबा जहन दानाई गए, कुदरत ने रंगू रंगी है या
1: या
0: दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग बिरंगी
0: बरंगी
1: है।
0: है। ते आखिरी बंद शेर है थारी खिदमत, आखिरी बंद अर्ज कि
1: इरशाद
0: यो
1: आपने
0: गजल
1: कहा।
0: सिराज एक खोखो है, यो गजल सिराज एक खोखो है, दुनिया रंगीन जो तोखो है, रल मिल गए बसनो ओखो है, हर लहजा तर्ज अनोखो है, जिस पासे मुड़ चो संगी है या
1: या
0: दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग बिरंगी
0: बरंगी
1: है।
0: है, के साइंसदान नारंगी है, कोई नजरियो के बटंगी है, कदे मंदी है या चंगी है या
1: या
0: दुनिया
1: दुनिया
0: रंग
1: रंग
0: बरंगी है।
1: बिरंगी है।
0: शुक्रिया।
1: बहुत खूब। ये था जनाब सराजुद्दीन सानी साहब, अजीम साहब को शेर एक है। वे रेत की टेरी थी, तीलां का बंगला था। वे रेत की टेरी थी,
0: तीलां का
1: तीलां का
0: बंगला
1: बंगला
0: था।
1: था, तें ठीक कियो पुल के सब नकश मिटा छुड़िया।
0: वाह।
1: इस ते कि ऊँ असर साहब को एक शेर पेश करूँ तो उसके बाद दूजा शायर न बुला रही हूँ। असर साहब को शेर है कि रत का आथरू सोज जिगर को, दिल का दाग कनेरा।
0: रथ का
1: रत
0: अथरू
1: का आथरू सोज
0: सोज
1: जिगर
0: जिगर
1: को,
0: को
1: दिल का दाग कनेरा।
0: मेरा बहुत।
1: इतना दिया बाल के रखूं आउं रंजन मेरा।
0: वाह
1: तारा
0: वाह वाह।
1: तुखें चन कुमायो डाली ते फुल सहकें। तारा तुखें चन कुमायो डाली ते फुल सहकें। बोल रे पंछी इन मालांगा किंगा गया सवेरा। ते
0: वाह।
1: ओनू दावत सुखन दियूं जनाब फरीद अहमद परवाज साहब ना। जनाब फरीद अहमद परवाज साहब।
2: एक गजल आ रही है।
0: इरशाद
1: इरशाद
0: इरशाद।
1: रनम नाल।
2: खुजा वीत गे सवाद नी बहार
1: वाह
2: मा,
1: वाह वाह वाह।

0: वाह
1: दिल ही गयो ऐ भुज वजूद नी करार मां, दिल ही गयो ऐ भुज वजूद नी करार मां, साजिश एक में देख ली तेरे की नजर की रज,
0: वाह

0: एक दिल का पारा पारा
1: पारा
0: देख,
1: देख
0: उजड़ गया फिर मुड़ न बसया,
1: उजड़
0: उजड़ गया
1: गया
0: फिर
1: फिर
0: मुड़
1: मुड़
0: न
1: न
0: बसया,
1: बसया।
0: आस मेरी का टारा देख, उजड़ गया फिर मुड़ न बसया, आस मेरी का टारा
1: तारा
0: देख।
1: देख
0: तो शेर आज गयो कि मैरम यार न संगी कोए,
1: मेरम यार न संगी कोए।
0: मैरम यार न संगी कोए, बैरी अपना सारा
1: वाह
0: देख।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: बहुत खूब,
0: वाह।
1: वाह
0: तो
1: वाह,
0: शेर अर्ज कियो ताज साहब के, लगा आए तकदीर के हथूं,
1: लगा
0: लगा आए
1: आए
0: तकदीर
1: तकदीर
0: के
1: क्या
0: हथूं,
1: तू।
0: कितना दूर उलारा देख।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह। तो शेर अर्ज है कि रात दिहाड़ी दिल ना चीरें, रात
1: रात
0: दिहाड़ी
1: दिहाड़ी
0: दिल
1: दिल
0: ना
1: ना
0: चीरें,
1: चीरें
0: यादा का आए आरा देख।
1: देख।
0: तो शेर है कि कूंज विछड़ के अपने डारू, कूंज
1: कौन
0: विछड़
1: विछड़
0: के
1: के अपने
0: अपने
1: डारू
0: डारू, मिलनी कद दोबारा
1: दोबारा
0: देख।
1: देख।
0: तो
1: वाह
0: शेर है
1: बहुत खूब,
0: कि मौत ते बद जुदाई जालम, शेर
1: मौत
0: के
1: ते बाद
0: मौत ते बद जुदाई जालम,
1: जालम
0: फिर मिलन का चारा देख।
1: चारा देख।
0: वाह। नजर
1: वाह
0: मिली नजारा
1: नजारा देख
0: देख, दिल का पारा पारा
1: पारा
0: देख। तो
1: देख।
0: एक गजल का चांद शेरें के,
1: इरशाद इरशाद
0: कद आवे को यार न कहिए,
1: कद आवे वो
0: आवे
1: यार
0: को
1: न यार
0: यार न
1: न
0: कद
1: कहिए।
0: आवे को यार न कहिए, बेलो आ गम ख्वार न कहिए,
1: वाह
0: तो
1: वाह
0: गमा ने है जिंदड़ी केरी,
1: गम्मा
0: गमा
1: ने
0: ने
1: है
0: है जिंदड़ी
1: जिंदगी
0: केरी,
1: केरी
0: गमा ने है जिंदड़ी केरी, मेरा उस गम ख्वार न कहिए।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: बहुत
0: वाह।
1: खूब बहुत
0: तो
1: खूब।
0: शेर है कि तक तक रास्ता नैन मुकाया,
1: तक तक रास्ता नैन
0: तक
1: मुकाया।
0: तक रास्ता नैन मुकाया, लम्मी इंतजार न कहिए,
1: वाह
0: ते छोड़ दे रोसो हूं बे दोसो।
1: हाँ
0: खालिद
1: छोड़
0: साहब,
1: दे छोड़ दे
0: छोड़ दे
1: रोसो हूँ बे
0: रोसो
1: दोसो
0: हूं
1: हूँ बे
0: बे
1: दोसो
0: दोसो, रुठी भी सरकार न
1: करना। वाह
0: कहिए।
1: वाह
0: वाह
1: बहुत
0: वाह।
1: बहुत
0: ते
1: खूब
0: शेर है
1: मुकर्रर
0: कि
1: मुकर्रर मुकर्रर जनाब
0: छोड़ दे रोसो हूं बे दोसो, रुठी भी सरकार
1: सरकार
0: न
1: न कहिए।
0: कहिए।
1: बहुत खूब
0: तो शेर है कि चौंस गया फुल आस मेरी का,
1: आए
0: चौंस गया
1: चौंस
0: फुल
1: फुल
0: आस
1: आस
0: मेरी
1: मेरी
0: का,
1: का
0: वसलां की बदलार न
1: कहिए।
0: कहिए।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: बहुत खूब
0: तो
1: बहुत
0: मक
1: खूब।
0: तो अर्ज कियो कि ऐसो खुशियां की फुल खेली,
1: ऐसो
0: ऐसो
1: खुशियाँ
0: खुशियां की फुल खेली, लेती आवे बार न कहिए।
1: वाह
0: वाह
1: बहुत
0: वाह।
1: खूब
0: कद
1: वाह
0: आवे गो यार
1: यार
0: न
1: न
0: कहिए,
1: कहिए
0: बैलो आ दिलदार
1: यार
0: न
1: न कहिए।
0: कहिए।
1: वाह बहुत खूब
0: ओन इस
1: बहुत
0: मुशायरा का आखिरी शायर, जिड़ा किसी तहरुफ का मुताज नहीं, जनाब चौधरी ताजदीन ताज साहब ने अर्ज करूँ कि वे अपना कलाम सुनावें। चौधरी ताजदीन ताज साहब, पेश है पहला एक गजल
1: इरशाद
0: इरशाद।
1: इरशाद।
0: आ तू दुनिया सारी ले जा, इश्क की एक बीमारी दे जा।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह।
1: है।
0: शेर है कि चंद तो उफरा उडारी दे जा, कौम ना हिम्मत सारी दे जा,
1: वाह वाह वाह वाह
0: नोई एजाद की लारी लाता, तकड़ी एक सरदारी दे जा,
1: वाह वाह वाह
0: तीर वफा को लाण की खातर, नजर एक तेज शिकारी दे जा,
1: वाह वाह वाह
0: ताज महल के बदले मिन्ना, टूटी याद की टारी दे
1: वाह
0: जा।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात
1: फिर बढ़िया।
0: है। ताज महल के बदले मिन्ना, टूटी याद की टारी दे जा।
1: वाह
0: तो इसके बाद एक हजल है,
1: अच्छा
0: सोच के गुत्थे बड़ो खुमार, मोटो नक है खुंडी तलवार,
1: वाह वाह
0: दुनिया का कन सुखड़ सुखड़, अरारू पार है एक पटकार, पूरी
1: वाह
0: हकीम की निक्की निक्की, गिदड़ न कुकड़ को बुखार,
1: वाह
0: हट्टी हट्टी चुरलू चलू, कन्ना ऊपर जातक सवार,
1: वाह वाह वाह
0: हट्टी
1: मुकर्रर जनाब।
0: हट्टी चुरलू चलू, कन्ना ऊपर जातक सवार,
1: वाह
0: बाप न बुड्ढो कहता सुनियो,
1: वाह
0: बाप न
1: वाह
0: बुड्ढो कहता सुनियो, तकड़ो सोचा को म्यार,
1: वाह वाह
0: चंडो चंडी अज वफा की, चंडो
1: वाह
0: चंडी आज वफा की, आशिक कहिए या लोहार,
1: वाह वाह वाह वाह
0: नंग मनुंगा जातक नचे, कुदै गुरबत सिर के पार।
1: वाह
0: तो
1: वाह वाह
0: इसके बाद एक नज्म है,
1: इरशाद इरशाद।
0: कूद खलाड़ा है, नज्म को
1: वाह
0: नाम है
1: वाह
0: कूद
1: कूद
0: खलाड़ा है।
1: खलाड़ा।
0: चल फिर कूद जा बीच खलाड़ा है, जित मंगी ना बिलू आड़ है,
1: वाह
0: जी
1: वाह
0: फिर
1: बहुत खूब
0: खरी
1: बहुत
0: ना
1: खूब।
0: खोटी दस है, फिर खरी ना खोटी दस कै, जज्बो देता कुर्ती पाड़ है,
1: वाह
0: आ
1: वाह वाह
0: कुर्सी के चढ़ कनाड़ा है, इस कुर्सी ना कद को ताड़ है,
1: वाह वाह
0: उसको धरती पैर नहीं लगतो, जेड़ो इस पर आंख उगाड़ा है, अलिया जम के आज फिर लड़िए, अगली पिछली सारी पढ़िए,
1: वाह
0: मरनो
1: वाह
0: हुई है आज
1: वाह
0: ना मरिए,
1: वाह वाह
0: जीत
1: वाह
0: के
1: वाह
0: आइए कुर्सी चढ़िए,
1: वाह वाह
0: कालो अंगो ऊपर मढ़िए, फिर ऐवान के अंदर बढ़िए,
1: वाह
0: सिंग अड़ा के एक दूजा पर, कूड़ा का दमूसा जड़िए,
1: वाह
0: तेरो दादो वह थो जंगी, जिसने
1: वाह
0: कोर्ट कचहरी डंगी, चल फिर
1: वाह
0: कूद जा बीच खलाड़ा है, जित मंगी ना बिल्लू हाड़ा है,
1: वाह
0: अलिया जम के आज फिर लड़िए, अगली पिछली सारी पड़ी।
1: वाह
0: शुक्रिया
1: वाह
0: जी।
1: बहुत बहुत।
0: दिल है मंदिर मसीता की बस्ती, दिल है मंदिर
1: मंदिर मसीता
0: मसीता
1: की
0: की बस्ती,
1: बस्ती
0: ये सच्चियां ते सुचियां रीतां की
1: की बस्ती।
0: बस्ती।
1: बेशक
0: दिल
1: बेशक बेशक
0: है मंदिर मसीता की बस्ती, ये
1: बहुत खूब
0: सच्चियां ते
1: बहुत खूब।
0: सुचियां रीतां की बस्ती,
1: बस्ती
0: कदे टूट गयो ते फिर मुड़ नी जुड़ से,
1: आए
0: कदे टूट
1: कदे
0: गयो ते
1: होते फिर
0: फिर मुड़
1: मुड़
0: नी
1: नहीं
0: जुड़
1: जुड़
0: से,
1: से।
0: यो नाजुक जई एक शीशा की बस्ती।

0: वाह वाह
1: ये
0: वाह,
1: था जनाब चौधरी ताजुद्दीन ताज साहब। तो इसी के नाल आज को मुशायरों अपना एक नाम ना पहुँचा है, तो इस मुशायरा में जो शायर हजरात इसको ले रहे हैं उनका नाम फिर थारे सामने अर्ज कर छूँ। जनाब मोहम्मद रफीक जख्मी, जनाब मुश्ताक खालिद, इकबाल नदीम, सिराजुद्दीन सानी, फरीद अहमद परवाज, चौधरी ताजुद्दीन ताज, तो बंदो खाकसार मोहम्मद इदरीस शाद।
2: सामिन मोहतरम हुसैनी मुशायरों तमने सुनियो, करबला के जान सारों को सलाम। अगे हमारा कुल जिन थर ने हमने गलबात की थी शुरू में कि एक टॉक रिकॉर्ड की है हमने आर्काइव्स दिखाई है, एजाजुल हक नक्शबंदी साहब और टॉक पेश करेंगा। यह गलबात इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अनु के बारे, तो अब यह गलबात सुन लिया।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मारे तक दीन इस्लाम का जिड़ा वास्ता है, जिड़ा जरिया है, वे अल्लाह उसका रसूल के बाद अस्हाब रसूल ते अहले बैत रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको उम्मत पर बहुत बड़ो एहसान है और हर ईमान आला का दिलम इनकी मोहब्बत होनी चाहिए, बल्कि अहले बैत अस्हाब रसूल उम्मत का सलाफ अकाबरों की मोहब्बत ईमान को जुज है, ईमान को हिस्सों है, इनकी मोहब्बत तो बग़ैर ईमान नामुकम्मल है। सामीन, इसी सिलसिला में आज हम एक अजीम शान हस्ती के मुतल्लिक गुफ्तगू करन जा रहे हैं, जिड़ा अल्लाह पाक ने बेशुमार फजीलत ते नवाजे हैं, बल्कि जिड़ा अपनी फजीलत माँ अपनी मिसाल आप हैं, जिन्ना तमाम दुनिया के इंसाना माँ एक जुदागाना फजीलत हासिल है, यानि हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। सामीन, इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु त्रै हिजरी रमज़ान मुबारक में पैदा हुआ, ते आपकी पैदाइश तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह अन्हा का घर तशरीफ़ ले जाएँ और फरमावे मीना दसो मेरो बच्चो दसो, यानी नस्बत नबी पाक अपनी ओर करें लगा, मीना मेरो बच्चो दसो और दसो तुमने इसको ना के रखे हुए। अर्ज़ की हो जाए, या रसूलुल्लाह हमने जी इसको ना हर्ब तरे हो, हर्ब को मानो दलेर लड़ाई करूँ वालो। नबी पाक ने फरमाया ना, इसको ना हसन है। और यही तारीख है कि जिस वक़्त इनका दूजा पाई हज़रत हुसैन पैदा हुए, उनके मुतल्लिक भी आपने फरमाया के ना तरे बची, अर्ज़ करूँ लगे जी या रसूलुल्लाह इनको ना हर्ब है। नबी पाक ने फरमाया ना, इसको ना हुसैन है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा ये ना जड़ा है ये अल्लाह पाक ने छुपा के रखा हुआ था, सबसे पहला मेरा बच्चा ना यो ना दे दो, यानि सामीन नाम भी ऐसा थाया जिला पूरी रूए ज़मीन में उससे पहले किसी ने नहीं मिलिया था। ना ही अगर तुम गौर करें तो एक पूरी तारीख है। इसके बाद हसब दस्तूर जिस वक्त बच्चों पैदा हुआ है तो उसकी सजा कन में बांग दी जाए और खबा कन में तकबीर अकामत पढ़ी जाए, ताकि उसका दिलो दिमाग में खुदा की तौहीद ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नक्शो जम जाए। इसे सुन्नत पर अमल करता किसे बच्चा का कन माँ आलिम बांग दे, किसे का माँ इमाम साहब बांग दे, किसे का माँ कोई हाजी साहब बांग पड़े, किसे बच्चा का कन माँ कोई बुज़ुर्ग बांग पड़े, किसे बच्चा का कन माँ ग्रां को मोहल्ला को कोई नेक आदमी बांग पड़े। लेकिन हम कुर्बान जहाँ हज़रत हसन की फजीलत पर कि जिनका कन माँ आवाज़ खुदा की दियों वाला जुड़ा था वे मोहम्मद मुस्तफ़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वसल्लम, यानी आ हज़रत ने इनका सजा कन माजान दी थी ते खबा कन माँ कामत पड़ी। इसी वजह ते हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जुड़ी फजीलत है वह एक जुदा गाना नौयत की मालिक है। और हुलिया में भी जब देखा रावी के जो इमाम हसन सिर ते लेकर नाफ तक जुड़ा था नबी पाक का मुशाबे था और नाफ ते लेकर पैरों तक हज़रत अली का मुशाबे था, और हज़रत हुसैन सिर ते लेकर नाफ तक हज़रत अली का मुशाबे था और नाफ ते लेकर पैरों तक नबी पाक का मुशाबे था। और एक मरतबा जिस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इमाम हसन एरिया ते कसम खा दी कि वल्लाही तम बिल्कुल अपना नाना की शक्ल का है, उसके मुशाबे यानी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु। और उनकी अजमत को के क्यों जाए सामीन कि एक मरतबा नबी पाक नमाज पढ़ने लगा और नमाज के दौरान सजदा की हालत सजदा में कि हज़रत हसन खेड़ता हुआ आया और आपकी कण मुबारक पर सवार हो गया। तब हैरान होएगा नाजरीन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदो तवील कर लियो, लंबो कर लियो,
0: حتیٰ کہ بعض لکھوں والا یوں بھی لکھیں کہ صحابہ کرام وہ جڑا تھا

वे उठया ताकि इस बच्चा ना नबी अलैहिस्सलाम की कण मुबारक से लावा। हजूर ने सजदा में इशारों किया, चूँकि नफली नमाज थी, सजदा में इशारों किया कि इसना न बोलो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील सजदे किया तां तक जब तक इमाम हसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कण मुबारक से नहीं लथा। और नमाज से फारग होता ही हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमायो, यो मेरो बच्चो आयो थो, मैं इसी वजह ते तवील सजदों की हो। हत्ता कि एक मरतबा नबी पाक जुम्मा को खुतबो दें और सामीन तम सारा जाने कि जुम्मा को खुतबो वाजिब हो है। खुतबा माँ दरवाज़ा पर बाज़ रिवायत में हज़रत हसन आ गया, बाज़ रिवायत में दो हसनैन आ गया। ते आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक न सिर्फ की खुतबो रोक्यो बल्कि सामीन ने भी मुतवज्जो नहीं दी थी, सामीन ने भी खताब नहीं कियो। या नबी पाक यूं फरमा लेता जरा वे पिछले तरफ ते बैठा हुआ है, इन दो बच्चा ना ले आओ। ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबो बंद कियो और ख़ुद मिंबर ते तड़े तशरीफ ले आया और ख़ुद मजमा में रस्तो बढ़ा के दो हसनैन या हज़रत हसन कड़ी रिवायत सही है दो ना ले आ के चौड़ी में बिसार क्यों लगा, सदक अल्लाह, अल्लाह पाक ने सच कियो कि थारी औलाद थारो माल थारे वास्ते इम्तिहान है, मैं अपना ये बच्चा हेरिया मेरा ते बर्दाश्त न हुआ, रेव न गियो, हूँ उठ के मजमा में राह बना के कायनात का सरदार इंदुआना जुम्मा का खुतबा के दौरान ले आके अपनी चौड़ी में बिसाड़ें, इससे बढ़कर के मकाम बयान किया जाए। और एक मरतबा कमरा मां नबी पाक जनुआ के पार इन दुआ साहबजादाना इन दुआ शहजादाना जन्नत का नौजवाना का सरदाराना अपनी कण मुबारक पर सवारी दें थे हज़रत उमर आवें और अर्ज़ करें, वाह वाह थारी सवारी के आली शान है। हजूर ने फरमाया, उमर सिर्फ सवारी नहीं बल्कि सवार भी देखना वे भी किसा आली शान है। सामीन अगर फ़ज़ाइल हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अनु को हम गुलदस्तों बनावा थे कुछ यूँ बनेगो, सईदना हसन नवासा रसूल हैं, सईदना हसन सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का नूर नज़र हैं, सईदना हसन हज़रत अली का फ़र्जंद अर्जुमंद हैं, सईदना हसन राकिब दोश रसूल हैं, सईदना हसन राकिब दोश सिद्दीक़ हैं, सईदना हसन इंसानियत का उम्मत का मोहसिन हैं, सईदना हसन जन्नत का नौजवाना का सरदार हैं, सईदना हसन शहीद फ़ी सबीलिल्लाह हैं, सईदना हसन खुदा रसूल का महबूब हैं, सईदना हसन हर मुसलमान वस्ते महबूब हैं, सईदना हसन हर मुसलमान की मोहब्बत अकीदत का मरकज़ हैं। अल्लाह पाक मारा दिला में इनकी मोहब्बत कायम फरमावे क्योंकि ईमान को जुज़ है इन अहले बैत आले रसूल की मोहब्बत। हमने चाहिए एक तम अपनी दिला में अपना दिला ना इनकी मोहब्बत लबरेज़ करा। बल्कि एक सहाबी फरमावे एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्ची हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ ले गया, आपने फरमायो नन्नी जान के ते, हज़रत फ़ातिमा ने इशारों कियो, दौड़ता हुआ सहाबी के मेरिया हज़रत हसन आया और अपनी बाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन पर तरी और हजूर अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह चाके कि या अल्लाह मिना हसन प्यारो है तम भी इस नाल प्यार करो, जिड़ो इस नाल प्यार करे उसने मेरे नाल प्यार कियो, या अल्लाह तो उन नाल प्यार कर और जिड़ो इन दुआ के नाल बुग्ज़ रखे अल्लाह तो उनके नाल बुग्ज़ रख। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। लिहाजा ईमान को जुज़ है और ईमान को तकाज़ो और इस दुआ ते मुतालबो यू है कि मारा दिला में अहले बैत की मोहब्बत हो है। दुआ हसनैन हसन और हुसैन ये दो रज़ी अल्लाह अन्हुमा अपनी फजीलत में अपनी मिसाल आप में, एक ते हर मुसलमान का दिल में इनकी मोहब्बत होनी चाहिए और दूजो यो कि अपनी ज़िंदगी में इनको सुआ अपनावा ज़िंदगी इनके मुताबिक चलावा कि इनने पूरी ज़िंदगी तारीख गवाए, बड़ा ते बड़ा मसाइब बड़ा ते बड़ा मुश्किलात वे दरपेश आया वे ने गवारो क्यों पेश आना, लेकिन अल्लाह का कुरान पर या अपना नाना का दीन पर कोई आँच आ जाए यो इनते बर्दाश्त ना हुआ। दुआ ने पूरी ज़िंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कियो लेकिन शरीयत को कोई असूल टूटे न यो हज़रत हसन ते बर्दाश्त हुओ न यो हज़रत हुसैन ते बर्दाश्त हुओ रज़ी अल्लाह अन्हुमा, बल्कि एक ने तो अपनी जान की कुर्बानी दे छोड़ी, एक ने तो अपना पूरा अहलो आयाल पूरा यार दोस्त जबा करा लिया करबला का मैदान में यूं ते गवारो हुओ, लेकिन नाना का चमन ना जो बाग नानो बना कर गया है उस पर आँच आ जाए कहीं हर्फ आ जाए ये इन शहजादा ते बर्दाश्त न हुआ। आज हम अपनी ज़िंदगी को जिस वक्त मायनों करा ज़िंदगी में कितना बड़ा ते बड़ा असूल हम तोड़ा लगा, रोज़ाना इन लोगों ने इन हजराता ने इन फातिमा तो जहरा का नूर नज़र ने तलवारा की झंकार में भी नमाज नहीं छोड़ी, आज हम की ते मक्खन ते माखी खा के नमाज नहीं पढ़ता, इन ने तीना कई बरसात में कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी, आज हम आराम ते नरम बिस्तर पर कुरान ते महरूम हुआ लगा, इन्हें बड़ी बड़ी

0: सभी नाप गोजरी प्रोग्राम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी श्रीनगर है।
1: पयामे सुबह
2: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
1: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियत से बात,
2: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगु रोज सिर्फ आपके लिए।
1: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह,
2: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
1: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।
0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। शाम के 5:50 हो रहे हैं। अब गोजरी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।
3: सामीन आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामो लेकर मोहम्मद श्री पसवाल हाजिर। पहला कुछ खास खास खबरों की सुर्खी। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा को बाजाबता आगाज, लगभग 11,000 तो ज़्यादा यात्रियों ने उन तक पवित्र गुफा में किया शिवलिंगम का दर्शन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा ना मुल्क की रूहानी रवायत सकाफती इतिहाद गुलाफानी बाब दितो करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तालब इलमों की शख्सियात ना उभारण में उस्ताद का रोल न किया उजागर। तय भारत और जापान ने की पाकिस्तान की सरहद पार दहशत पसंदी समेत हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। पेश है खबरों की तफसील। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा को आज यात्रा का धुआं पहलगाम तय बालताल का रस्ता तय बाजाबता तौर आगाज हो गयो और आज पहले त्याड़े लगभग 11,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम का दर्शन किया। इंतजामिया तय दूजा महकमा और एजेंसियां ने यात्रा का बेहतर इनकाद वास्ते हर तरह का इंतजाम मुकम्मल किया है। तय यात्री उन इंतजामों तो काफ़ी मुतमयन है। यात्रा का बारे पेश है अंतनाग ते मारा नुमाइंदा की यह रिपोर्ट।
4: नुनवन बेस कैंप से जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महीदीन ने एसएसपी अनंतनाग अमूद अशोक नागपुरी और पैरामिलिट्री के सीनियर अफसरान के हमरा यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि बालतल गांदरबल से भी यहां के जिला के तरक्याती कमिश्नर ने यात्रियों के पहले जत्थे को अगले पड़ाव की ओर रवाना किया। सुहाने मौसम के बीच बम बम बोले की गूंज में यात्रियों का कहना था ये उनकी जिंदगी का अनोखा सफर है। जिला इंतजामिया ने पहलगाम और बालतल के मुख्तलिफ पड़ावों पे यात्रियों के लिए जदीद सहूलियात दस्तियाब रखी है। तिबी सहूलियात में भी काफी बेहतरी लाई जा रही है, जबकि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम रखे गए है। उम्मीद यही की जा सकती है की इस बार मुख्तलिफ राज्यों से यात्रियों की बड़ी तादाद पवित्र गुफा में शिवलिंगम का दर्शन करने के लिए आएंगे। बालतल से साथी साबिर अयूब के साथ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए नुनवन बेस कैंप से मैं तसद्दुक रशीद।
3: इसे दौरान 3,865 यात्रियों पर मुश्तमिल दूजो जत्थो आज भगवती नगर यात्री निवास जम्मू तू वादी पहुंच गयो। उन विचों 1,735 यात्री बालताल जद के 2,130 यात्री पहलगाम के रस्ते गुफा दर रवाना होया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज वर श्रद्धालुओं ने मुबारकबाद दी है। श्रद्धालुओं के नाम एक चिट्ठी में नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ यात्रा ना मुल्क की रूहानी रवायत सकाफती इतिहाद में एक लाफानी बाब करार दितो। उन्होंने कहो जे बाबा बर्फानी का मुबारक दर्शन लखा अकीदतमंदा की जिंदगी में एक नाकाबले फरामोश ते नेक लम्हो होवे। वज़ीर आज़म ने यात्रा का बेहतर इंतजाम वास्ते श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ते हुकूमत जम्मू कश्मीर की तारीफ की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का लोगों की मेहमान नवाजी की भी तारीफ की। उन्होंने यात्रियों ने कहो जे वे वोकल

और लोकल जज्बा ना बादो देता हूँ यात्रा खर्चा को कटूं काट 10% सो मुकामी चीजों की खरीदारी में सर्फ करें ताजे जम्मू कश्मीर का मुकामी लोगों और नौजवानों का रोजगार ना बादो मिल सके। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने भी सालाना अमरनाथ यात्रा का आगाज वर तमाम श्रद्धालुओं ने मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने क्योंजे अमरनाथ यात्रा भारत की सब तो ज़्यादा काबिल एहतराम ते कदीम यात्राओं में शामिल है। इस नाल मुल्क की लाफानी रूहानी विरासत है अकीदा और भक्ति की जारी और सारी रवायत की अक्कासी होवे। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने आला मियार की खसूसी रेडियो नशरियात फराहम करने वास्ते आकाशवाणी श्रीनगर में इस साल भी एक मखसूस स्टेडियो कायम कियो गयो है। स्टेडियो तो आज बाजाबता तौर नशरियात को आगाज कियो गयो। इस नशरियात की इफ्ताही रस्म डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग ते स्टेशन का सरबराह गुरबिंदर सिंह ने अंजाम दी। अपना ख्यालों को जाहिर करता हूँ उन्होंने कहो जे श्रद्धालुओं वास्ते इस नशरियात के जरिए मुख्तलिफ अकीदती प्रोग्राम नशर करने के अलावा उन तक जरूरी मालूमात भी पहुँचाई जाएंगी। इस मौके पर इंजीनियरिंग शोभा का डिप्टी डायरेक्टर प्रमोद कुमार, आकाशवाणी श्रीनगर का प्रोग्राम हेड गुलाम रसूल आखून, सीनियर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव समीना शाह, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव सुरेश चंद मैना, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का सरबराह अशफाक अहमद शाह, सीनियर ब्रॉडकास्टर अशफाक लोन ते खसूसी नशरियात का इंचार्ज वसीम फारूक भी मौजूद था। शुमाली रेलवेज ने बड़गाम ते श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बिशकार चलन आली खसूसी विस्ताडोम रेल सर्विस में बाधा को ऐलान कियो है। यह रेलगड्डी उन 2 नवंबर 2026 तक अतार के बगैर हफ्ता में 6 दिन चले करेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नज़र यह रेलगड्डी 31 अगस्त 2026 तक बनाल रेलवे स्टेशन पर मुख्तसर वेला वास्ते रुके करेगी। अदालत उज़्मा की हदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाला यात्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना तादाद तय की गई है। श्रद्धालुओं की सलामती और यात्रा का बेहतर इनकाद वास्ते इस पर अमल करना लाजमी करार दी तो गयो है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनना क्यों गयो है जे वे तत्काल सहूलत तू फायदो चाह गए अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पूजे। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन गए जम्मू कश्मीर पहुंचे तमाम यात्रियों ने अपनी बारी को इंतजार करन ते इंतजामिया की तरफों मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। लेफ्टिनेंट गौरव मनोज सिन्हा ने कहा है जे बाख्तियार उस्ताद एक तालब इलम ना पूर एतमाद बना सके ते मजबूत तालीमी अदारा खुशहाल समाज की तश्कील में अहम रोल अदा करें। महकमा स्कूली तालीम सैक्रेट ते भारती एयरटेल फाउंडेशन की संजाली नाल जम्मू में हुई एक रोज़ा सलाहियत साजी का प्रोग्राम ते नाल खिताब करता हुआ मनोज सिन्हा ने कहे तालीम को मकसद इतकाई अमल को बादो है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है जे भारत फ्रांस स्ट्रेटजिक साझेदारी पायदार मजबूत है इख्तरा पर मबनी तरक्की का मरहला ना अगे बधाने वास्ते बेहतरीन बुनियाद फराहम करे। पेरिस में भारत फ्रांस कारोबारी गोल मेज कॉन्फ्रेंस नाल खिताब करता हुआ उन्होंने कहा जे आलमी माशियत तेजी नाल बदल रही है जिसकी अहम वजूहत तकनीकी तरक्की सप्लाई चीन में तनो तवानाई की मुंतकली ते जग्राफियाई और सियासी तब्दीली है। वजीर खजाना ने फ्रांस का सनतकारा और सरमायाकारा विकसित भारत 2047 का सफर में भारत को शराकदार बन वास्ते सदे हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान को दौरों करेगा जित वे 480 करोड़ रुपया लागत नाल जोधपुर हवाई अड्डा की तामीर की गई नवी टर्मिनल बिल्डिंग को इफ्ताह करेगा। वजीर आजम 1 लाख करोड़ रुपया लागत आला कई तरक्याती प्रोजेक्टों को इफ्ताह करेगा ते दूजा कई प्रोजेक्टों को नींव बटो रखेगा। आम लोगों की सहूलियात वास्ते
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अदारमा ईमेल को अंदराज कराने की सहूलत दस्तियाब कराई है। ख्वाहिशमंद बंदा ईमेल को अंदराज या अपडेट आधार के जरिए कर सकें। यह सहूलत 1 जुलाई तू दी गई है ते आइंदा 6 महीने

0: نہ دستیاب رہے گی۔ ڈیفینس ایکوزیشن کونسل نے دفاعی فورسز کی صلاحیتوں بداو دین کی غرض نال 52,000 کروڑ روپیے کا منصوبہ نہ منظوری دیتی ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق ان کو مقصد بھارتی فوج واسطے جدید طرز کو دفاعی ساز و سامان خریدنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی تے جاپان کی اون کی ہم منصب سنائی تکائچی نے پاکستان کی سرحد پار دہشت گست پسندی سمیت ہر قسم کی انتہا پسندی کی زوردار مذمت کی ہے۔ بھارت جاپان سربراہ اجلاس کے بعد ایک مشترکہ بیان میں دونوں لیڈر نے پچھلا سال اپریل میں پہلگام حملہ تے نومبر میں دلی حملہ کی سخت مذمت کرتا ہوں کہ ہے جے ان حملوں کا تمام قصوروارانہ کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ اس کے نال خبرنامو مکیو اگلو خبرنامو 6:05 پر آکاشوانی تو کشمیری میں نشر وے گو۔ دیو اجازت، رب رکھو۔
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ شام کے 6 بج رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا۔
2: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں وشال شرما۔ भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: India's position on the Indus Waters Treaty.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
2: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जाँच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत

0: एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव अलावा एफएम 71.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समय पेशो खदमत प्रोग्राम गर्मी बाइन हिंद खतरे।

ونجيناهم من عذاب غليظ.

0: आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के समय को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का बाजाबिता आगाज, वादी की प्राइवेट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरियों में क्वालिटी कंट्रोल का फुकदान, अवाम की आवाज, पूंछ और राजौरी के एमएलए नायब वज़ीर-ए-आला से नाला, और किश्तवाड़ में सड़क हादसा, 2 अफराद जान बहक। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
5: 9018074333।
6: 9018074333।
7: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ,
8: वाह इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
9: पता नहीं मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा।
10: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
9: अच्छा भाभी,
10: और हाँ मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
9: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें खोल दी।
11: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
12: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
13: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहां प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही

0: उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
1: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
0: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमयी बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: शहर भी ना आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा का बाकायदा आगाज आज 3 जुलाई से हुआ। यात्रियों के पहले काफिले को पहलगाम के रास्ते पर नूनवन बेस कैंप जबकि बालीतल के रास्ते पर दुमेल के बेस कैंप से रवाना किया गया। नूनवन बेस कैंप से यात्रा के लिए मुकर्र करदा खसूसी ऑफिसर डॉ शाहिद इकबाल चौधरी, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, डॉ बिलाल महीउद्दीन भट्ट और जिले के सीनियर पुलिस अफसरान ने यात्रियों को रवाना किया, जबकि दुमेल बेस कैंप से यात्रा के लिए मुकर्र करदा खसूसी ऑफिसर राहुल यादव, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर और गांधरबल जिले के सीनियर पुलिस अफसरान ने यात्रियों को गुफा के लिए रवाना किया। बताया जाता है कि दुमेल बेस कैंप से यात्रियों की रवानगी 2 घंटे की ताखीर से हुई, चूंकि रवानगी के मुकर्र वक्त से कुछ पहले मौसम खराब हुआ और मूसलाधार बारिशें हुई। याद रहे कि इंतजामिया ने यात्रियों की सहूलत के लिए कदम कदम पर इंतजाम किए हुए हैं। एक रिपोर्ट के साथ बालतल से रहीम रिजवान।
3: सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज सुबह 5 बजे 3,404 यात्रियों के पहले जत्थे को दुमेल कंट्रोल गेट पर यात्रा नोडल अफसर बालतल राहुल यादव ने डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर, एसएसपी गांधरबल सुधांशु दामा और कैंप डायरेक्टर की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर गुफा की तरफ रवाना कर दिया। इन यात्रियों में 1,936 मर्द, 1,450 खवातीन, 5 लड़के और लड़कियां, 6 साधु, 3 साधियां और 3 सिक्योरिटी अहलकार भी शामिल थे। बम बम बोले हर हर महादेव और जय जयकारे के नारे लगाकर इन यात्रियों ने काफी जोश और जज्बे के साथ दुमेल कंट्रोल गेट पर RFID कार्ड हासिल किए और गुफा की तरफ रवाना हुए। अगरचे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए यात्री गुज़श्ता रात 2 बजे से ही लंबी लंबी कतारों में दुमेल कंट्रोल गेट पर पवित्र गुफा की तरफ जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिले इंतजामिया गांधरबल ने उन्हें 3 बजे गुफा की तरफ रवाना करने का इरादा किया था। कहा मौसम ने अचानक करवट ली और मूसलाधार बारिशें शुरू हुई, जिसकी वजह से यात्रा 2 घंटे तक रोक दी गई और पहले जत्थे को सुबह 5 बजे गुफा की तरफ रवाना कर दिया गया। इस तरह सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक बालतल बेस कैंप से आज 8,038 यात्रियों को बाबा बर्फानी की दर्शन के लिए गुफा की ओर जाने की इजाजत दी गई। इन यात्रियों में 5,306 मर्द, 2,564 खवातीन, 31 लड़के और लड़कियां, 34 साधु, 23 साधियां, 4 ख्वाजा सिरा और 36 सिक्योरिटी अहलकार शामिल थे। यात्रियों को बहिफाजत गुफा की तरफ ले जाने और दर्शन करके वापस लाने के लिए जहां इंतजामिया ने जगह जगह यात्रियों के लिए तमाम तर सहूलियात बहम रखी हैं, वहीं हिफाजती के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर यात्री काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक मुख्तलिफ मकाम पर छोटे छोटे तिबी मराकज कायम किए गए, जहाँ तमाम तर सहूलियात मैसर रखी गई है और माहिर डॉक्टरों के साथ साथ पैरा मेडिकल टीमें मुतहरिक रखी गई हैं। यात्रियों के लिए बैतुल खुला, बिजली, पानी, मुफ्त खाना पीना और रिहाइश के अलावा दीगर सहूलियात हर पड़ाव पर मैसर रखी गई हैं, ताकि उन्हें पवित्र सफर के दौरान दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इधर ट्रांजिट कैंप मणिगाम और ट्रांजिट कैंप शादीपुरा में जहां 5 बजे के बाद जम्मू भगवती नगर बेस कैंप या बालतल बेस कैंप से पहुंचने वाले यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है और उन्हें रात भर इन्हीं ट्रांजिट कैंपों में कयाम करना पड़ता है, भी यात्रियों के लिए खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान इंतजामिया ने यात्रियों से अपील की है कि वो अपनी बारी का इंतजार करें और मुकर्र वक्त से पहले यहाँ ना पहुंचें। उन्होंने वादा कर दिया कि किसी भी अनरजिस्टर्ड यात्री को गुफा की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही यात्रियों को कहा गया है कि वो बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक सेहत सफाई का खास ख्याल रखें। इधर सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक ये रिपोर्ट फाइल करने तक 6,648 यात्री बाबा बर्फानी का दर्शन करके वापस बालतल पहुंचे। इन यात्रियों में 4,018 मर्द, 2,530 महिलाएं, 25 लड़के और लड़कियां, 13 साधु, 5 साधियां, 7 ख्वाजा सिरा और 50 सिक्योरिटी अहलकार शामिल थे। यात्रियों ने पवित्र गुफा जाकर खुसूसी पूजा पाठ में शिरकत करके मुल्क की अमन शांति और

0: एजेंट मौजूद रहते हैं और वो बीमारों को अस्पताल में टेस्ट कराने के बजाय अपने क्लिनिकल लेबोरेटरीज पर ले जाते हैं जहां से इन एजेंटों को कमीशन मिलता है। इतना ही नहीं बल्कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए भी ऐसे ही एजेंट हजरात मौजूद रहते हैं। अस्पताल इंतजामिया को चाहिए कि वो अपने मुलाजमीन को वर्दी पहनने और नेम प्लेट लगाने का पाबंद बनाए ताकि इन एजेंटों को आसानी से पहचान किया जा सके। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि महकमा सेहत ने क्लिनिकल लेबोरेटरीज के लिए जो कवायद व जवाबित वज किए हैं उनमें जगह का तयन, बाथरूम की सहूलियात, वेस्ट डिस्पोजल और टेक्निकल तालीम याफ्ता स्टाफ का होना लाजमी करार दिया गया है, मगर जमीनी सतह पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अवामी हल्के मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को फौरी तौर महकमा सेहत के अफसरान को मुतालिक करके इन तमाम क्लिनिकों की नए सिरे से जाँच करानी चाहिए और जो क्लिनिक कवायद जवाबित की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए जाएंगे उनको फौरी तौर बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन डॉक्टरों ने अपने निजी क्लिनिकों पर लेबोरेटरीज खोल रखी है उनको फौरी तौर बंद किया जाना चाहिए क्योंकि इन क्लिनिकों पर बीमारों को गैर जरूरी टेस्ट तजवीज करके दो दो हाथों से लूटा जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट को बाजाबता क्लिनिकल लेबोरेटरीज और डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए रेट लिस्ट मुकर्रर करना चाहिए ताकि आम आदमी राहत की सांस ले सके।
1: बारामुल्ला से करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इस रिपोर्ट के तनाजुर में सेहत और तिबी तालीम के वजीर सकीना मसूदी तू से बात की। अलबत्ता सबसे पहले उनसे पूछा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए हाल ही में एक्सरे, एमआरआई, कैथ लैब और दीगर ऐसी सहूलियात में इजाफा करने का जो इरादा जाहिर किया है वो हकीकत की शक्ल कब लेगा।
2: अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी दिल्ली जहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सारे भी यूटीज हैं जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर्स को इनवाइट किया गया था। तो उस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें डिस्कस हुई है। फिर जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने कुछ चीजों के लिए परमिशन दिया था कि एक ये जो इक्विपमेंट है जिसमें MRI आते हैं, कैथ लैब आते हैं और ये जो एक्सरे की आप अभी बात उनकी कमी है तो उन्होंने कहा है कि हम जरूर इस पे ये जो है आपको देंगे और उन्होंने लगभग लगभग ऑलमोस्ट जो है एग्री भी किया है और उसके लिए उन्होंने सेंक्शन भी देनी है वो भी देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर कैथ लैब लगता है तो उसमें आप कई लोगों की जानें जो है बचा सकते हैं। जैसे इस सरकार के दौरान हमने कई हॉस्पिटल्स में जैसे अनंतनाग है, बारामूला में लगाने जा रहे हैं तो जैसे साउथ का कोई भी खुदा न खास्ता पेशेंट जो हार्ट अटैक पेशेंट होता है जिसको गोल्डन आवर में पहुंचना होता है हॉस्पिटल तो अगर वो नहीं पहुंच पाता था क्योंकि कैथ लैब वहाँ साउथ में कहीं नहीं थी तो अब अनंतनाग में है तो कई लोगों की जानें बची। तो इस तरह अगर ये कैथ लैब, एक्सरे या बाकी जो भी इक्विपमेंट है उन्होंने कहा है कुछ इम्पोर्टेंट चीजें वो करेंगे वो उसके लिए उन्होंने एग्री किया हुआ है और मान भी गए हैं, मैं एक MOU साइन हुआ जिसमें उन्होंने एग्री किया है तो वो देंगे इंशाल्लाह जो जिससे हमारे हॉस्पिटल्स की काफी जो है बेहतर पोजीशन हो जाएगी और पेशेंट केयर में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैंने उनको कहा, मैंने रिक्वेस्ट की थी, एक तो ये एम्स का जो हमारा हॉस्पिटल है और उन्होंने उसी वक्त 250 करोड़ जो है वो रिलीज करवाए हैं ताकि काम जो है जल्दी इस पे जो सुस्ती से चल रहा है उसमें तेजी आए। जैसे पिछले 2 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एम्स जो बिल्कुल काम ही नहीं चल रहा था गवर्नमेंट बनने से पहले तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कई मीटिंग्स लिए हैं और यूनियन मिनिस्टर साहब को जब अभी ये मैंने कहा है तो उन्होंने उसमें 250 करोड़ पैसा रिलीज किया है और हमें उम्मीद दिलाई कि जल्दी से जो एजेंसी जिसमें काम जो है सुस्ती से चल रहा था उसको उन्होंने एग्री किया है कि वो जल्दी से इस पे काम शुरू करवाएंगे ताकि ये कंप्लीट हो। ऑलरेडी काम शुरू हुआ है पिछले 2 सालों में। तो इसी तरह हमने कहा है कि जो हाईवेज है हमारे हाईवेज में हमें वहाँ पे ट्रामा हॉस्पिटल है, ट्रामा हॉस्पिटल अगर कहीं पे है तो वो भी नॉन फंक्शनल है तो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब ने भी किया है इस पे हमारे ट्रामा हॉस्पिटल है, उन्होंने कहा है कि आप उसके लिए बताइए, डिमांड करिए, हम उसमें जो भी पॉसिबल है वो आपकी मदद उन हाईवेज के ट्रामा हॉस्पिटल में करेंगे क्योंकि हाईवेज में जो ट्रामा हॉस्पिटल रखना कोई ऐसे नहीं रख सकते, उसमें आपको अगर ब्लड की नीड हो वो इमीडिएट मिल जाए या MRI करना हो वो हो जाए तो तभी आप एक्सीडेंटल केसेस को जो है बचा सकते हो तो उसमें भी उन्होंने एग्री किया है। तो अब हम इस पे काम कर रहे हैं, हाईवेज पे जितने भी हमारे ट्रॉमा हॉस्पिटल हैं उनके लिए।

0: प्रोजेक्ट बना के जो है वो हम भेजेंगे ताकि पेशेंट केयर में जो है जल्दी हो जाए और पेशेंट केयर बेहतर हो सके।
1: वादी के मुख्तलिफ इलाकों में जो प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स काम कर रहे हैं उनके बारे में बेशतर के बारे में शिकायत आते हैं। कुछ एक तो खैर नामी गिरामी है जिनकी अच्छी फैसिलिटीज हैं, लेकिन बेशतर के बारे में शिकायत है कि वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल वहाँ पर बिल्कुल नहीं है और जो रिजल्ट आते हैं उनमें बड़ा फर्क आता है। जब आप किसी अच्छी लैब में टेस्ट कराने जाते हैं वहाँ रिजल्ट कुछ और आता है, आम सी लैब में जाएंगे वहाँ रिजल्ट कुछ और आता है, जमी आसमां का फर्क होता है।
0: एक इसमें ये है कि ये जो प्राइवेट लैब लोगों ने खोले हुए हैं जितने भी इसमें टेस्ट करने जा रहे थे टेस्टिंग के लिए जो लोग जाते हैं, हमारे पास तो इस तरह की कंप्लेंट अगर आ जाती तो डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करता, लेकिन कंप्लेंट आई नहीं। लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं, आपके जरिए ये नोटिस में आ रहा है, मैं फिर भी डिपार्टमेंट को हिदायत दूंगी कि अगर जैसे आप जिक्र कर रहे हैं बारामूला में इस तरह की जो है चीजें अगर प्राइवेट होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: अभी सीएमओ बारामुल्ला ने कार्रवाई की है अभी 2 रोज पहले कि बोनियार का एक पेशेंट था, उसके बच्चे का टेस्ट हुआ था वहां पे और 3 डिफरेंट लैब से उसने टेस्ट वहां पे करा लिया, 3 डिफरेंट लैब्स के 3 डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए और अल्टीमेटली डॉक्टर ने कहा कि नहीं, जो लास्ट रिजल्ट है यही सही है। तो फिर उनने कार्रवाई भी की है, वहां उस लैब को सर्वमोहर किया गया है, परसों की बात है।
0: ठीक है, आपने बता दिया, मैं डायरेक्टर को कह दूंगी अगर कहीं पे कार्रवाई हुई है, लेकिन अगर कहीं और करने की जरूरत है वो भी करेंगे इंशाल्लाह।
1: आपने जिन सहूलियात का जिक्र किया जो कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ परस्यू की है, जिस तरह से आप इनको परस्यू कर रही हैं, कब तक ये पॉसिबल है कि प्रैक्टिकली ये फैसिलिटीज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी या अवेलेबल हो जाएंगी, चाहे वो कैथ लैब की बात है चाहे वो हैंड हेल्ड एक्सरे की बात है, कब तक पॉसिबिलिटी है?
0: हैंड हेल्ड एक्सरे और MRI तो ये जल्दी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम भी फॉलो अप कर रहे हैं कि जल्दी वो दे ताकि हॉस्पिटल में लगे और लोगों के लिए पेशेंट केयर में आसानी हो।
1: ये थी सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना मसूद इत्तू। इधर गांधी किंग फाउंडेशन के सदर बराए जम्मू कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने आज मंजगाम का दौरा किया। उनके बकौल मंजगाम के पुल की तामीर को मुकम्मल करने की अशद जरूरत है ताकि मकामी आबादी को सहूलियात मैसर हो सकें। डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू का कहना है कि चोगलपुरा से मंजगाम तक की सड़क 3 हफ्तों से बंद पड़ी है, जिसके नतीजे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हद तो यह है कि लोगों के लिए मुतबादिल का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने सरकार से पुरजोर मुतालबा किया है कि मंजगाम के पास तामीर किए जाने वाले पुल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट दिल से बना।
4: हाय नमस्ते, मैं हूँ खुशी, आपकी टीबी साथी। पूछिए जो पूछना है।
5: टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं?
4: बताती हूँ।
5: ट्रीटमेंट कितने दिन चलता है?
4: ये भी बताती हूँ।
5: और मेडिसिन लेना भूल जाऊँ तो?
4: रिमाइंड भी करवाती हूँ।
6: अब टीबी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, सपोर्ट और केयर सब कुछ आपके स्मार्टफोन में टीबी मुक्त भारत ऐप के साथ। यहाँ मिलेगी टीबी से जुड़ी हर जानकारी, नजदीकी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सेंटर्स की लोकेशन, ट्रीटमेंट ट्रैकिंग और मेडिसिन रिमाइंडर्स और एक्सपर्ट गाइडेंस भी 24/7 बिल्कुल फ्री और कॉन्फिडेंशियल। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए टीबी मुक्त भारत ऐप।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: ज्यादा जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर कॉल करें या अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
8: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर डोडा किस्तवाड़ एंड रामबन।
9: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
10: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
9: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें।

0: बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहने। पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
1: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। किश्तवाड़ जिले के पाडर इलाके में इश्तियारी से गुलाबगढ़ की तरफ जाने वाला एक टिप्पर सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में एक बाप और बेटा जांबाक हुए जबकि दीगर दो अफराद इस हादसे में शदीद जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि इस टिप्पर में चार अफराद सवार थे। हादसे में एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि तीनों जख्मियों को मकामी लोगों ने और इमदादी टीमों ने अस्पताल पहुंचाया, ताहम वहां पर मुतवफी शख्स का बेटा भी जांबहक हुआ। रुकने पार्लिमान सज्जाद अहमद किचलू ने हादसे पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सुगवारा खान से ताजियत की है। समन, कल के प्रोग्राम में हमने देवर इंद्रबुग लोलाब के सियाहती मकाम कायरवन पार्क में बुनियादी सहूलियात की कमी, खुसूसन टॉयलेट्स, वॉशरूम्स और पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी को उजागर किया था। इस खबर का फौरन नोटिस लेते हुए महकमा आरएंडबी डिवीजन लोलाब ने बरवक्त कार्रवाई की है। महकमे की जानिब से इन सहूलियात की तामीर और फराहमी के लिए बाजाबिता टेंडर जारी किया गया है, जिसके बाद तवक्कु है कि बहुत जल्द तामीराती काम का आगाज होगा। मकामी लोगों और सयाहों ने महकमे की इस फौरी पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। और प्रोग्राम के आखिर में खबर के कश्मीर मरकज अदब व सकाफत की तरफ से नामवर अदीब और शायर मरहूम अली मोहम्मद शहबाज की याद में कल 4 जुलाई को काजिफ स्कूल चराज शरीफ में दिन के 1:30 बजे से एक तकरीब का इनाकाद किया जाएगा। तकरीब महफिल मकालात और मंजूम खिराज अकीदत पर मुश्तमिल होगी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
3: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।

0: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000255।
1: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स।
2: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
3: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
4: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
5: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
9: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता है। यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए कृपया कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें।
10: जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड सिम कार्ड

0: यहाँ काम नहीं करते। यात्री बालटाल, लुलवान तथा अन्य बेस कैंप पर उपलब्ध विशेष काउंटर से पहले से एक्टिवेट किए गए सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पर लगाए गए साइन बोर्ड, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार का शॉर्टकट न अपनाएं और डेंजर जोन से दूर रहें। अगर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो तुरंत नजदीकी हेल्थ सेंटर से संपर्क करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही यात्रा करें और समय समय पर आराम जरूर करें। किसी भी सहायता या आपातकालीन स्थिति में नजदीकी पुलिस या सुरक्षा बल से संपर्क करें।
1: आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इन निर्देशों का पालन करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शनों का आनंद लें।
0: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

की और तरक्कियात, आवामी बहबूद, तिजारत, सियाहत और दीगर सेक्टरों के मामलात उनकी नोट्स में लाए। मुलाकात करने वालों में एमएलए हबा कदल, शमीमा फिरदोस, एमएलए जसरोटा राजीव जसरोटिया और एमएलए डोडा मेराज मलिक शामिल हैं। वजीर आला ने वफूद और अरकान के मसाइल गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर में तरक्कियाती अमल को आगे बढ़ाने नीज लोगों की राहत रसानी के लिए वादाबंद है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात से पाक करने के लिए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां जारी हैं। एक तरफ इस धंधे में मुलवस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है तो दूसरी तरफ इस लत में शामिल नौजवानों की बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने आज हंदवाड़ा, पुलवामा और सोपोर में मनुष्यात के खिलाफ बेदारी प्रोग्रामों का इनाकाद किया। पेश है मनुष्यात से मुतालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।

0: के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है तो दूसरी तरफ इस लत में शामिल नौजवानों की बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने आज हंदवाड़ा, पुलवामा और सोपोर में मनुष्यात के खिलाफ बेदारी प्रोग्रामों का इनाकाद किया। पेश है मनुष्यात से मुतालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वजीर आजम जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्ताह करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत से तामीरशुदा इस इमारत में सालाना 20 लाख मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। नरेंद्र मोदी जोधपुर में नजरसानीशुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इस स्कीम का मकसद हवाबाजी के शोबे की क़ियादत में तरक्की के अगले मरहले को तेज करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाई तकाची ने पाकिस्तान की सरहद पार दहशत पसंदी समेत हर किस्म की इंतहा पसंदी की जोरदार मजम्मत की है। भारत जापान सरबरा इजलास के बाद एक मुश्तरक बयान में दोनों लीडरों ने गुज़श्ता साल अप्रैल में पहलगाम हमले और नवंबर में दिल्ली हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इन हमलों के सभी कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। दोनों वज़रा आज़म ने एक खुशहाल भारत बहरुल्काहिल के लिए हम ख्याल ममालिक के माबैन इश्तराक मजबूत करने के अज़्म का भी इजहार किया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत फ्रांस स्ट्रेटजिक साझेदारी पायदार, मजबूत और इख्तिरा पर मबनी तरक्की के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। पेरिस में भारत फ्रांस कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी मईशत तेजी से बदल रही है, जिसके अहम वजूहत तकनीकी तरक्की, सप्लाई चेन में तनू, तवानाई की मुंतकली और जियोग्राफी व सियासी तब्दीलियां हैं। वजीर खजाना ने फ्रांस के सनतकारों और सरमायाकारों को विकसित भारत 2047 के सफर में भारत का शराकतदार बनने के लिए मदद किया। उन्होंने मुश्तरका खुशहाली के हुसूल के लिए भारत फ्रांस स्ट्रेटजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। सरकार ने वादा किया है कि सिंतास आबी मुआहिदा इस्लामाबाद की जानिब से सरहद पार दहशत पसंदी की मुसलसल सरपरस्ती के जवाब में ताहाल मुअत्तल है। नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंतास मुआहिदे के ताल्लुक से भारत का मौकिफ वाजा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सरहद पार दहशत पसंदी की हिमायत से दस्तबरदार होना होगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दिफाई फोर्सेज की सलाहियतों को बढ़ावा देने की गरज से 52,000 करोड़ रुपए के मंसूबों को मंजूरी दी है। वजारत दिफा के मुताबिक इनका मकसद भारतीय फौज के लिए जदीद तर्ज का दिफाई साजो सामान खरीदना है। आम लोगों की सहूलियत के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार में ईमेल का इंदराज कराने की सहूलत दस्तियाब कराई है। ख्वाहिशमंद अफराद ईमेल का इंदराज या अपडेट आधार ऐप के जरिए कर सकते हैं। ये सहूलत 1 जुलाई को मुतारिफ की गई है और आइंदा 6 माह तक दस्तियाब रहेगी। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अथर आमिर खान की सदारत में आज जिला सतह की अमलावरी कमेटी की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें जिला से ताल्लुक रखने वाले उन नौजवानों की दरख्वास्तों का जायजा लिया गया जो कारखानादारी के ख्वाहिशमंद हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका हुकाम को मंजूरशुदा दरख्वास्तों के ताल्लुक से जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने जिले में एकलाविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पर जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल के बॉयज हॉस्टल के इल्तिवा में पड़े काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। भारत में क्रिकेट के कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारत और श्रीलंका के दरमियान अगले माह की 15 तारीख से होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए शेड्यूल मुश्तर किया है। इस सीरीज का पहला मैच अगले माह की 15 तारीख से श्रीलंका के गाला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 23 जुलाई से सिन्हाल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो में होगा। भारतीय टीम की क्यादत शुभमन गिल करेंगे। इस दौरान भारतीय टीम आजकल इंग्लैंड के दौरे पर है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाली 5 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया था। सीरीज का दूसरा मैच कल मंच

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समय समाप्त करें आज का तबसिरा।
1: आदाब, आज का तबसिरा लेकर मैं मुबशिर रुफाई। रिवायती सालाना अमरनाथ जी यात्रा 2026 के बाकायदा आगाज के मौके पर श्रद्धालुओं का पहला दस्ता आज सुबह बालतल और पहलगाम के बेस कैंपस से हिमालय में वाका अमरनाथ की पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना हुआ। गांधरबल और अनंतनाग से रवानगी आज सुबह सवेरे हुई। बालतल बेस कैंप में बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश खरोश में कोई कमी नहीं देखी गई। बालतल गुफा के 14 किलोमीटर तवील ट्रैक पर जामे मैकेनिज्म फॉल कर दिया गया है। मौसम में मजीद उतार चढ़ाव की सूरत में यात्रियों की रिहाइश के लिए बालतल और नुनवन बेस कैंप्स में रिहाइश का भरपूर इंतजाम कर दिया गया है। इसके अलावा मौसमी सूरत हाल खराब होने की सूरत में जम्मू से श्रीनगर तक मुख्तलिफ मकामात पर हंगामी पनाहगाहें भी बनाई गई हैं। गुफा के दर्शन के लिए आज से ये सिलसिला यात्रा के इख्तिताम तक पूरे 56 रोज तक जारी रहेगा। इस दौरान जम्मू से बालतल और पहलगाम के लिए काफिलों की रवानगी रोजाना की बुनियाद पर होगी और रोजाना की बुनियाद पर ही दर्शन होंगे। श्राइन बोर्ड के मुताबिक इस साल 3.5 लाख यात्रियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाई है और ये सिलसिला हनूज जारी है। 2 जुलाई को पहला जत्था 4,800 से जायद यात्रियों पर मुश्तमिल था, जबकि आज दूसरे जत्थे में 3,865 यात्री शामिल थे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक यात्रा के रास्ते पर जाने वाले यात्रियों की रोजाना ज्यादा से ज्यादा तादाद को तय किया गया है। यात्रियों की हिफाजत और यात्रा के हमवार इनेकाद के लिए इस रोजाना की हद की तामील लाजमी करार दी गई है। यात्रियों की सहूलत के लिए मुल्क भर में बैंक की शाखों और ऑनलाइन चैनल्स के जरिए यात्रा के आगाज से पहले ही पेशगी रजिस्ट्रेशन दस्तियाब कराई गई थी। ज्यादातर यात्री पहले ही इस सहूलत से फायदा उठा चुके हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं, इसलिए तत्काल इन्हें ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन स्लॉट इंतहाई महदूद हैं। एडवाइजरी में तमाम यात्रियों से कहा गया है कि वो अपनी पेशगी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंचे, लिहाजा तत्काल सहूलत के तहत रजिस्ट्रेशन किए बगैर जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हजारों यात्रियों को जगह देना मुमकिन नहीं है। ऐसे यात्रियों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी बारी का इंतजार करें और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा तारीख पर ही सफर करें, क्योंकि बहुत से यात्री अपनी रजिस्टर्ड सफरी तारीख से पहले ही पहुंच रहे हैं। एडवाइजरी के मुताबिक किसी भी यात्री को उनकी रजिस्टर्ड तारीख से पहले सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले यात्रियों से कहा गया है कि वो अपनी बारी का इंतजार करें। हर यात्री को यात्रा का मौका मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ मुकर्रर करदा तरीकेकार और दस्तियाब सलाहियत के मुताबिक ही मुमकिन होगा। यात्रा के आगाज के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों के नाम एक पैगाम में अपील की है कि वो यात्रा के दौरान वोकल फॉर लोकल के जज्बे को अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा है कि हमें अपने सफरी अखराजात का कम अज कम 10% मकामी मसनूआत की खरीदारी पर खर्च करना चाहिए, इससे जम्मू कश्मीर में खानदानों और नौजवानों की रोजी रोटी मुस्तहकम होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी की भी तारीफ की है और कहा है कि यात्रा मकामी बाशिंदों की गर्मजोशी और खिदमत के जज्बे की अक्कासी करती है। बाबा बर्फानी की गुफा की ये यात्रा जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी और आने वाले श्रद्धालुओं के तई मकामी लोगों की लगन को भी जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि यात्रा के रास्ते के साथ रहने वालों ने यात्रियों के इस्तकबाल और मदद में अहम किरदार अदा किया है। यात्रा के हर मरहले पर हजारों मकामी बाशिंदे यात्रियों का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करते हैं। पोनी वाले, कुली, दुकानदार और यात्रा के रास्ते से वाबस्ता दूसरे लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए यात्रियों की बेलोस खिदमत करते हैं और खिदमत का ये जज्बा सनातन सकाफत का जिंदा इजहार है। यात्रा बिलाशुबा कश्मीरियों के खैर सगाली जज्बे की वाज़ह दलील होती है, जिसका बरमला इजहार वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में भी किया है। बेशक

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज आकाशवाणी श्रीनगर से। समीत, हमारे मुल्क में कामकाज का जो डिजिटल इनकलाब आ रहा है वो कई तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक मिसाल बन रहा है और कई ममालिक अब इस मामले में भारत की तकलीद कर रहे हैं। चनाचे मुल्क के वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने हुकूमत के डिजिटल इंडिया इकदाम की सताइश करते हुए कहा है कि इसने हुक्मरानी की नई जहद दी है, शहरियों को बाख्तियार बनाया है और जिंदगी के हर पहलू को छू कर हम जहद तरक्की को तेज किया है। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वजीर अजम ने कहा है कि आज हम डिजिटल इंडिया पहल के आगाज के 11 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 11 साल के डिजिटल इंडिया ने हिंदुस्तान को दुनिया भर में एक नई शनाख्त दी है। वजीर अजम ने कहा कि बगैर किसी रुकावट के डिजिटल अदायगियों और बराए रास्त फायदा की मुंतकली से इस्तेफादा करने वालों तक शिफाफियत के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वसत देने तक टेक्नोलॉजी जिंदगी की आसानी को आगे बढ़ाने का एक ताकतवर जरिया बन गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया ने जिद्दत की लहर को हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों, खासतौर पर देहातों और शहरों तक पहुंचा दिया है। वजीर अजम ने कहा कि मुल्क के कोने कोने से नौजवान, कारोबारी, स्टार्टअप्स और इख्तिराकार कुरे अर्ज को दरपेश अहम चैलेंजों का हल निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस इकदाम ने तालीम, सेहत की देखभाल, ज़राअत, तिजारत और अवामी खिदमात की फराहमी को तकवीत बख्शी है, जिसे हुक्मरानी को मजीद शिफाफ, मुअस्सर और काबिल रसाई बनाया गया है। समीन, इस पहल के तहत डिजिटल दुनिया में हुकूमत की तरक्की ने इस बात को यकीनी बनाया है कि हिंदुस्तान उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में तेजी से तरक्की कर रहा है। इस सिलसिले में जनाब वजीर अजम का कहना है कि यह भी तरक्की और मौके की नई राहें खोलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो एक ऐसे मुस्तकबिल की तख्लीक पर रहेगी जहां टेक्नोलॉजी इंसानियत की खिदमत करे, हर शहरी को बाइख्तियार बनाए और पायदार तरक्की को आगे बढ़ाए। समीन, डिजिटल इंडिया एक तरक्की याफ्ता और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद है और पिछले 11 सालों में इसने गरीबों और महरूमों को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ शहरियों की जिंदगियों को आसान बनाने में अहम रोल अदा किया है। फाइबर नेटवर्क्स की तोसी से लेकर डिजिटल लेन देन तक इस मुहिम की बेमिसाल कामयाबी ने पूरी दुनिया की तवज्जो हिंदुस्तान की तरफ मबजूल कराई है। उन्होंने मजीद कहा, जब 1 अरब से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो इसका असर तब्दीली का होता है। माहरीन का मानना है कि 2015 से पहले अवामी खिदमात का मतलब अक्सर लंबी कतारें, कागजी कार्रवाई और महदूद कनेक्टिविटी होती थी, लेकिन डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट तक रसाई को बढ़ाकर और खिदमात को ऑनलाइन लाकर डिजिटल तकसीम को ख़त्म करने में मदद की। इस प्रोग्राम ने आबादी के पैमाने पर सस्ती इंटरनेट और डिजिटल रसाई के जरिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज की जमहूरियत को भी फ़रोग दिया। समय, पिछली दहाई के दौरान डिजिटल इंडिया हिंदुस्तान की डिजिटल मैशियत और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद बन गया है। हिंदुस्तान अब आलमी रियल टाइम डिजिटल अदायगियों में सबसे आगे हैं। UPI दुनिया भर में लेन देन के हजूम का तकरीबन 49% हैंडल करता है। समीन, इसी दौरान वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने मरबूत मनसूबाबंदी और तालमेल

0: हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडवे 208.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय एक वक्फे के बाद समाप्त करें स्पोर्ट्स टाइम।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर

0: आज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे, क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: स्पोर्ट्स टाइम लेकर हम हाजिर। आज प्रोग्राम के बेशतर हिस्से में बात करेंगे वादी से ताल्लुक रखने वाले एक मारूफ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के साथ, लेकिन आगाज में नजर डालते हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल से जुड़े अहम अपडेट्स पर। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 का दूसरा राउंड या राउंड ऑफ 32 लगभग मुकम्मल हो चुका है। तीसरे राउंड के लिए बेशतर टीमों का इंतखाब हो चुका है। राउंड ऑफ 32 में दो मुकाबलों को छोड़कर ज्यादा बड़े अपसेट देखने को नहीं मिले हैं। लगभग वही टीमें अगले राउंड तक पहुंचने में कामयाब हुई हैं जिनसे ज्यादा तवक्कात थी। चंद एक मुकाबलों का नतीजा पेनल्टी शूट आउट के जरिए सामने आया। राउंड ऑफ 32 में इस तरह के दो मुकाबले देखने को मिले। इत्तेफाकन दोनों मुकाबलों में दो बड़ी और मौजूदा वर्ल्ड कप की फेवरेट तसव्वुर की जाने वाली टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस तरह का पहला मुकाबला चार बार की आलमी चैंपियन जर्मनी और पैराग्वे के माबैन खेला गया, जिसमें जर्मनी को दूसरे ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। मुकर्रर वक्त के दौरान दोनों टीमों का स्कोर एक एक गोल से बराबर रहा, जिसके बाद मुकाबला पेनल्टी शूट आउट में दाखिल हुआ। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 का ये एक और ऐसा मुकाबला था जिसमें गोलकीपर ने शानदार सेव्स करके अपनी टीम को बचा लिया। इस मैच के हीरो रहे पैराग्वे के गोलकीपर ऑरलैंडो गिल, जिन्होंने पेनल्टी शूट आउट के दौरान दो बेहद उम्दा सेव्स करके पैराग्वे को 4-3 से एक बहुत बड़ी जीत दिला दी, जिसका उन्हें तकरीबन डेढ़ दहाई से इंतजार था। 2010 के बाद ये पहला मौका है जब पैराग्वे की टीम तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुई है। आज ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट, जबकि कल गाना और कोलंबिया के माबैन राउंड ऑफ 32 का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इन दोनों मुकाबलों में अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली दोनों टीमें यानी इजिप्ट और गाना को फेवरेट करार दिया जा सकता है, अगर ये दोनों टीमें बेहतर स्ट्रेटजी अपनाने के साथ साथ प्रेशर को हैंडल कर पाई तो इस बात का इम्कान है कि अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली तीन टीमें राउंड ऑफ 16 में जगह बनाने में कामयाब हो सकती हैं, जबकि एशियाई ममालिक की उम्मीदें ब्राजील के हाथों जापान की हार के साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंची थी। वर्ल्ड कप में खेले गए अब तक के मुकाबलों पर नजर डाली जाए तो स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने एक अलग मेयार का खेल पेश किया है। इन चारों टीमों के पास बेहतर गोल स्कोरिंग एबिलिटी मौजूद है। वर्ल्ड कप फुटबॉल के बाद बात करेंगे वादी से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन की जिन्होंने कई एक खेलों में महारत हासिल करने के साथ साथ कौमी सतह जैसे मुकाबलों में शिरकत की है। इस शख्सियत या इस खिलाड़ी का नाम मंजूर अहमद बेग है, जो इन दिनों कई एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन के कायद या मेंबर भी हैं। इनसे गुफ्तगू की है इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर वसीम फारूक ने।
2: आज स्पोर्ट्स टाइम में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस्तकबाल करूंगा हमारे स्टूडियो में मोहतरम मंजूर अहमद बेग साहब का, जो कि खुद कई खेलों के साथ वाबस्ता रहे हैं और उम्र के इस पड़ाव में ये बहुत से खेलों की अंजुमनों में अब एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। मंजूर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में।
3: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए मधु किया।
2: मंजूर साहब, सबसे पहले हमारे सामईन को बताएं कि खेलों की तरफ आपकी रगबत कैसे हुई।
3: जहां मैं रहता हूं वो जगह बिल्कुल इंडोर स्टेडियम और बख्शीश स्टेडियम के साथ मुंसलिक है। मैं रहता हूँ आलूची बाग में और उस वजह से स्टेडियम की तरफ आना जाना हमारा बचपन में ही रहा और हमारे मोहल्ले के इर्द गिर्द जितने भी मोहल्ले हैं उनका भी इस स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता रहना एक नेचुरल सी बात है। जो हमारे बड़े थे उनसे मुतासिर होकर हम अक्सर बेशतर स्टेडियम जाया करते थे।
2: सामीन, हमने आपको अब तक ये नहीं बताया कि मंजूर साहब किस खेल के साथ वाबस्ता है, क्योंकि ये बहुत से खेलों के साथ वाबस्ता है। मंजूर साहब खुद बताएंगे कि इन्होंने कौन कौन से खेल में शिरकत की है।
3: मुझे अक्सर ये भी बोला जाता है कि यू आर द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। ये किसी हद तक सही है। जब आप यूथ सर्विसेंट स्पोर्ट्स में किसी टीचर को, स्पोर्ट्स पर्सन को अपॉइंट करते हो तो ही शुड बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। बट वंस अगर आपको स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से किसी को जॉब पर लगाना होता है, बट ही शुड बी द मास्टर ऑफ द वन स्पोर्ट्स। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने तकरीबन हर एक स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है और अच्छा रोल भी अदा किया है, क्योंकि जो बड़े

0: स्पोर्ट्स से उस वक्त उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो आपकी अकलमंदी और दानिशता आपको ये बोलती है कि आप उस स्पोर्ट्स की तरफ जाइए जिसमें लोग बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, जहां आप कुछ कारकर्दगी बेहतर कर सकते हैं। तो इस तौर पर मैंने बॉल बैडमिंटन, जो हमारी इंडियन ओरिजिन गेम है, उसको चुना। उसमें भी हमारे जो कोच थे, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे, वो भी स्टेडियम के दूसरे साइड में रहते थे। मैं आलूचीबाग में रहता हूँ, वो वजीरबाग में रहते हैं। उन्होंने हमें इस गेम की तरफ बहुत मधु और रगबत दिलाई थी, जिस वजह से इस गेम की तरफ मैं आ गया।
1: बॉल बैडमिंटन के साथ आपने कोई और खेल भी खेले हैं क्या?
0: आई हैड बीन द बेस्ट एथलीट ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। मैंने फुटबॉल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से स्कॉलरशिप्स ले ली है। और आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि जो हमारे अशफाक वडू साहब, मेराजुद्दीन साहब है, जिनका ताल्लुक छतरपाल से है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ही हैड प्लेड अंडर मी इन इंटर स्कूल।
1: ग्रेट।
0: दैट डज नॉट मीन कि आई वॉज प्लेइंग बेटर देन हिम, सिंस आई थिंक एल्डर वन, उसने भी मेरे अंडर खेला है। मैंने जनाब इसके अलावा स्की खेली है, और मैं कभी कभार गोल्फ भी खेलता हूँ। अगर आप देखेंगे तो गोल्फ का भी मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। गोल्फ मेरा एक दोस्त था, वो ही वॉज द मैनेजर इन पुलिस गोल्फ कोर्स, तो मैंने वहाँ सीखी। इसके अलावा बोटिंग मैंने की है, बास्केटबॉल मैंने खेला है, हैंडबॉल में मैंने खेला। मेरा एक कजन है, वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में ही बीटेक के लिए सिलेक्ट हुआ था। आई वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट इन माई लोकलिटी, बट क्रिकेट मैंने नहीं खेला है,
1: मतलब ऑफिशियल लेवल खेला है। हम इंडोर स्पोर्ट्स की भी बात करेंगे, वहां भी आपने कुछ खेलों के साथ आपकी वाबस्तगी रही है, उस बारे में हमारे सामने को बताएं।
0: हाँ, इंडोर में मैंने हैंडबॉल खेला है। आई वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ हैंडबॉल बिसाइड्स अदर सीनियर प्लेयर्स, जो यंगस्टर थे उस वक्त के 90s के। मैंने उसमें डिविजनल लेवल पर भी खेला है, इंटर स्कूल को मैंने एज कैप्टन रिप्रेजेंट किया है। बास्केटबॉल में हमारे जो कोर्ट था, वहाँ हमारे गैब्रियल सर हुआ करते थे, उन्होंने खुद मुझे बोला है कि आप पर मुझे लेट नजर पड़ी है। तो उसके अलावा भी दूसरे जो खेल है वो भी, जैसे 400 मीटर, 1500 मीटर, शॉर्ट पट वगैरह, उनमें भी कलीदी रोल अदा किया है।
1: कैरम के खेल से भी वाबस्त रहे हैं।
0: हाँ हाँ, कैरम बोर्ड घर में खेलते रहते थे। उसी दौरान जो है ये स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज हो गया, इसकी एक एसोसिएशन बनी कश्मीर में, जेएंडके में। तो उसमें मैंने सबर आजमाई की, और मैं जनाब मैंने उसमें सीनियर नेशनल खेला है भुवनेश्वर उड़ीसा में जी।
1: आपने तज़किरा किया स्कूल लाइफ के बारे में, उस टाइम में भी आप खेलों के साथ कैसे जुड़े रहे?
0: आजकल के दौर के हिसाब से हमने बच्चों को इंडोर कर दिया है, लेकिन हमारा जमाना ऐसा था, हम ऐसे खुशकिस्मत लोग थे, हमारे माँ बाप जो थे वो अपने कामों पर तवज्जो रखते थे और बच्चों को खुली आजादी थी। और तब ये जमाना था कि बच्चे सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ ही जाते थे, तो हमारे पड़ोस में खेल कूद वगैरह, यही पढ़ाई उतनी ज्यादा नहीं थी, बैट वगैरह हमारे हाथ में होता था, जिस वजह से स्पोर्ट्स की तरह से नेचुरली तौर पर रगबत पैदा हुई। और हमारे एक अंकल स्पोर्ट्स काउंसिल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, उससे भी मुतासिर होकर हम स्पोर्ट्स की तरफ आ गए।
1: मुख्तलिफ खेलों में अपने लिए करियर बनाने की कोशिश की, कुछ में कामयाबी मिली, कुछ में नाकामी मिली, लेकिन हिम्मत आपने नहीं हारी। और इसकी सबसे बड़ी गवाह जो बात है वो ये है कि आपकी अहलिया वो भी खेलों के साथ वाबस्ता है, और अब आपके बच्चे वो भी खेलों के साथ वाबस्ता है, इस बारे में हमारे सामने को कुछ बताएं।
0: देखिए सर, जहां तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, खेल कूद का ताल्लुक है, एक तो सब्र और इस्तकामत लाती है। अगर आप जीतते हो तो आपका हौसला बढ़ता है, अगर आप हार जाते हो तो आप में सब्र का जज्बा पैदा होता है। आपको दूसरों को जीतते हुए पहले पहल आप में शायद जलसी जैसी लगेगी, लेकिन जो जो आप आगे बढ़ते हो खेल में, जो जीतता है तो आपके अंदर ये रुझान बढ़ता है कि मुझे भी जीतना है। और अगर आप हारते हो तो आप में एक टॉलरेंस का एक सबस्टेंस आ जाता है, जिससे आप एनकरेज होते हो। और यही सबब था कि स्पोर्ट्स से वाबस्ता होने के लिए मेरी वाइफ जो है उनको मैंने एनकरेज किया कि आप स्पोर्ट्स में हिस्सा ले लीजिए।
1: क्या वो पहले से खेलों में शरीक होती रही थी शादी से पहले, कि आपने उनको शादी के बाद इन खेलों की तरफ?
0: शादी से पहले वो खो खो वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, और जो डिबेट्स वगैरह स्कूल में होते थे उनमें भी हिस्सा लेती थी।
1: तो कैरम की तरफ उनको पुश करने का सारा क्रेडिट आप ही को जाता है
0: जी। कैरम एक तो एक्सक्लूसिवली एक इंडोर गेम है, उसकी तरफ वो घर में बच्चों के साथ या अपने बड़ों के साथ खेलते रहते हैं, तो उस वजह से उसको मुतासर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा।
1: फिर प्रोफेशनली इस स्पोर्ट को टेकअप करना और नेशनल लेवल पे पहुंचना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात।
0: हाँ जी, आज भी कैरम बोर्ड आपको मिलेगा, वो खेलते रहते थे, मतलब स्किल्स वगैरह सीखते थे। और जो ये कैरम बोर्ड है, जो हम यहाँ रिवायती طور پر کھیلتے ہیں وہ رولز جو ہے انٹرنیشنل رولز نہیں ہے, اس میں کچھ دوسرے رولز ہیں وہ عام لوگوں کو پتا نہیں ہے, جو اس سے وابستہ ہوتا تو اس کو پتا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کی دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے.
1: لائٹر وین میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا گھر کے ماحول میں تھوڑی سی انبن کم رہتی ہے جب سارے گھر کے فیملی کے ممبرز کھیلوں سے وابستہ ہو؟
0: مطلب اگر آپ سری نگر میں رہتے ہو آپ کو اسپورٹس کی طرف جانا چاہیے, جو جموں سٹی میں رہتے ہیں ان کے پاس کوئی کیٹیگری نہیں.

0: होती, अगर आप स्पोर्ट्स में एक्सेल करते हो।
1: हाँ, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात
0: हाँ,
1: की।
0: अगर आपको अपना मुस्तकबिल बनाना है, आप स्पोर्ट्स खेल लीजिए। स्पोर्ट्स से आपको दो फायदे मिलेंगे, आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा, वो तंदुरुस्त रहेगा, बिकॉज जो हेल्दी बॉडी में जब हेल्दी माइंड होगा तो तभी वो कुछ अचीव कर पाएगा। तो उस वजह से मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स जो है वो लाजिम और मलजूम है, और आपको अगर एक्सेल किया इसमें आपको एक कैटेगरी मिलेगी, तो उससे आप आगे, जैसे मेरी स्पोर्ट्स कैटेगरी में LLB हो गया था, अदरवाइज मैंने ओपन में किया था। मेरे कजिन है वो BTech है, उनको स्पोर्ट्स कैटेगरी में हुआ था, तो स्पोर्ट्स आपको बहुत आगे ले जा सकते।
1: तो अब आपके बच्चों की तरफ आते हैं, वो भी खेलों से वाबस्ता है, उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं।
0: जी, मेरे बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्कूल एक्टिविटीज में खेलते हैं, और इंडोर स्टेडियम हमारे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है, वहां भी जाते हैं। सॉफ्ट टेनिस उन्होंने खेला है ऑलरेडी नेशनल, और आजकल वो मार्शल आर्ट में भी खेल रहे हैं और उसमें एक्सेल कर रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं।
1: आपका पैगाम क्या होगा हमारे सामईन के लिए?
0: इस वक्त हमारे यहाँ ड्रग्स की एक वबा फैली हुई है, हमारे जो LG साहब है उनकी भी हिदायत है कि इस वबा से हमारे बच्चों को, नौजवान नस्ल को बाहर लाना है। मुझे लगता है ड्रग्स की तरफ इस वजह से जाते हैं कि उनके पास रिक्रिएशन नहीं होता है, उनके पास सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर हम सपोर्ट्स उनको दे दे, बॉल उनके हाथ में दे दे, बैट दे दे, रैकेट दे दे खेलने के लिए, कैरम बोर्ड दे दे, तो वो उससे निकलकर इसमें आकर अपना जो रिक्रिएशन टाइम है, टैलेंट है, उसको उभार सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात जाते जाते ऐड करना चाहता हूँ, कोई बच्चा ऐसा होता है वो एजुकेशन में उतना स्ट्रांग नहीं होता है, बट अगर वो स्पोर्ट्स में एक्सेल करता है तो उसको एजुकेशन में भी
1: हेल्प मिलती है,
0: एज मिलता है आगे जाने का। इस सिलसिले में जो हमारे नौजवान हैं, छोटे बच्चे हैं खासकर, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आए, अपने अपने स्टेडियम्स का रुख कर दे। आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्टेडियम या आउटडोर स्टेडियम्स है,
1: आज फैसिलिटी हर जगह,
0: हर एक जगह।
1: जाते जाते मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, एज अ पेरेंट कितना इम्पोर्टेंट है? एक तो होता है कि आप बच्चे को कहो कि जाओ खेलो, ठीक है, एक होता है कि आप उनको हाथ पकड़ के स्टेडियम ले जाए, उनकी खेलने की जो क्रिया है, उनकी प्रैक्टिस है, उसमें आप पार्टिसिपेट खुद करें। कितना इम्पोर्टेंट है एज अ पेरेंट ये करना?
0: पार्टिसिपेशन ऑफ द पेरेंट्स इज साइन क्यू नॉन, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अपने बच्चों को अकेले छोड़कर स्पोर्ट्स की तरफ नहीं छोड़ सकते हो। स्पोर्ट्स में भी आप देखोगे कुछ बच्चे जाते हैं घर से स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन वो वहाँ वो मेहनत नहीं करते हैं। जैसे पेरेंट टीचर्स मीट होता है, उसी तरह आपको कोच और पेरेंट मीट होना चाहिए। आपको उससे मिलना है, कभी अचानक जाकर अपने बच्चों का वीडियो लेना है, फिर शाम को उनको दिखाना है, कोच से बात करनी है, फिर जाकर वो और उसमें बेहतरी ला सकते हैं, उसको मॉडिफाई करेंगे अपनी टेक्निक्स को, ये तो जरूरी है। और उसके अलावा जिस स्पोर्ट्स से आपके बच्चे वाबस्ता है, उस स्पोर्ट्स का घर में टेलीविजन में प्रोग्राम्स YouTube के जरिए उनको दिखाना, स्किल सिखाना, वो तो लाजिम और मलजूम है।
1: मंजूर साहब, आप आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: शुक्रिया। वापस चलते हैं एजाज के पास।
2: इसके साथ ही आज की स्पोर्ट्स टाइम से हमें यहीं पे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
3: स्पोर्ट्स टाइम।
4: समय आप समाप्त कर रहे थे स्पोर्ट्स टाइम, होस्ट एजाज नासिकी और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक। यह आकाशवाणी श्रीनगर है।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशित सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर रात के 8:45 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार पेश होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: Prime Minister will also be visiting.
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या

0: में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे।

0: निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 200 हर्ट्ज़ 8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ के अलावा FM 103.5 MHz पर रात के 9 बजे हैं। संवाद करें फिल्मी नकवे।

0: आन मिलो सजना। जी हाँ, ये फिल्म का नगमा है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आप ये दुकाना सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 9:15 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन नाश्र होगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल 1 खरब डॉलर मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर

0: ही बल्दियाती इदारों का इहाता किया गया है।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: अमले अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत का मुकम्मल सरकारी नुक्ता नजर मुतनवे इन्फरादी और इदाराजाती सलाहियतों को यकजा करने पर जोर देता है, जहां इदारे और पेशावर अफराद मुश्तरका कौमी मकासद के लिए अपनी कुव्वत और महारत के साथ तआवुन कर रहे हैं। ज़राअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तूतापरी आम के किसानों को दरपेश चैलेंजों का मुताला करने के लिए ज़राई तहकीक की भारतीय कौंसिल के तहत एक आला सतही माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। यह फैसला मरकजी वजीर के आंध्र प्रदेश के हालिया दौरे के बाद किया गया है, जहां किसानों ने हालिया महीनों में तूतापरी आम की कीमतों में नुमाया कमी के बारे में उन्हें मुतला किया था। फ्रांस ने पिछले महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर के गर्म तरीन हफ्ते के दौरान होने वाली अमवात में तेजी के साथ इजाफे की खबर दी है। पब्लिक हेल्थ फ्रांस के मुताबिक 22 से 28 जून के दरमियान तकरीबन 9000 अमवात रिकॉर्ड की गई। यह तादाद गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 29% ज्यादा है, जिनसे कम अज कम 2000 इजाफी अमवात का एंदिया मिलता है। एजेंसी ने कहा कि यह आदादोशुमार नामुकम्मल है और तवक्को है कि हतमी तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। पानी की कमी, इख्तलाज कल्ब, गुर्दे की बीमारियों और दिल से ताल्लुक रखने वाली दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात में किए गए हमलों के बाद यूक्रेन की फजाई हदूद के तहफ्फुज पर जोर दिया है। खबर है कि इन हमलों में 30 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए थे। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर ने राजधानी कीव में रूसी हमलों से होने वाले नुकसान की तस्वीर शेयर की, जबकि हंगामी और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि बमबारी उसके शहरी बुनियादी ढांचों पर यूक्रेन के तवील दूरी से किए जाने वाले हमलों में जवाबी तौर पर की गई। फीफा वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन शहर में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल सुबह मियामी गार्डन्स में अर्जेंटीना का मुकाबला काबोवर्डी से और कंसास सिटी स्टेडियम में कोलंबिया का मुकाबला घाना से होगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, अमरीका, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मराकश, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज सुबह प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 जबकि पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन ने अमरीका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। गुजरात एटीएस ने कलदम दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर्स अब्दुल्ला और मोहम्मद उमर के साथ राब्ते में थे। ये अफराद दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद के लिटरेचर का गुजराती जबान में तर्जुमा करने और उसके नजरिए को फैलाने का काम कर रहे थे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हौसलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपये मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दे दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मिडवेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय रात के 9:30 हुए हैं। समाप्त करें सेहत से मुतालिक फोन इन प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक इस वक्त के बाद।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए?

0: سمین ناتیا کلام وسو تھی آکاش ونی سری نگر پہ بوزان آخرس پہ بوزو تھی کلامی فرحت گیلانی پیش کران اعجاز شاہ ساحر. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے, شب کے 11 بج رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر ہوں گے.
1: 819 کلو ہرٹز ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر اب سماچار ہوں گے.
2: आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह. भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी. तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं.
3: India's development assistance.
4: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है. इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है. तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं. तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे.
2: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है. भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है. नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में

0: वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात 9:30 प्रोग्राम पेश होगा पेशरफ्त। मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल हमीद शाह। मौजू है लेवेंडर कल्टीवेशन। प्रोग्राम की मेजबान हैं इरफान अमीन मलिक। कश्मीरी गीतों का फरमाइशी प्रोग्राम तुहंस फरमाइश पेश होगा शब 10:00। मेजबान रशीद निसामी। सुबहगाही पेश होगा हमारी नशरियात के आगाज में सुबह 6:35 पर। लाइव नशरियात पैम सुबह समाप्त करें सुबह 7:10 पर। मेजबान रशीद निजामी और जहूर अहमद। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। मकामी अखबारात की सुर्खियां पेश होंगी सुबह 9:00। शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश न्यूज रील समाप्त।

गुलाम कादिर हाफिज और साथी छक्कत रो पेश करेंगे सुबह 11:30 और दोपहर 2:30। बस बिलिस्वार आस्तों की 12:40 पर मेहमान है फौजिया मंजूर। पहाड़ी प्रोग्राम सुपहर 4:00 और शीना प्रोग्राम सुपहर 4:30 पेश होगा। गुजरी प्रोग्राम रोज की तरह नष्ट होगा 5:00। देहाती भाई अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे 6:10 पर। इसमें मामूल की नशरियात के अलावा गुलाम हसन गोरसी और एम एस फिरदोस की माबेन गुफ्तगु होगी। मौजू है महरम जुलूस में इंतजाम। हालात हाजिर की जानकारी प्रोग्राम शहरबीन में मिलेगी 7:00। रात 8:00 प्रोग्राम वादी की आवाज नश्र होगा। जिलानामा नश्र होगा 8:30 पर। यह जिलानामा जिला बड़गाम से मुतलिक है और 9:00 स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हम सफर ब्रॉडकास्ट होगा। मौजू है मस्तून दुआएं और इनके माने। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 200 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में इस वक्त शब के 11:15 हुए हैं। अब हमें आज की नशरियात बर्खास्त करने की इजाजत दीजिए। कल सुबह के 6:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शब खैर, जय हिंद।

0: पावर के क्षेत्र की बात की, आपने आईटी के बारे में बताया, आपने ये भी बीच में बताया कि ऐसा कहीं पर भी अगर लगता है कि खतरा है पैसे को निश्चित, तो क्यों कोई जाएगा और उस सेक्टर में, उस क्षेत्र में अपने पैसे लगाएगा। तो निवेशकों और हमारे प्रोग्राम के श्रोताओं की नजर से आप अगर देखें इसे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, आपके हिसाब से ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनका मोमेंटम आपको इस दौरान में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है?
1: देखिए, मैं तो हमेशा इसी बात को कहता हूं कि निवेशकों के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर जो शॉर्ट टर्म असेसमेंट करने की कोशिश की जाएगी, तो मेरा मानना है कि वो शॉर्ट टर्म असेसमेंट हमेशा, अगर हमेशा नहीं तो ज्यादातर समय पे गलत ही साबित होगी, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं, आप हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म मान के भी चलते हैं तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही रहेगी, क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप सोचेंगे कि चलो थोड़े दिन और देख लेते हैं, तो वो अपने आप लॉन्ग टर्म हो जाएगी। तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म फैक्टर्स को असेस करिए, आप ये मत देखिए कि पिछले एक हफ्ते में किसने अच्छा किया या पिछले 15 दिन में किसने अच्छा किया। ऑफ कोर्स पिछले 2 महीने में जब ये पूरी ग्लोबल क्राइसिस रही, तो रेजिलियंस किस सेक्टर का था, रेजिलियंस किस पर्टिकुलर कंपनी का था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फंडामेंटल्स किसके अच्छे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ग्रोथ किस सेक्टर में है। नंबर तीन, क्या केवल ग्रोथ इसलिए है क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो पैसा लगा रहे हैं, या ग्रोथ इसलिए भी है कि जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह से जो सेक्टर्स को अगर चूज किया जाए, तो हमेशा से जो पिछले लगभग साल दो साल से जो सेक्टर्स बने हुए हैं और अभी भी वही बने हुए हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हुआ या फिर स्पेस हुआ या फिर उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी या न्यू एनर्जी रिसोर्सेज हुआ, पावर सेक्टर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कभी गिरावट दिखाई दे सकती है। आईटी सेक्टर इज ऑलवेज अ ग्रीन सेक्टर। एआई ऑफ कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप में थोड़ी सी एब्जॉर्ब करने की ताकत है और शक्ति है, तो अगर जो झटके बीच बीच में मिलेंगे उसको, तो मेरा कहना है कि लॉन्ग टर्म असेसमेंट करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचिए।
2: राइट,
0: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और रुख करते हैं एशियन बाजार की तरफ। आज एशिया का शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 5.8% बढ़ा। पिछले सत्र में हुई भारी बिकवाली के बाद निवेशकों ने कम कीमत वाले सेमीकंडक्टर शेयरों 1.5%, हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1.3%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 0.5%, और ताइवान का ताइएक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। विशाल, अगर हम वैश्विक टेक ट्रेंड की बात करें तो नैसडैक 1 महीने में तकरीबन 3% गिरा है, कॉस्पी 13% गिरा है, वहीं जो महीने भर में निफ्टी है वो 3.3% उसमें बढ़त आई है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल टेक ट्रेंड में रिवर्सल है?
1: देखिए, मैं टेक ट्रेंड में रिवर्सल तो इसे नहीं कहूंगा, क्योंकि जब हम कॉस्पी की बात करें या नेस्टेक की बात करें और भारतीय बाजारों की बात करें, एक इंटरनल डोमेस्टिक फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं
0: जी।
1: और जहां गिरावट ज्यादा दर्ज हुई है, वहां अगर आप थोड़ा सा उनकी इकोनॉमी पे और गहन तरीके से नजर डाल के देखें, तो ये भी समझ में आएगा कि वहां जितने पॉजिटिव क्यूज डोमेस्टिकली मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले उन बाजारों को। भारतीय बाजारों को पॉजिटिव क्यूज हमेशा मिले। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो ग्लोबल क्राइसिस थी, जो वेस्ट एशिया में जो हो रहा था, मध्य पूर्व में जो हो रहा था, उसकी वजह से जो एनर्जी क्राइसिस थी, उसका सीधा और बड़ा असर इन बाजारों और इन देशों में देखने को मिला। हम पर भी असर पड़ा, ऐसी बात नहीं है कि हम पर नहीं असर पड़ा, लेकिन उस हद तक नहीं पड़ा, उस लेवल तक नहीं पड़ा। और हमारे जो जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक और बाजार के, मार्केट्स के भी, उनमें इतनी कुवत थी कि वो उसको, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए। इन बाजारों में और इन देशों में भी है, लेकिन इनकी निर्भरता हमसे कहीं ज्यादा है
0: जी।
1: इस मायने में, क्वांटिटी के मायने में नहीं, लेकिन इस मायने में कि उसका सीधा असर उनकी इकोनॉमी पे किस तरह से पड़ता है। हमारे पास और भी तरीके हैं, और भी हमारे पास खपत के जरिया है, हमारे पास सप्लाई का जरिया है, हमारे पास डिमांड को मीट करने का जरिया है, उनके पास उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और इसीलिए आईटी सेक्टर और इस तरह के सेक्टर्स में जब ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो उसका सीधा असर पहले वहां देखने को मिलता है, उसके बाद यहां देखने को मिलता है।
2: राइट, एंड इन सम अदर स्टोरीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे सेड दैट इंडिया इज ऑन ट्रैक टू अचीव $1 trillion एक्सपोर्ट टारगेट्स फॉर द ईयर विद नियरली 15% of the annual exports already recorded in the first quarter. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi, Mr. Goyal noted that India's export strategy is being built around a stronger, more inclusive

0: opportunities in trusted AI, digital infrastructure, and the next generation technologies.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे. विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे. उनकी मुख्य बैठकें जकार्ता में होंगी. इसके अलावा वे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर योग्याकार्ता भी जाएंगे. उन्होंने कहा कि ये बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी. श्री टंडन ने बताया कि यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में होंगे. मेलबर्न में वे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी. श्री टंडन ने साझा किया कि यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे. वहां वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लेक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 26 जून को समाप्त हुए सप्ताह में 5.5 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक घटकर 666 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ये गिरावट सोने के भंडार में कमी आने से हुई है. ये 5.3 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक घटकर लगभग 102 अरब अमरीकी डॉलर विपरीत विदेशी मुद्रा संपत्ति जो भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है इस सप्ताह के दौरान 150 मिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 541 अरब अमरीकी डॉलर पर आ गई है.
0: And moving on to crude now, the global crude oil prices declined today. The Brent crude was trading 0.2% down at $71.68 per barrel. The West Texas Intermediate crude was trading 0.4% down at $68.41 per barrel when reports last came in. Vishal, from $120 to $71, talking of the crude, and $68 when we talk of the WTI.
2: Isn't that the most beautiful picture which can be painted with words in the past 2 months or two and a half, 3 months, I guess? 68, 70, these baskets, when they were touching 120, as you're pointing out, yes. Everything seemed like, a little difficult to negotiate, maneuver as well. And we did feel the impact also, but I think it's easing down now, and right. The numbers are speaking for themselves. I think it'll settle down at this particular level or go a little.
0: Do you see the prices coming down to as low as maybe 50 or something?
2: Little lower, I believe, not more than that, because let's not forget that the warring sides are yet to settle down everything. There's still some fissures which remain. There are still skirmishes which is happening, and then there is another conflict which still goes on between Russia and Ukraine. So that has some impact, not much impact, but some impact. So I believe this is where it'll going to settle down, maybe plus minus 2-3% this way or that way. That's the maximum I'm looking at. But yeah, this is something which gives a lot of breather, a lot of maneuver room for economies around the world to take a deep breath, recoup, regroup, and move on. As far as we are concerned, we've already started doing that. Some of the restrictions which are put in place, temporary restrictions which are put in place, have already been announced by the government that they've already been removed. That is a clear indication that there is no problem as far as supply is concerned of the petroleum products or related other products as well. Good indication for both the public at large and for the market and for the industry as well. I think now's the time to, as we say, get into the fifth gear and start moving.
1: Right.
0: And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading almost 1.4% up at 1,48,150 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.9% up at 2,37,710 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi-commodity exchange mein, Agast Anubandh wala Sona lagbhag 1.5% की तेजी से 1,47,779 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और सितंबर अनुबंध वाली चांदी लगभग 2% की बढ़त के साथ 2,37,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. विशाल, जाते जाते आपसे एक टिप्पणी सोने और चांदी के भाव पर.
2: देखिए सोना चांदी जहां है मुझे लग रहा है इस वक्त जहां है वहीं टिके रहने की उम्मीद है।

0: और उसका सीधा इंडिकेशन ये दिखाई दे रहा है कि बाकी सब जगह सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए सोना और चांदी अपना अपने अपने स्थानों पर यथावत बैठे हैं। ज्यादा उठापटक उसमें नहीं दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उठापटक थोड़ा और आगे तक दिखाई भी नहीं देगी।
1: Will it kind of plateau for another maybe a decade or so, as the history, you know, if you go by the history?
0: I'm not going to stick my neck out and say a decade or so, but yeah, but maybe for some time at least.
2: Vishal, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
0: Thank you.
1: Thanks, Vishal. And before we close, a reminder of the headlines. The benchmark domestic indices end with modest gains. Sensex climbs over 250 points. Nifty settles at 24,271. Major Asian stock markets settle in the positive zone and an Indian bullion market, gold and silver prices rise. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

गीत मेरे मन मीत लेकर स्टूडियो से एक बार फिर साथ हूँ मैं रोहिणी। जी हाँ दोस्तों, इस गहरी काली रात में सदाबहार गीतों का साथ जो कि बना रहेगा आपके साथ। वो कहते हैं ना, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है चरागों का सफर कितना है। ये सफर आप तय कर रहे हैं दोस्तों 100.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आइए आगाज करें आज के इस प्यारे सफर का तेरे घर के सामने फिल्म के गीत से। और इस गीत में आवाज दी है रफी साहब ने, लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने, संगीत से सजाया ST परमन जी।

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में, तो और ये रात जो कि महक रही है चांदनी से, और इस प्यारे से समय में ये बेहद प्यारे सदाबहार गीत आप तक पहुंच रहे हैं। ये अगला गीत प्यार का मौसम फिल्म से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस गीत को लिखा है मशरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया है ST बर्मन जी ने। तो आइए सुने ये प्यारा अंदाज़।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत और ये अगला अंदाज शागिर्द फिल्म से आप तक पहुंच रहा है। रफी और लता जी की आवाज में इस गीत को अल्फाज से सजाया मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो आइए सुने ये प्यारा अंदाज।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत का ये प्यारा अंदाज, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है कि और आज के इस सफ़र को आगे ना बढ़ाएं। तो फिलहाल मुझे आज के इस सफ़र को यहीं समेटने की दें इजाज़त, और बड़े ही प्यारे अल्फाज जो कि आपसे साझा करना चाहूँगी, बेशक दिन में भुला दो तुम उजालों के मायने, स्याह रात में तो रहेगा ही इंतज़ार चांद का। जी हाँ, इंतज़ार और ये सफ़र आप तय करते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। फिलहाल आपको छोड़े जाती हूँ इस प्यारी सी आवाज़ के साथ, इस प्यारे सी गीत के साथ। मुझे रोहिणी को दीजिए इजाज़त, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। उसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़न जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां

0: संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबर पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। सरकार ने बैड बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका के डारिया कसात्स्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानरे को 6-1 6-3 से मात की दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, तुमने इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, पर अब भी बारिश देखकर लगता है जैसे कोई जादू पहली बार देख रहे हो। तुम्हें मैं ऐसे ही समझा सकती हूँ कि रोज़ तुम्हें देखना कैसा होता है।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 2 सेकंड। निशिकंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

0: वाकई हवा के साथ साथ और घटा के संग संग चलना ही जिंदगी है। कुछ गाने हमें ये एहसास दिलाते हैं कि सफर हो या मंजिल, रंगत तभी आती है जब मन खुश हो। अगला गीत फिर से आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में

मोहब्बत में कश्मकश ही ऐसी होती है, समझ ही नहीं आता, दिल की बातें जुबां तक आकर ठहर जाती है, रुक जाती है, समझ नहीं आता कि उन्हें बयां कैसे किया जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि कह देना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आती है। क्या कहते हैं आप? अब ये भी कोई पूछने की बात है, सफ़र वही जो साथ साथ तय किया जाए। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

हो राधे श्याम की सिया राम की और जय हो बंबई धाम की

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

सच में मुंबई की बात ही अलग है। मुंबई का नाम आते ही बहुत सी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। वहाँ की लोकल ट्रेनें, समंदर, सब सब कुछ जहन में फिर से एक बार याद आने लगता है। मुंबई का अपना ही एक रंग है, अपनी ही एक दौड़ है, कहीं पहुँचने की, कुछ पा लेने की।

कुछ ख्वाबों को पूरा करने की फिलहाल हम भी एक दौड़ में शामिल हैं और इस दौड़ को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। छिपने की जितनी कोशिश करोगे उतना करीब आएगा, और जब वो तुम्हारे जीवन में उतरेगा वो इतना गहरा होगा कि तुम्हारी प्रेम पर लिखी कविता फीकी पड़ जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर बंजू। वक्त वह है 12:38 और 42 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में,

जब दीवानगी का ऐलान हो ही गया है तो फिर दीवानों को रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी हो या फिर मोहब्बत, दोनों को दीवाने ही सबसे ज्यादा समझ पाते हैं। और वैसे भी दिल में जब प्यार का जज्बा होता है तो कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। इस दीवानेपन को और आगे बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ।

अपनी दुनिया में और शायद अपने लोगों के पास। कभी कभी अपनी दुनिया में लौट आना ही खुद को बेहतर तरीके से समझने के लिए। हम दूसरों को समझते और समझाते हुए अक्सर खुद को समझना भूल जाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। खुद को समझना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगला गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़न जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं। India's
2: development assistance. बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले

0: ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। सरकार ने बैट BMS इपोक IIN और लॉसिंगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका ने डारिया कसात्स्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानेरो को 6-1 6-3 से मात दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. The government has reiterated that the Indus Waters Treaty, IWT, remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi last evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randeep Jaiswal, said India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism. On Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal outlined India's approach to development assistance to Bangladesh. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is on track to achieve $1 trillion export targets for 15% of the annual exports already recorded in the first quarter. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi, Mr. Goyal noted that this will require goods exports to rise from about $440 billion to around $530 billion and services exports to increase from roughly to about $470 billion. He further said that it expected that merchandise exports growth will show 15% growth and services exports is about 10 to 11% in the first quarter. Mr. Goyal also highlighted that India had concluded financial year 2025-26 with its highest ever exports of $863 billion, registering growth of 4.6% despite tariff realignments, freight disruption and slowing global demand. He also announced a time-bound 90-day drive under the Districts as Export Hubs initiative, covering 120 priority districts across 27 states and union territories. Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan and Gujarat today. In Rajasthan, the Prime Minister will inaugurate the terminal building of Jodhpur Airport and launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, he will travel to Balotra to dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.6 lakh crore rupees in petrochemicals, urban transport, renewable energy and power transmission. During Gujarat visit today, in a major boost to the India Semiconductor Mission, the Prime Minister will inaugurate the CG Semi Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and her French counterpart Roland Lescure yesterday co-chaired the India-France Economic and Financial Dialogue in Aix-en-Provence in France. Both the ministers recognized the value of the French Development Agency's work in India for economic development and welcomed

101.1 मेगाहर्ट्ज पर अब आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 9 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने यानी एक ऐसा दौर जो इतिहास से, स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है, हमें पुकारता है। तो चलिए फिर इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ।

चौदहवीं का चांद से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत बहुत ही सुरीली आवाज में, यानी रफी साहब की आवाज में। संगीत था रवि का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। फिल्म चौदहवीं का चांद 1960 में प्रदर्शित हुई थी और इसका निर्देशन किया था मोहम्मद सादिक ने और निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। 1959 की फिल्म कागज़ के फूल की असफलता के बाद गुरुदत्त साहब के लिए ये फिल्म कामयाब फिल्म रही और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक फिल्म थी ये। रवि द्वारा निर्मित संगीत को काफ़ी लोकप्रियता मिली और दर्शकों द्वारा इस फिल्म के संगीत को खासा सराहा भी गया। और अब अगला गीत हम सुनते हैं फिर से रफी साहब की आवाज़ में।

0: करूंगा।
1: रफी साहब की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत, फिल्म का नाम था असली और नकली, संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। फिल्म असली नकली 1962 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म को निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने, देवानंद, साधना, लीला चिटनीस, अनवर हुसैन, संध्या रॉय और केस्टू मुखर्जी ने इस फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने। और अब अगले गीत की बारी, लेकिन अगले गीत को अब तक पहुंचाने से पहले अगर आप जाग रहे हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगला गीत रात के जज्बात को और गहरा करता है। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में आप ही के लिए।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत फिल्म अनाड़ी से। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। अगर फिल्म अनाड़ी की बात की जाए तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 1959 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, नूतन, ललिता पवार और मोतीलाल ने। इस फिल्म के गीत लिखे थे शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी साहब। अब जब रात की बात छिड़ी है तो फिर रात का मुसाफिर क्या कह रहा है, सुन लिया जाए अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म मिस मैरी से।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और 40 सेकंड और आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। एक ऐसा दौर जो इतिहास और स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है, तो ज़रूरत है उन गीतों को महसूस करने की। तो चलिए फिर सुनते हैं हम

फिल्म का नाम ओपेरा हाउस और आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत चित्रगुप्त का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। अगर इस फिल्म की बात करें यानी कि ओपेरा हाउस फिल्म की हम बात करें तो ये फिल्म आई थी 1961 में और ये एक रहस्यमय फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था पीएल संतोषी ने। फिल्म में अजीत बी सरोजा देवी, केएन सिंह और ललिता पवार ने अभिनय किया था। और अब अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म बहू बेगम से।

फिल्म का नाम बहू बेगम और आवाजें थी आशा जी और रफी साहब की, संगीत था रोशन का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। फिल्म बहू बेगम 1967 में प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था एम सादिक ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार ने। संगीत रोशन साहब का था और इस फिल्म के संगीत को दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा गया और ये गीत, इस फिल्म के जो गीत हैं वो आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है मन्ना डे की आवाज़ में, फिल्म तीसरी कसम से।

हुआ है 1:54 और 22 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने मेरे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू के साथ। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में।

गीतों का यह सफर ऐसे ही जारी रहेगा। अभी वक्त है समाचारों का। 2 बजे सुनेंगे आप समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पत्रकारिता को सच्चाई, ईमानदारी और सबसे ऊंचे पेशेवर मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। नई दिल्ली में साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर के 80वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र तब फलता फूलता है जब प्रेस अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए लोगों को जानकारी देता है, सवाल पूछता है और जानकारी पूर्ण सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देता है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित।

रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपॉक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका ने डारिया कसात्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1-6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानेरो को 6-1-6-3 से मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

उसने बड़े अदब से पूछा, अगली मुलाकात कहाँ होगी? मैंने कहा, आसमानों में, दो बादलों की टकरार में, भीनी माटी की खुशबू में, खिड़की पे बारिश की बूंदों में, मोगरे के फूलों में, अदरक वाली कड़क मीठी चाय से उठते उस धुएं में, रहमान के किसी गाने की धुन में, रुके हुए से ट्रैफिक जैम में, शर्ट के टूटे हुए बटन में, गहरे काले काजल में, पहाड़ों में, बहते झरनों में, कहीं साहिल तो कहीं किनारों में, मौसम की बहारों में हम मिलेंगे जरूर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 15 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी कि जज्बातों की रात, एहसासों की रात। और इस प्रोग्राम में हम रात के जज्बात को, रात के दर्द को अपनी बातों से, गीतों से और कुछ कुछ शायरी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

आपको पता है जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडियो में हवाएं चलने लगी हैं सच में, और टेम्परेचर भी कुछ कम हो गया है। इस गाने का एक एक सुर सीधे दिल में लगता है और दिल में लगने के साथ सीधे दिल में असर करता है।

अगर आप इस गाने को सुनकर किसी के ख्यालों में खो गए हैं, किसी की यादों ने आपको घेर लिया है, तो अगला गीत आप ही के लिए, अगला गीत लता जी की आवाज में।

खूबसूरत लगने लगती है। पर कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर ये मोहब्बत इतनी ही अनमोल है, इतनी ही कीमती है, तो लोग इसे संभाल कर क्यों नहीं रखते, छोटी छोटी बातों पर रूठ क्यों जाते हैं। खैर, अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, आपका ख्याल रखता है, तो आपको खुदा को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है किशोर कुमार की आवाज़ में।

मन में तितलियां उड़ी, कुछ जादू सा लगा। सच में इस गाने की खासियत ही यही है, एक जादू सा एहसास से भर देता है ये गाना। वैसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप बस यूं ही बैठे हों और अचानक आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाए और फिर बिना कुछ कहे आपके दिल में समा जाए?

हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। किसी की तरबियत का है करिश्मा, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। कहानी रुख बदलना चाहती है, कहानी रुख बदलना चाहती है, नए किरदार आने लग गए हैं। ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, परिंदे आने जाने लग गए हैं, हम अपने दुख गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। स्वादिश मिलो एक मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:42 और 6 सेकंड और आप सुन रहे हैं रात सुरमई, रात की सुरों को, रात के जज्बात को, सांस को, रात की दर्द को गीतों से, बातों से समझने की, महसूस करने की एक छोटी सी कोशिश। अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में अभी के लिए।

वैसे ये तो सच बात है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उनके बिना सांस लेना भी मुश्किल लगता है। वो चाहे हमारे पास हो या हमसे दूर हो, उनकी मौजूदगी हर पल हर सांस में महसूस होती है, बिल्कुल हवा की तरह, जिसे हम देख तो नहीं सकते पर उसके बिना जी भी नहीं सकते। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

ये जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। हम रोज ना जाने कितने अनजान रास्तों से गुजरते हैं, कितने ही चेहरों को देखते हैं, पर कभी कभी बस यूं ही चलते चलते कोई ऐसा मिल जाता है जो अजनबी से सीधे हमारी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन जाता है, खास इंसान बन जाता है। ना कोई प्लानिंग होती है, ना कोई तैयारी होती है, बस एक मुलाकात होती है और पूरी तकदीर बदल जाती है, जिंदगी की कहानी बदल जाती है। अगला गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में आप ही के लिए।

गीतों का ये सुरीला सफर यहीं तक, रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी वंदना चुग। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूर सादुलपुर और चूर रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपॉक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। फीफा विश्व कप में अमरीका के आर्लिंगटन में खेले जा रहे

राउंड ऑफ 32 के मैच में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त बना ली है। मैच के पहले हाफ में मिस्र ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से आगे है। इमाम अशून ने 13वें मिनट में एकमात्र गोल किया। राउंड ऑफ 32 के अन्य मैचों में अर्जेंटीना का मुकाबला मियामी गार्डन्स में काबो वर्डे से होगा, जबकि कोलंबिया आज सुबह कैंसस सिटी स्टेडियम में घाना से भिड़ेगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नार्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राज़ील और पैराग्वे पहले ही राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही समाचार

दोस्तों नमस्कार। जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं FM गोल्ड पर और हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

यादों की बारात, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और संगीत आर डी बर्मन का। अगला गीत आप सुनेंगे कस्मे वादे फिल्म से, आशा भोंसले और किशोर कुमार और अमित कुमार का गाया हुआ है। शब्द रचना गुलशन बावरा की है और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

दोस्तों, ये तो हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में खुशियों की बहारें आती रहें, लेकिन बहुत बार आप छोटी सी बात का बुरा मान जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। और नाराज आप क्यों होते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि वो आपको मनाएंगे।

दोस्तों, एफएम गोल्ड पर हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत आप गीत सुन रहे हैं, यानी युगल गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ।

दोस्तों बहुत बार प्यार भी मुसीबत बन जाता है, या नहीं यूं कहें कि अफसाना बन जाता है कोई ना कोई। आपको बता दें कि ये गीत आपने सुना प्यार बना अफसाना फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ थी, गीत की रचयिता थे अज़ीज़ कैसी और धुन बनाई थी इकबाल कुरैशी ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं घर फिल्म से, गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में है, शब्द रचना गुलजार की और संगीत आरडी बर्मन का।

दोस्तों, पहले के दौर में जब मोहब्बत की बात हुआ करती थी तो बात सुनकर प्यार करने वाले शर्मा जाया करते थे और प्यार करने वाले उसका प्यार आंखों से ही पढ़ लिया करते थे।

झुके जो तेरे नैना। कंगन फिल्म से ये गीत आपने सुना महेंद्र कपूर और उषा खन्ना का गाया हुआ। गीत था अनजान का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं साथ साथ फिल्म से जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का गाया हुआ है। जावेद अख्तर के बोल हैं और कुलदीप सिंह का संगीत।

सागर फिल्म से ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। गीत को रचा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं प्यार का, सागर फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ है। प्रेम धवन ने गीत को लिखा है और रवि का संगीत।

दोस्तों सच में जो प्यार करने वाले होते हैं वो यही सोच कर डरते रहते हैं कि कहीं उनका साथ छूट ना जाए। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ। संतोष आनंद का लिखा गीत है और लक्ष्मी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालूतारा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूर सादुलपुर और चूर रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़ंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। यह देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, पश्चिम राजस्थान और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, हमराही कार्यक्रम में आज का सफर बस यहीं तक। जुड़े रहिएगा FM गोल्ड के कार्यक्रमों के साथ। अगले कार्यक्रम अरुणिमा में 4:11 पर फिर से मुलाकात होगी।

दोस्तों बहुत से गाने जब चलते हैं तो साथ साथ गुनगुनाने में भी उनको बहुत मजा आता है। आपने ये गीत सुना महेंद्र कपूर की आवाज में, फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी, SH बिहारी के बोल थे और OP नैयर का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं खुशबू फिल्म से, गीत किशोर कुमार की आवाज में है, गुलजार ने गीत के बोल दिए हैं और संगीत से संवारा है RD बर्मन ने।

दोस्तों, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान को लगता है कि मेरा कोई अपना नहीं रहा, और वैसे भी अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं मंजिलों को पाने के लिए।

दोस्तों, इस गीत में बहुत अच्छी पंक्तियां थी कि बिछड़े दिलों को मिलाते चलो। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी में भी आपस में अगर कोई बात हो जाती है तो लोग आपस में बोलना छोड़ देते हैं, फिर कोई ऐसा काम करता है तीसरा बंदा आकर कि उन दोनों के बीच में और लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो समझदारी से उन दोनों को दोनों का ही पक्ष लेते हुए समझाता है कि चलो कोई बात नहीं, बात हो गई तो आया जाई करो, आया गया करो इस बात को। तो यहाँ पर बिछड़े दिलों को मिलाने की बात सही साबित होती है। तो हमारा भी काम यही रहना चाहिए कि अगर किसी की बात में कोई आपस में मन में रंजिश पैदा हो गई है तो हम उनको मिलाने का काम करें, ना कि उनका दिल में जो प्यार पहले था उनमें दूरियां पैदा करें।

लेकिन हम अभी कहीं भी नहीं जा रहे हैं। प्यासा सावन फिल्म से ही आपने गीत सुना, आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ, और लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का गाया हुआ था ये गीत। आनंद और गुलशन बावरा का लिखा गीत था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दूसरों अगला गीत सुनवाएंगे लेकिन अंतराल के बाद।

हिमालय की गोद में, इस फिल्म में से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी का लिखा गीत था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों, हर इंसान सपने बुनता है और सपनों को पूरा करने के लिए पूरे दाव पेच लगा देता है और फिर उसको लगता है कि अब उसका जीवन बहारों जैसा हो गया है।

आखिरी खत। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ, कैफी आजमी की रचना थी और खयाम का संगीत। दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गीतों के साथ

दो बदन। इस फिल्म से आपने गीत सुना आशा भोसले की आवाज में। शकील बदायूं की रचना थी और संगीत रवि का।